0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल, 21 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 11 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, एंड यस 10% चांस है बारिश के आज, लेकिन सनसेट होगा 7:32 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: क्या नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स, और यहाँ पे हम बातें करेंगे इस आर के लिए। इस आर में लंच टाइम रेंट लाइन से लेके एक नई स्टोरी भी लेके आने वाला हूँ आज। तो आपका क्या काम है, आप बस बने रहिए, ट्यून इन रहिए, और मैं थोड़ी देर में लेके आने वाला हूँ। शुरुआत करेंगे बहुत ही खूबसूरत गाने से, वो आप सुनिए, अपने आप को फुल फुर्ती के साथ एनर्जी, यू नो, पूरी एनर्जी बटोर लीजिए, एंड गेट रेडी टू लिसन टू माई दिस अमेजिंग स्टोरी जो मैं हर दिन लाता हूँ अलग अलग कैटेगरी की। जी हाँ, बने रहिए। बट यस, लंच टाइम रेंट लाइन के साथ साथ आपको बॉलीवुड की खबर भी मिलेगी इस आर में, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अपडेट भी बताऊंगा मैं कि कौन सी फिल्म कमाल कर रही है। बने रहिए ओनली ऑन हम 104.2 FM।
0: बचाओ क्या,

0: Well, आज की सक्सेस स्टोरी है लॉरेंस डॉटी। आज की स्टोरी जो है वो मैं स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बताने वाला हूँ जिनको टेनिस की दुनिया में लिटिल डू के नाम से भी जाना जाता था। लॉरेंस डॉटी इंग्लैंड के एक लेजेंडरी टेनिस प्लेयर थे। उन्होंने अर्ली 1900s में टेनिस पर ऑलमोस्ट रूल किया था। 1902 से 1906 तक उन्होंने विंबलडन सिंगल्स टाइटल कंटिन्यूसली 5 बार जीते, लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट आई 1900 यानी कि 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में। लॉरेंस ने मेन सिंगल्स और डबल्स दोनों में गोल्ड मेडल जीता। डबल्स में उनकी पार्टनर कोई और नहीं बल्कि उनके भाई रेजिनल्ड ही थे। सोचो, एक ही ओलंपिक्स में सिंगल्स भी गोल्ड और डबल्स भी गोल्ड। वाओ, दैट्स अमेजिंग। उन्होंने 1903 में यूएस नेशनल चैंपियनशिप्स भी जीती और वो इस टाइटल को जीतने वाले पहले ओवरसीज प्लेयर बने। लॉरेंस की सक्सेस का एक और इम्प्रेसिव पार्ट ये था कि उनका कंसिस्टेंसी। डेविस कप में उन्होंने अपने सारे 12 सिंगल मैचेस जीते, एक भी नहीं हारे। 1906 में अपना 5th कॉन्सिक्यूटिव विंबलडन टाइटल जीतने के बाद उन्होंने टेनिस से रिटायरमेंट ले लिया। उनकी स्टोरी हमें एक सिंपल लेसन देती है, सक्सेस सिर्फ एक बार विनर बनने का काम नहीं करती, रियल सक्सेस है अपनी परफॉर्मेंस को बार बार रिपीट करना। आज के टाइम में हम ओवरनाइट सक्सेस देखते हैं, लेकिन लॉरेंस डॉटी की जर्नी हमें याद दिलाती है कि ग्रेटनेस एक दिन में नहीं बनती, कंसिस्टेंसी से बनती है।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम। हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
4: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
3: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
4: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
3: बस इतना ही।
4: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
5: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड फॉर्चून, ब्रिंग होम द फॉर्चून।
6: My Titan Mega Henderson अब weekdays पे सुबह 6 बजे से खुला है। बिल्डिंग सप्लाईज, टिम्बर, पावर टूल्स और ट्रेड essentials सब कुछ साइट पे जाने से पहले ही उठा लो। Get in, get sorted and get the job done earlier. Open from 6 AM. My Titan Mega Henderson.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
8: रुजबेन, 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
9: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
8: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
9: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
8: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली, बैंकॉक और फ्री क्रूज।
9: बुक नाउ विद सन टूर्स।
8: कॉल करें 0800-478-686।
9: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.in.
10: Don't sleep on Briscoe's one-day sale on now with huge one-day 60% off deals plus huge one-day store-wide savings. Stores open late. Briscoe's one-day sale today only. See online for TCs and store hours.
7: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
1: Lunchbox with Ketan.
11: Mujhe pasand hai ladka.
1: Hum.
0: लंच टाइम रेंट लाइन के लिए आप मुझे मैसेज भेजना शुरू कर दीजिए 5599 इज द नंबर. बट यस, उससे पहले एशियन फैमिली सर्विस की तरफ से मैं एक मैसेज पढ़ लेता हूँ. मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ अवर ओवरऑल हेल्थ जस्ट एज वी केयर फॉर अवर बॉडी. इट इज ओके टू सीक सपोर्ट फॉर अवर माइंड टू. If you are feeling overwhelmed or struggling to manage your emotions, you do not have to face it alone. Asian Family Services offers free, confidential and professional emotional support from people who understand your culture. Call Asian Helpline free on 0800-862-342. 0800-862-342. If you or someone you know is in immediate danger, call 111. And yes, कुछ मैसेज आए हैं वो भी मैं पढ़ लेता हूँ. सिमरन जी, नहीं, सॉरी माई बैड, वो तो थोड़ी देर पहले आया था मैसेज. लेट मी जस्ट ओपन दिस मैसेज अगेन. नाम की तरह ये रहा. अमन भाई का आया है. हाय केतन, माई रेंट इज अबाउट पीपल हु सेंड यू मैसेज सेइंग कॉल मी अ सैप बट डोंट टेल यू व्हाट इट्स अबाउट. देन यू स्पेंड द नेक्स्ट 20 मिनट्स वंडरिंग इफ समथिंग सीरियस हैज हैपेंड. I finally called my friend back and he just wanted to ask what time we were meeting for dinner. Please don't give people unnecessary stress like that. And then funny emoji. इन्होंने ये भेजा है. काफी interesting है यार, काफी creative message भी है. मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं ऐसा वैसे. बट मेरे जीजू बहुत करते थे यार. मेरे एक टाइम पे जीजू बहुत करते थे. अभी तो आजकल बड़े हो गए वो, इसलिए जस्ट जोकिंग. बट हाँ, वो करते थे. जल्दी कर फोन कर. और भाई क्या हाल है, ऐसे करते थे. आपके साथ भी है कोई ऐसा फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड जो इस तरह की हरकत करता है, मुझे बताइए आप 5599 पे. थैंक यू सो मच अमन भाई आपके मैसेज के लिए. ऑनेस्टली क्या बोलूँ इसमें, आई हैव नो आइडिया. मतलब मुझे पता नहीं है क्या बोलना चाहिए यहाँ पे. अगर यहाँ पे कोई है मेरे लिसनर जो इस पे जवाब देना चाहता है, यू नो द नंबर 5599 पे भेज दीजिए.
1: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेल बात बता देता हूँ एक लेटेस्ट खबर की क्वींसटाउन में एरिका रॉड्रिक्स कोहिलो 47 इयर्स की के मिसिंग होने के केस में पुलिस को अभी तक कोई भी मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। ब्राजीलियन नेशनल एरिका को 18 सितंबर से किसी ने नहीं देखा और उनकी रेंटल कार बाद में स्किपर सैडल पर मिली थी। पुलिस ने एक मिस्ट्री मैन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश भी की थी जो उस दिन माउंट डेवर समिट ट्रैक पर देखा गया था, लेकिन अभी तक उनकी आइडेंटिटी कन्फर्म नहीं हो पाई है। फिजिकल सर्च फिलहाल पॉज पर दी गई है, लेकिन पुलिस कह रही है कि इन्वेस्टिगेशंस एक्टिव हैं और वो किसी भी इंफॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे। यानी कि इफ एनीवन फ्रॉम यू, एनीवन फ्रॉम आवर लिसनर या फिर एनीवन यू नो दैट यू मे हर्ड अबाउट दिस न्यूज, तो अगर कोई भी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन हो तो आप तुरंत पुलिस को कॉल करके या फिर जस्ट विजिट द पुलिस स्टेशन एंड जस्ट लेट देम नो कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, बिकॉज छोटी मोटी भी लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है।

0: ये मौके यहाँ पे जहाँ पे आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम बाय टेकिंग पार्ट इन दिवाली विद हम फेस्टिवल फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून. आप जीत सकते हैं शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस. और जस्ट कीप इन माइंड 30 अक्टूबर को होगा डिस्क्लोज कि कौन विजेता है. सो आज का मौका ये है जहां पे आप जीत सकते हैं $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर्स. और एक विनर होगा इसमें आप इनडेलिबल होम्स योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स उनकी वेबसाइट पे विजिट करिए और ये जो प्राइस है वो उन्हीं की तरफ से है. सो यस www.indelibleholmes.co.nz पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और भी इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सर्विसेज. बट यस IH लिखिए और मुझे 5599 पे भेज दीजिए. मेक श्योर आप IH के बाद स्पेस और अपना नाम भी लिखिए. स्पेस नहीं लिखना है, स्पेस बार जब आता ना जो गैप होता है बेसिकली वो करके अपना नाम लिख के मुझे 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो सकें. एंड यस दूसरा मौका है इज ब्रॉट टू यू बाय हैरिंगटन लिविंग. मनुकाओ स्प्रिंग्स sale is on now. Beautiful furniture with 60 month interest free. Terms and condition only at Harrington Living Manukau. तो उनकी तरफ से आया है. तो yes, Harrington Living HL initial है. उसे लिख के मुझे अपने नाम के साथ 5599 पे भेज दीजिए ताकि draw में शामिल हो जाए और इस draw में आप जीत सकते हैं $1,000 worth of Harrington Living home deco और furniture voucher. एक विजेता इसमें भी होने वाला है. विजिट hum.roa.nz फॉर टर्म्स एंड कंडीशन. एंड यस एक और चीज ध्यान रखें कि अभी मैंने बोला है तो यस आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही हैं. जितने मैसेज आप भेज सकते हैं आप मुझे भेज दीजिए. स्टैंडर्ड करियर रेट्स भी अप्लाई होते हैं बट टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आप हमारे hum.roa.nz पे विजिट कर सकते हैं.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
3: 80s के रेट्रो गाने.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum.
2: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
3: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
4: अब हमारा क्या होगा?
5: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
3: तो क्या करें?
6: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
7: Media Works Complaints, how can I help?
8: Yeah, hello?
7: Hi.
8: Hi, yeah, can you guys take a radio jingle out of my brain?
7: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
8: Well, okay, well, what about something like a brain surgeon?
7: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
8: Great, sing it to me.
9: Advertise with
10: Media Works.
9: New Zealand listens to us.
11: Save big at Rebel and get the kids sorted for back to school. Grab a huge range of kids' running shoes for just $69. Get 20% off selected bags and bottles. Plus, score an extra 20% off all clearance. Back to school value is on now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
12: Yo, what's up? I'm Fun. We went to school together, remember? We'd hang out behind the bike sheds. Anyway, I need you to look up NZHL. They help people like you to have a mortgage and a life, which means less time being boring and more time buying berries out of season, turning coffee into lunch, and booking non-refundable airfares to Fiji before checking with your partner. Risky. Have a mortgage and a life with NZHL. Book a free chat today.
13: NZHL.
14: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
15: 35 minutes and we've moved 3 kilometres.
16: Welcome to peak hour commute, bye.
15: Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
16: Over 18, lived here for more than a year, and a resident for electoral purposes?
15: Yeah, that sounds like me.
16: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
15: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
17: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
18: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo. Or avocado, 2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
19: Lunchbox with Ketan.
20: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
19: Iske piche. Lunch ke munch pe.
21: वेलकम बैक। वेल चलिए बॉलीवुड पे थोड़ी नजर डाल देते हैं। कृति सेनन ने रिसेंटली करीना कपूर खान के शो में शो व्हाट वुमेन वांट्स पर गिवा के रक्षाबंधन एड कंट्रोवर्सी को लेकर बात की है। जी हाँ, आपने देखा ही होगा कि दैट उनके पहनावे को लेके काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, काफी लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था। एंड वी नेवर थॉट ऑफ कि क्या एक्चुअली स्टोरी थी ये सब। लेकिन यस, फाइनली कृति सेनन, उन्होंने ये बात पब्लिकली सामने रखी है इन द शो कॉल करीना कपूर खान के शो व्हाट वुमेन वांट। उन्होंने कहा कि उन्हें बिलीव ही नहीं हुआ कि उनकी चोली प्राइम टाइम टीवी पर 6-person पैनल डिस्कशन का टॉपिक बन चुकी थी। एड में कृति का इंडो वेस्टर्न आउटफिट सोशल मीडिया पे कॉन्ट्रोवर्सी का रीजन बना था और क्रिटिसिज्म के बाद जीवा ने एड विड्रॉ करके माफी भी मांगी है इस इश्यू को लेकर। वैसे कृति ने उस वक्त ये क्वेश्चन भी उठाया था कि वुमेन के क्लोथ्स को उनके कल्चर और रिस्पेक्ट से क्यों जज किया जाता है। आपको क्या लगता है, व्हाट यू थिंक? जो इन्होंने कहा है वो भी एक क्वेश्चन है, दैट व्हाई ऑलवेज वुमेन गेट जज्ड बाय देयर पहनावा। But yes, on other side, some people have even said that फेस्टिवल में इस तरह के कपड़े क्यों पहने जाते हैं? अगर यहाँ पे कोई है जो टिप्पणी देना चाहेगा इस पे तो यस 5599 नंबर जहाँ पे आप मुझे भेज सकते हैं।
1: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: vás kunžegy. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: Well, ek sawal kiya tha thodi der pehle maine aap sabhi se. Who is that one person who has influenced you the most? And kuch messages aaye hain. Rohan bhai, wo kehte hain, for me, it's my first boss. He really changed the way I look at work and responsibility. Well, that's so good, yeah. That's so good. Obviously, kafi aise boss bhi hote hain and employees bhi hote hain jo obviously other way around kaam karte hain. Meera ka bhi message hai, definitely my school teacher, she always pushed me to believe I could do more. That's so great, Meera. And Arjun kehte hain, my cricket coach, he taught me discipline and how to stay calm when things don't go on your way. Yeah, this is very important, yaar. Matlab ye jo bataya hai, it is amazing. Meri life mein mera dost hai, Sudeep naam hai uska. And obviously, you know, hamari dosti kyun hui, kaise hui, ye main aaj bhi khud apne se sawal puchta hoon. But kahin na kahin main apne aap ko na कहते हैं कि ब्लेस्ड भी मानता हूँ कि ही केम इन माई लाइफ ड्यूरिंग दैट टाइम वेन नो वन वॉज अराउंड एंड जस्ट टू गिव एन आइडिया जस्ट टू गिव अ लिटिल बिट अबाउट हिम ही यूज टू बी अ टॉपर इन द क्लास आउट ऑफ 47 स्टूडेंट्स और मेरा रैंक आता था समवेयर अराउंड 37 और 38 समथिंग आई वाजंट गुड इन स्टडीज फॉर श्योर सो या ही यूज टू बी नॉट ही यूज टू बी बट ही वॉज ऑलवेज बीन द टॉपर इन द क्लास और हमेशा उसके 90 प्लस मार्क्स आते थे एंड ही बिकेम वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन सो मतलब मैं आज भी सोचता हूँ क्यों ऑब्वियसली कुछ तो अच्छा किया होगा मैंने तभी जाके वो मेरी लाइफ में आया था बट येस डेफिनेटली माई पॉइंट इज कि उसने मुझे इतना इन्फ्लुएंस किया इतनी चीज़ें मुझे सिखाई इतना साथ दिया इन स्टडी सो येस फॉर श्योर अगर आज भी मुझे कोई बोलेगा कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड है अच्छे दोस्त काफ़ी मेरे यहाँ पे भी हैं न्यूजीलैंड में भी हैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं बट आई विल नेवर गोइंग टू यू नो मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए बट ऑनेस्टली जब भी दोस्ती की बात आती है सुदीप हमेशा मेरी नज़रों में मेरे दिल पे और मेरे दिमाग में वहीं आता है सो येस ऑब्वियसली अभी तो बहुत ही गैप आ चुका हमारी बातों में हमारी बात होती नहीं है कॉन्टैक्ट्स भी नहीं एक दूसरे से बट येस स्टिल I think about him and I'm so grateful for him for helping me in many, many ways, like directly or indirectly. Indirectly, toh usne bahut kuch kiya. Directly bhi kiya hai usne definitely, but wo jatata bahut hi kam tha. Actually, mujhe ye bhi yaad hai that, you know, he used to fight amongst uske bachpan ke doston se. Hamari dosti bachpan ki nahi thi. Main 9th class mein tha, tab meri usse dosti hui thi. और वो अपने दोस्तों से लड़ जाता था अपने बचपन के दोस्तों से यानी चड्डी वड्डी यारों से मेरे लिए तो मैं वही सवाल आज भी करता हूँ कि क्यों व्हाई है कोई आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई दोस्त जो सच में बहुत कुछ कर गया आपकी लाइफ में आपके लिए

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: आवाज गूंजेगी।
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। अगर आपने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो, या फिर अगर आपने मुझे 12 बजे से सुन रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सैंडी विल बी जॉइनिंग राइट आफ्टर माय शो आफ्टर 3 एंड उसके बाद रोज भी उनका साथ देंगे इन द ड्राइव शो। आप बने रहिए, इस आर में आपके लिए स्पोर्ट्स की खबर भी लेके आऊंगा, टेक्नोलॉजिया की खबर भी लेके आने वाला हूँ और यस लेटेस्ट खबर तो मैं बताता हूँ हर आर में, मौका भी देने वाला हूँ जहाँ पे आपको जीतने का मौका मिल सकता है ड्रॉ में शामिल होके ढेरों इनाम। कैसे बने रहिए यार, बने रहिए। सुजय शुरुआत करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत गाने से पहले।
2: बचाओ क्या?
3: लहू लहान हुआ है फलक, ये कैसा लोहा पिघला है, एक सूरज डूब गया पीछे, एक सूरज सामने निकला है।

0: न्यूजीलैंड में 2026 जनरल इलेक्शन कैंपेन ऑफिशियली हीटअप हो चुका है, क्योंकि नेशनल और लेबर दोनों ने 27 सितंबर को ऑकलैंड में अपनी कैंपेन लॉन्च की थी। प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन की नेशनल पार्टी ने फिक्स द बेसिक्स बिल्ड द फ्यूचर मैसेज के साथ 10-पॉइंट प्लेज कार्ड अनाउंस किया है, जिसमें नो न्यू टैक्सेस, कीवी सेवर चेंजेस, लॉन्गर पेड पेरेंटल लीव, टफर क्राइम मेजर्स और हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट जैसे प्रोमिसेस किए गए हैं। वही क्रिस हिपकिंस लेबर पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि बेटर स्टार्ट्स नाउ स्लोगन के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग, हेल्थ केयर, जॉब्स और हाउसिंग को कैंपेन का मेजर फोकस बनाया। दोनों पार्टीज एक दूसरे की पॉलिसीज और इकोनॉमिक प्लान्स को चैलेंज कर रहे हैं और इलेक्शन 7 नवंबर 2026 को होने वाला है। सो हैव यू रजिस्टर्ड योरसेल्फ? होपफुली यस, इफ नॉट देन अभी कर लीजिए, कहीं लेट ना हो जाए, बिकॉज हर एक वोट बहुत ही यहाँ पे कीमती हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: ड्राइविंग यू होम, ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
4: ये गलत बोल दिया यार।
3: और पहनता भी नहीं उसको।
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी वो।
4: अभी ब्रांड हो गया ना।
3: रुस्बे के बाल लगे उस।
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J2.
6: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
7: Don't sleep on Briscoe's one-day sale on now with huge one-day 60% off deals plus huge one-day store-wide savings. Stores open late. Briscoe's one-day sale today only. See online for TCs and store hours.
8: Tick off your spring to-do list for less at Mitre 10. Save $50 on selected 10-litre solar guard exterior and roof paint. And get growing with 3 10-centimetre herb plants for just $18. T's and C's apply. Shop now at Mitre 10.
9: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी 2 फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई।
10: 35 minutes and we've moved 3 kilometers.
11: Welcome to peak hour commute, bye.
10: Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
11: Over 18, lived here for more than a year, and a resident for electoral purposes?
10: Yeah, that sounds like me.
11: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
10: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
12: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
13: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
14: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
13: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
14: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
13: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
15: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 ईयर्स।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने,
16: कभी भी कहीं भी।
17: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
16: इसके पीछे
1: हम
16: स्किप या रीप्ले।
0: वेलकम बैक। चलिए स्पोर्ट्स की बात करते हैं। इंडिया के T20 इंटरनेशनल कैप्टन क्रिकेट कैप्टन श्रेयस अय्यर ने लखनऊ में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अपनी मेडन T20 इंटरनेशनल सेंचुरी के बाद ICC रैंकिंग में 18 प्लेसेस की ह्यूज जंप की है। अय्यर अब पहली बार T20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग में नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने लखनऊ में सिर्फ 43 बॉल्स पर अनबीटन 102 रन बनाए हैं, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के इंक्लूड थे, और इंडिया के 8 विकेट विक्ट्री भी दिलाई। इसके साथ इंडिया के 4 बैटर्स टॉप 10 में हैं। ईशान किशन नंबर 1, अभिषेक शर्मा नंबर 2, श्रेयस अय्यर नंबर 7 और तिलक वर्मा नंबर 10। T20 इंटरनेशनल बॉलिंग में भी इंडिया के अक्षर पटेल 16 प्लेसेस जंप करके नंबर 7 पर आ चुके हैं। वाओ, that's amazing, yeah, that's amazing.
16: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं कुछ लाइफ से रिलेटेड इन्फ्लुएंसिंग बातें। वेल एक न्यू ग्लोबल स्टडी के अकॉर्डिंग 2024 में दुनिया भर के अराउंड 12% केसेस जो है वो कैंसर के थे, यानी कि रफली 1 in 8 इन्फेक्शन से लिंक्ड है। रिसर्चर्स ने एस्टिमेट किया कि 2.3 मिलियन न्यू कैंसर केसेस इन्फेक्शंस की वजह से हुए हैं। सबसे मेजर कॉज है एच पिलोरी, एचपीवी, हेपेटाइटिस एंड एप्स्टीन बार वायरस और हेपेटाइटिस सी शामिल हैं उसमें। वैसे गुड न्यूज़ ये भी है कि इनमें से काफ़ी केसेस प्रिवेंट या रिड्यूस किए जा सकते हैं। वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग और इन्फेक्शंस का प्रॉपर ट्रीटमेंट काफ़ी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल HPV वैक्सीन सर्विकल कैंसर के रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है, और स्टडी ने ये भी हाईलाइट किया है कि इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर का अराउंड 75% बर्डन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज में है।

0: Well, yes, the competition is here again. आप इस साल के दिवाली विद हम मना सकते हैं, मना सकते नहीं, मनाइए फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून. आप जी सकते हैं शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस. पहला IH लिख के मुझे 5599 पे भेज दीजिए अपने नाम के साथ, सो दैट यू कैन गेट इनटू ड्रॉ फॉर वन कंपटीशन जो कि आपको जितवा सकता है $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर. इनडेलिबल होम्स की तरफ से है ये, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स. उनकी वेबसाइट है www.indelibleholmes.co.nz. एंड दूसरा है $1,000 वर्थ ऑफ हैरिंगटन लिविंग जीतने का मौका, जहां पे आप होम डेको और फर्नीचर वाउचर्स जीत सकते हैं. टेक्स्ट भेजिए मुझे HL स्पेस अपने नाम के साथ 5599 पे, सो दैट यू गेट इन टू ड्रॉ एंड कुड बी द विनर ऑफ $1,000 वर्थ ऑफ हैरिंगटन लिविंग खरीदने का मौका. वेल, हैरिंगटन लिविंग मनुकाओ स्प्रिंग सेल इज ऑन नाउ. ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60-month इंटरेस्ट फ्री. टर्म्स एंड कंडीशन ओनली एट हैरिंगटन लिविंग मनुकाओ. विजिट hum.roa.nz फॉर टर्म्स एंड कंडीशन फॉर दिस एंटायर कॉम्पिटिशन. आप एक चीज ध्यान रखिए कि 5 मिनट ही आपके पास, जितनी जल्दी हो सके आप मैसेज भेजिए मुझे. और स्टैंडर्ड करियर रेट अप्लाई डेफिनेटली, बट यस, आप सभी आइए और जितना हो सके आप इस कॉम्पिटिशन में भाग लीजिए. लंच बॉक्स विद केतन. मुझे पसंद है लड़का. हम
1: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए.
1: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
4: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe, only on Hum.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो.
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
9: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे.
10: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
9: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
11: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
12: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है. अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है. एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं. कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
13: Don't sleep on Briscoe's one-day sale on now with huge one-day 60% off deals plus huge one-day store-wide savings. Stores open late. Briscoe's one-day sale today only. See online for TCs and store hours.
14: It's Woolworth's Health and Body Sale. Get in quick for half price on Asano products and 1 litre Palmolive body wash or 700ml shampoo or conditioner, just $6.89 each. TCs and exclusions apply. Only at Woolworth's.
15: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका. लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी 2 फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई.
16: Non-stop Bollywood.
17: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
16: हम playing Bollywood's biggest hits. लंच बॉक्स विद केतन।
4: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
18: इसके पीछे
16: हम टेक टॉक।
0: Well, yes, let's talk about technology. खबर, एक न्यूजीलैंड कंपनी को $18,720 का फाइन हुआ है after it tried to export 9,098 electronic integrated circuits to Singapore and Hong Kong without notifying authorities. ये चिप्स नॉर्मली कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में यूज होता है, लेकिन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, वेपन्स गाइडेंस सिस्टम और मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी यूज किया जा सकता है। वैसे कस्टम्स ने दोनों शिपमेंट कंट्री से बाहर जाने से पहले ही सीज कर लिया है। कंपनी ने मनुकाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो चार्जेस पर गिल्टी प्ली की है। कस्टम्स ने इसे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोसिक्यूशन बताया है और कहा कि एक्सपोर्टर्स को प्रॉपरली चेक करना होगा कि वो क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहां जा रहा है और उसके एंड यूज क्या हो सकते हैं। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट फॉर देम। सो द थिंग फॉर अस इज वेट एंड वॉच, क्या खबर आती है, क्या डिसीजन होता है, इस पे जरूर बताएंगे आप।
16: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: Monaco.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
3: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
4: अब हमारा क्या होगा?
5: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
3: तो क्या करें?
6: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
7: All right, Pippa, now we're going to do a radio ad.
8: Can't you just use my line from the TV ad?
7: Well, let's just do it again, please, Pippa.
8: Phone dollars are for phones. Obviously?
7: Yeah, okay, another one, but without the obviously.
8: Phone dollars are for phones. Ring, ring, ka-ching. Obviously.
7: Q, T's and C's.
8: Eligibility and T's and C's apply. For more info, visit 1NZ/OneWallet.
7: Call in the invert.
8: One New Zealand. Let's get connected.
9: Weber barbecue sales almost never happen, so don't miss this one. Join us at Auckland's only Weber store for our massive birthday sale this weekend. Get hands-on with the complete 2026 range, the new Weber Spirits, the upgraded Genesis range, and every colour of New Zealand's favourite barbecue, the Weber Q. The grills are blazing, the savings are real. See you at Weber store, 86 Lun Ave, Mount Wellington. Sale finishes Monday.
10: I mean, Barcelona, wow. The Sagrada Familia just blew me away. Beautiful, really. And the food was unreal. We found this little tapas place by accident, ended up staying half the night singing.
11: In September, Ed's luggage went missing en route to Europe, thanks to AA Travel Insurance. That wasn't the story he came home with. AA Travel Insurance. On with the trip. Travel insurance issued by Zurich Australian Insurance Limited. Illustrative example only. Limits, sublimits, conditions and exclusions apply. Consider your own needs and read the policy wording.
12: Diwali aa rahi hai aur fortune la raha hai aapke liye jeetne ka mauka. Lotus Manukau, Mount Roskill ya Botany and Namaste Indian Supermarket se koi bhi two fortune ya simply products khareediye aur jeetiye $501 ka trolley dash. Saath mein har hafte 10 winners ko $101 ka in-store credit. Bus entry form भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th नवंबर. टीज एंड सीज अप्लाई.
13: हम टाइम चेक
14: ब्रॉट टू यू बाय मान टायर्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टायर्स एंड मैकेनिकल सर्विसेज. ओपन 7 डेज. कॉल मान टायर्स ऑन 0800-00-0010.
13: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक.
15: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. Police believe they found the body of missing Christchurch father, 21-year-old Braden Hepworth. It was located at a residential property on Hereford Street this morning. Police say they are treating the death as unexplained and a number of people are helping with inquiries, but it will take time to build a clear picture. Labor wants to boost competition in the regional airline space. It's proposing to give smaller providers fairer access to the airport facilities they need to grow. Consumer Affairs spokesperson Arena Williams says they would work on long-term solutions within the sector.
16: What we want to do is incentivise Air New Zealand to be working alongside the regional flight routes so that regional consumers over time pay less.
15: Calls are growing louder for an overhaul of the nation's dental system. A new report outlines long waiting lists for children and severe understaffing. Dental for All's Hannah Pilkington-Ching thinks oral health care should be universal and free.
17: If people aren't accessing the preventative care they need, it is costing us billions in lost productivity and impact on quality of life.
15: A spate of copper thefts has caught the attention of police in North Canterbury. At least 12 cases have been reported, totalling more than $130,000. To sport, unexpected change for the All Blacks at first five in the Bledisloe Cup Test countdown. Likely starter Richie Mo'unga is out of the two-test series with a calf injury. Dave Rennie went for Damien McKenzie over Bowden Barrett. And to motorsport with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty, it's the jewel in the supercar's crown. The Bathurst 1000 roars into life in just on half an hour with the opening practice session.
13: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
18: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 18.8 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 10 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम आज का सनी ब्राइट रियली गुड डे एंड संडे को बस हल्की सी बारिश होने के चांसेस है, अदरवाइज इट्स ऑल फाइन. सनसेट 7:32 पर.
13: द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं
13: है. कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
18: 3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा कॉफी ब्रेक में. और उसके बाद यहाँ पे ड्राइव शो शुरू हो जाएगा. कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है सो फार, हाउ इज इट गोइंग ऑन, यहाँ पे आप ज़रूर इसके बारे में शेयर कर सकते हैं. एंड वेदर यार बाहर इज लाइक फुल ऑन गर्मी, मतलब फुल गर्मी का वेदर एक्चुअली में लग रहा है कि शुरू हो चुका है. धूप बहुत अच्छी है. जितना ये धूप और ये सनलाइट अभी आप इंजॉय कर सकते हैं, विटामिन डी जितनी आप ले सकते हैं ले लीजिए, बिकॉज अगला हफ्ता जो है ना सन नहीं दिखाई देने वाला. अगला हफ्ता इज फुल ऑन रेनी. मंडे से बारिश वाला वेदर ऐसा दिखाई दे रहा है सो फार. अभी वेदर को बदलते यहाँ पे समय नहीं लगता है ज़्यादा, बट या सो मेक मोस्ट ऑफ दिस सनलाइट इस हफ्ते टिल द वीकेंड. सो इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे. मंडे से यहाँ पे बहुत सारे और भी कॉम्पिटिशन्स शुरू होने वाले हैं. टुडे इज थर्सडे विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट फ्राइडे, लेकिन मंडे से दिवाली के मौके पे एक और बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है जो आपके लिए यहाँ पे शुरू होने वाला है. एंड मंडे को ना एक सेगमेंट भी डिफरेंट शोज में हम लेके आ रहे हैं दिवाली को नज़र में रखते हुए. कुछ डिफरेंट, कुछ नया आपके लेके आने वाले हैं इस साल. उसके बारे में और भी डिटेल्स आपके साथ यहाँ पे ज़रूर शेयर करेंगे. बट टुडे इज थर्सडे, दैट मींस कि आज इलेक्शन स्पेशल है. ड्राइव शो में इलेक्शन स्पेशल में आज हमारे साथ कौन शामिल हो रहा है इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपके साथ थोड़ी देर में है.

0: 3:13 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पर सुन रहे हैं एंड फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ये कॉम्पिटिशन भी आपके लिए ऑन है यहाँ पे। एंड आज ड्राइव शो में 4 के बाद आपको मौका मिलने वाला है इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में हम पे यू कैन विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली। सो ड्रॉ जो है ये 30 अक्टूबर को होने वाला है और आज आपको ड्राइव शो में मौका मिलने वाला है कुछ जीतने के लिए, जैसे कि इस ड्रॉ में शामिल होने के लिए $1,000 वर्थ ऑफ माइटर 10 का वाउचर आपके नाम हो सकता है या फिर $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड वाउचर ये आपके नाम हो सकता है। और इस कॉम्पिटिशन में इस ड्रॉ में कैसे शामिल होना है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में। ड्राइव शो में इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। रिमेंबर ये जो कॉम्पिटिशन है इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी वेबसाइट पे है hum.rova.nz पे। एंड जब आप यहाँ पे मैसेज करते हैं इन कॉम्पिटिशंस के लिए 5599 इज अ प्लेटफॉर्म तो स्टैंडर्ड करियर रेट्स डू अप्लाई।
1: कॉफी ब्रेक विद सैंडी। हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 months इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune, bring home the fortune.
4: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी 2 फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November, टीज एंड सीज अप्लाई।
5: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
6: Don't sleep on Briscoe's one-day sale on now with huge one-day 60% off deals plus huge one-day store-wide savings. Stores open late. Briscoe's one-day sale today only. See online for TCs and store hours.
7: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath and you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
8: Hey you with the ears, your skinny phone plan now has rewards. So, or you're scrolling, tapping, babe, wake up, look at this meme. Ha ha reacts and thumbs up from dad will actually pay off. Join Skinny and renew 3 times in a row to collect up to 1,000 everyday rewards points. Skinny and everyday rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the skinny. Happy, yo.
9: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo. Or avocado, $2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.

0: 3:23 एट द मोमेंट हो चुके हैं फिलहाल. कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं. एंड आज जो वैसे इलेक्शन स्पेशल में हमारे साथ हमारे जो इंटरव्यू है वो है लेबर कैंडिडेट खड़ग सिंह के साथ, जो कि एक्चुअली में ताकानिनी से कैंडिडेट है लेबर के. एंड इनसे काफ़ी सारी बातें एक्चुअली में हमने कल लेट नाइट ऑलरेडी की है, जो आज आपको हम सुनाने वाले हैं. वी टॉक्ड अबाउट स्मॉल बिजनेसेस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग. अभी डिबेट हुई थी रिसेंटली, परसों डिबेट हुई थी बिटवीन क्रिस हेपकिंस एंड क्रिस्टोफर लक्सन. तो इस डिबेट के ऊपर भी काफ़ी सवाल किए गए, उसके बारे में भी बातें हुई. सुपरमार्केट्स के बीच में जो कंपटीशन है, रिटेल क्राइम एंड कम्युनिटी सेफ्टी के बारे में, पुलिसिंग के बारे में, ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हिज विजन फॉर ताकानिनी स्पेसिफिकली साउथ ऑकलैंड में. कुछ ताकानिनी का एक जो हमारे पास सवाल आया था कि वहाँ पे काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है एक जगह से, उसके बारे में भी ये जो सवाल है हमने उनसे ज़रूर पूछा है. तो उनके आंसर्स क्या है, लेबर के प्लान क्या है, और ये पॉलिसीज़ का हमारी कम्युनिटी के लिए मतलब क्या है. तो ये सारी बातें उनसे हुई है जो आज 5 बजे के बाद आप यहाँ पर सुनने वाले हैं इलेक्शन स्पेशल में. एंड उनसे एक्चुअली में इतने डिटेल में ये भी बातें हुई है कि जब भी हम किसी और पार्टी के साथ बात करते हैं तो वो सब कुछ लेबर के ऊपर ही डालते हैं कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में ये किया था, ये किया था, ये किया था, उसके बाद हम रिकवर कर रहे हैं ये सब. तो उसका भी जवाब उन्होंने दिया है. सो इट्स क्वाइट इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन आवल से. सो ज़रूर सुनेगा. उस समय पर अपना फीडबैक आप यहाँ पर भेज सकते हैं. हमारे पास काफ़ी सवाल आए थे आपकी ओर से पूछने के लिए, तो हमने वो सारे के सारे सवाल उनसे ज़रूर पूछे हैं. उन सवालों के आंसर आज आप 5 बजे के बाद इलेक्शन स्पेशल में ज़रूर सुनिएगा.
1: थोड़ा माहौल बना दे.
2: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा मंत्री चोर सिपाही सभी आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
5: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
6: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका. लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई.
7: Pick up a prepaid plan for peanuts with 2 degrees. Starting from just $8, our prepaid prices are nuts. Minimum $10 top-up applies. Plans auto-renew monthly if you have enough credit. Check 2degrees.nz for T's and C's.
8: A message for all parents. Kids aged 12 and under can now ride their bikes on footpaths, and parents or caregivers can ride with them. Remember to look out for children on bikes when driving in and out of driveways. Learn more at nzta.govt.nz.
9: दिवाली आई खुशियां लाई. PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है. अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं. PFSL के साथ होम लोन करवाएं. $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं. 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं. तो इस दिवाली खुशियां बढ़ाएं. PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं. सर्च PFSL और कॉल ऑनलाइन 8469934. टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई.
10: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
11: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
12: Save big at Rebel and get the kids sorted for back to school. Grab a huge range of kids' running shoes for just $69. Get 20% off selected bags and bottles. Plus, score an extra 20% off all clearance. Back to school value is on now. Only at Rebel Sport. See you online for T's and C's.

334 एट द मोमेंट हो चुके हैं. अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गाना भी आप सुनेंगे. लेकिन उससे पहले अभी गर्मियाँ शुरू होने वाली है और ऐसे मौके पे काफ़ी लोगों का होता है कि यार घूमने निकलते हैं. न्यूजीलैंड में स्पेशली सीनिक ब्यूटी बहुत सही होती है और ये स्प्रिंग का टाइम है. बहुत सारी जगह पे तो आपको फ्लावर्स वगैरह ये देखने के लिए भी जाना होता है. चेरी ब्लॉसम के लिए बहुत सारी जगह पे जाते हैं. मुझे इस बार ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा. मेरे घर के बिल्कुल सामने लाइन है इस समय पर चेरी ब्लॉसम की. मुझे लगता है कि पहले होता था कि चेरी ब्लॉसम बहुत कम जगह पे होते थे, तो कुछ पार्क्स में ही लोग जाते थे. कॉर्नवॉल पार्क इज़ वन फेमस फॉर इट. लेकिन अभी चेरी ब्लॉसम एक्चुअली में बहुत सारी जगह पे ये ट्रीज़ होना शुरू हो चुके हैं. लेकिन देर इज़ अनदर प्लेस जो कि एक्चुअली में अभी बंद हो रही है. टेम्प्ररी एक्चुअली में बंद करने के बारे में इसके बारे में सोच रहे हैं. सो ये जो जगह है, अगर आप यहाँ पे पहले कभी नहीं गए हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ब्लू स्प्रिंग्स. सो ब्लू स्प्रिंग्स जो है ये वाइकाटो में है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. उसका पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है. मतलब मज़ा आ जाता है वहाँ पे जाके व्यू करने का. इन अ वेरी गुड सनी डे तो आपको और भी अच्छा लगता है वहाँ पे जाने का. लेकिन ये टेम्प्ररी शायद बंद करने वाले हैं बिकॉज विजिटर नंबर्स हैव ग्रोन फास्टर देन द साइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैन कोप विद. जो मेन कंसर्न्स है बिकॉज ट्रैफिक एंड पार्किंग की, विजिटर नंबर्स जो है ये सर्ज हो चुके हैं, पुटिंग प्रेशर ऑन द नैरो लेजली रोड एंड ब्लू स्प्रिंग कार पार्क. इतना बड़ा कार पार्क नहीं है वहाँ का, एंड आई हैव सीन इट. और जब मैं भी गई थी तो रास्ते पे ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ी थी, जो कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पर नहीं खड़ी हो सकती है. सो जो ट्रैफिक है ऑन लेजली रोड रिपोर्टेडली इंक्रीज फ्रॉम 466 व्हीकल्स अ डे इन 2023 टू 886 in 2025. So there have been 7 crashes and incidents at Leslie Road and White Road intersection over these 5 years, जिसमें एक serious crash भी हुआ था 2025 में. So visitors also have been parking in unsafe locations. Overcrowded भी ये जगह हो जाती है. जो walkway है it attracts more than 100,000 visitors a year. So according to council planning documents, it create pressure on the road, parking, वहाँ पर toilet भी है, visitor management, इन सब चीज़ों के ऊपर. And at times, visitor behavior भी एक concern है वहाँ पर, because council ने previously concerns raise किए थे about illegal parking, dangerous driving, littering over there, and then people throwing coins into the spring, because होता है ना कहीं का ऐसा, coin उसमें फेंको, कुछ मांगो, पूरा हो जाएगा, ऐसा कई सोचते हैं. तो वो कर भी रहे हैं वहाँ पे. एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर वाटर. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इज इन कीपिंग पेस विद इट. नाउ देयर इज $675,000 इन गवर्नमेंट फंडिंग. इंटरेस्टिंगली लास्ट मंथ ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था फ्रॉम द इंटरनेशनल विजिटर लेवी कि जो प्रपोज इम्प्रूवमेंट्स हैं वो वहाँ पे होने वाले हैं. लेजली रोड के कार पार्क में नई टॉयलेट्स भी लगने वाली हैं, टेक्नोलॉजी होगी टू सपोर्ट द विजिटर मैनेजमेंट, एंड पोटेंशियली अ पार्क एंड राइड सर्विस शायद वहाँ पे होगी. नाउ डू यू थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया कि टेम्प्ररी उसको क्लोज करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए एक्सेस ड्यूरिंग द पीक पीरियड्स? मुझे जो ऐसा पढ़ के समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि मे बी यू कैन डू समथिंग लाइक रजिस्ट्रेशन बेस्ड पे, कि यू हैव टू काउंसिल की वेबसाइट पे अगर आपको वहाँ पे जाना है तो जस्ट रजिस्टर, तो आपको पता चलेगा, काउंसिल को पता चलेगा कि इस टाइम पे कितने नंबर ऑफ़ विजिटर्स यहाँ पे आने वाले हैं. आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर दे कैन जस्ट क्लोज द रजिस्ट्रेशन एंड देन डू डेट वाइज रजिस्ट्रेशन. ये मुझे लगता है बहुत कन्वीनियंट होगा. और बहुत सारी साइट्स जो है यहाँ पे न्यूजीलैंड ये मेथड अप्लाई करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग एक साथ अलाउड नहीं कर सकते हैं वहाँ पे ये चीज़ की जाती है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेथड कन्वीनियंट रहेगा रैदर देन टेम्प्ररी क्लोज कर देना उसको. डेफिनेटली वहाँ पे अगर कार पार्क के ऊपर वो और भी काम करते हैं तो वो एक बहुत ही सही हो जाएगा. लेकिन अगर इतने फॉर एग्ज़ाम्पल 100 लोग उनको एक टाइम के लिए चाहिए, तो वो 100 लोगों के रजिस्ट्रेशन ओपन कर सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग. What is your take on this? आप भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं. And have you ever been here? ब्लू स्प्रिंग में आप कभी गए हैं? वाइकाटो में है, तो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? आप भी शेयर कीजिए 5599 पर. एंड आपने कुछ सोचा है कहीं पर जाने के लिए? इज़ देर एनी रिकमेंडेशन जहाँ पर जाना चाहिए ओवर दिस गुड वेदर कहीं पर घूमने के लिए? वो भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं.

0: you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: 3:49 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. फिलहाल कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं. थोड़ी देर में यहाँ पे ड्राइव शो भी शुरू हो जाएगा जहाँ पे फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में पार्टिसिपेट करने का मौका आपको आज यहाँ पे मिलने वाला है. एंड मंडे से दिवाली स्पेशल के मौके पे आपको हम कुछ डिफरेंट भी इस बार सुनाने वाले हैं. दिस दिवाली यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस द टाइमलेस स्टोरी ऑफ रामायण विद हम. वेल, इसके बारे में और भी डिटेल्स आपके साथ हम यहाँ पर ज़रूर शेयर करेंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: हम एक्यूरेट ट्रैफिक सेंचुरी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 18.8 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 10 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. वैसे मौसम आज का सनी ब्राइट ब्यूटीफुल डे टिल संडे एंड सनसेट आज का 7:32 पर.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
1: चार बज के दो मिनट हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलॉन्ग विद सैंडी राइट नाउ. रुज़बे अभी तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन येस्टरडे वी डिड हैड अ रिकॉर्डिंग. हमारा जो रिकॉर्डिंग है इलेक्शन स्पेशल का हुआ था, एंड ये रिकॉर्डिंग हुई थी लेबर के कैंडिडेट तकनीनी से जो है खड़क सिंह, इनके साथ जिन्होंने लेबर की पॉलिसीज़ के बारे में जो लेटेस्ट डिबेट हुई है और काफ़ी सवाल जो आपके थे हमने उन तक पहुंचाए हैं, तो वो सारे सवालों के जवाब ज़रूर रिकॉर्ड हुए हैं. ये आपके लिए 5 बजे के बाद यहाँ पे रहने वाला है. बट फॉर नाउ आई वॉज रीडिंग, ये हेडलाइन आई है कि एक लैंडलॉर्ड को फाइन किया गया है आफ्टर रेंटिंग आउट बैंड ऑकलैंड प्रॉपर्टी. सो एक ऑकलैंड लैंडलॉर्ड $2,000 प्लस कोर्ट का जो कॉस्ट होगा आफ्टर रेंटिंग आउट अ रन डाउन Not weather tight North Shore home despite being banned from doing so. So in a 3-year ka restraining order diya hai tenancy tribunal ne, and preventing him for renting. Actually ye pehle diya tha, so October 2024 mein unko 3 saal ka restraining order diya tha ki wo kisi ko rent out properties nahi kar sakte hain jo ki sahi nahi hai, jo weather tight nahi hai. But prosecutor said he granted a tenancy at the property in June 2025 while it was still in poor condition. जो केस है ये MBIE के पास आया था, टेनेंसी कंप्लायंस एंड इन्वेस्टिगेशन टीम के पास, जहाँ पे कोर्ट ने हाईलाइट किया कि जो लैंडलॉर्ड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू कीप द टेनेंट्स सेफ. सो या इसके ऊपर अभी और भी चीज़ें होंगी, उनको और भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लाइक मोर देन $11,000 इन कंपनसेशन, डैमेजेस, कॉस्ट, ये सारी चीज़ें तो अलग से रहेंगे, लेकिन जो फ़ाइन है वो $2,000 प्लस का फ़ाइन है. या क्या ही मिल गया उसको. एनीवे, रेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो एक और आर्टिकल मैंने देखा कि ओवर द फ्यू मंथ्स रेंट जो है, रेंट पे लेना घर, इसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. काफ़ी लोग अब रेंट पे रहना ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं देन बाइंग अ होम. वेरी इंटरेस्टिंग. सो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? डू यू प्रेफर, आपको क्या लगता है कि ऐसा लॉन्ग टर्म इज़ इट ओके टू रेंट अ हाउस देन बाइंग अ हाउस? मतलब आई थिंक ये वहाँ पे ओके है जब किसी को सेटल नहीं होना है, उनको मे बी इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया की ओर मूव कर जाना है. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? बिकॉज मैंने ये एक्चुअली में सुना है फ्रॉम वन ऑफ द पर्सन कि उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उन्होंने घर पर इन्वेस्ट नहीं किया, बिकॉज दे रेदर इन्वेस्ट इन बिजनेस देन हाउस. दोनों वैसे इन्वेस्टमेंट तो दोनों ही होते हैं. आपका क्या टेक है इसके ऊपर? आप भी यहाँ पे शेयर कीजिए, या फिर मैसेज कीजिए 5599 पर, या कॉल करके 0800 00 हम इज़ अ नंबर 0800 00 4866.

4:14 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. एंड उधर इंडिया से बॉलीवुड से एक सैड न्यूज आई है. वेल अभी सो फार काफ़ी न्यूज़पेपर्स मैंने चेक किए हैं, इवेंचुअली क्या होता है नहीं पता, बट जितने भी न्यूज़पेपर है, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, ANI एंड एवरी अदर न्यूज़पेपर, नाना पाटेकर हैज़ पास्ड अवे. नाना पाटेकर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 75. सो या इट्स अ क्वाइट अ शॉकर दो, बिकॉज ही वॉज फाउंड अनकॉन्शियस एट हिज होम. And then उनको वहाँ पर हॉस्पिटल में लेके गए थे ट्रीटमेंट के लिए. He was declared dead at 5:20 AM in India. डॉक्टर ने काफ़ी ट्राई किया एक्टर को रिवाइव करने के लिए फॉर अराउंड 45 मिनट्स, बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट. सो वहाँ के जो डॉक्टर हैं मणिपाल हॉस्पिटल के, डॉक्टर शेखर सालकल, उन्होंने कन्फर्म किया है एक्टर की डेथ को टू न्यूज़ एजेंसी ANI. एंड इन्होंने बोला है कि एक मेडिको लीगल केस जो है ये रजिस्टर किया जाएगा, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया जाएगा. सो या हॉस्पिटल से ये एक्चुअली में कंफर्म न्यूज़ आ रही है कि नाना पाटेकर हैज़ पास्ड अवे. वेल या व्हाट वुड इंडियन सिनेमा यू नो लुक लाइक विदाउट नाना पाटेकर. एक बहुत ही बड़ा मार्क रहा है नाना पाटेकर का इंडियन सिनेमा में, जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है. इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन उनके इंडियन सिनेमा में रही है, चाहे वो हम हिंदी मूवीज़ के बारे में बात करते हैं या फिर मराठी मूवीज़ के बारे में बात करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड परफॉर्मर हम कह सकते हैं इंडियन सिनेमा में. ही वॉज नेवर एन एक्टर जिनको एलेबोरेट इंट्रोडक्शन की ज़रूरत कभी पड़ी है. नाना पाटेकर को उनकी आवाज़, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी अबिलिटी टू ब्रिंग अ सर्टन इंटेंसिटी अपनी फ्यू लाइंस में, उनके डायलॉग ही फेमस हो जाते थे. मतलब अपनी इतनी इंटेंस एक्टिंग उनकी हमेशा रही है कि डायलॉग जो है वो इतने फेमस हो गए कि मूवी किसी को याद रहे ना नहीं, लेकिन नाना पाटेकर का ये डायलॉग है वो हर किसी को याद रहा है. सो या नाना पाटेकर के यू नो इट्स क्वाइट सैड न्यूज़ जो उनके बारे में यहाँ पर आ रही है. इसके बारे में और न्यूज़ आती है तो आपके साथ हम यहाँ पे ज़रूर शेयर करेंगे, बट दिस इज़ न्यूज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया हॉस्पिटल से, जिन्होंने न्यूज़ एजेंसी ANI को, जो कि मोस्ट ऑफ द न्यूज़ जो है ये कंफर्म न्यूज़ को पब्लिश करते हैं, उनको कंफर्म किया है कि नाना पाटेकर ही हैज़ पास्ड अवे ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट.

0: channel right here.
1: Streaming on Rover.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
3: Moisture और ventilation का problem लगता है.
4: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
5: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
6: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
7: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे.
8: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
7: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
9: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
10: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardos is asking Aotearoa to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
11: Are you ready to go home?
12: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
13: ड्राइव शो फिलहाल आप यहाँ पर सुन रहे हैं. 421 एट द मोमेंट हो चुके हैं. एंड यस, आई कैन कन्फर्म द न्यूज़. सो नाना पाटेकर हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 75. इनकी डेथ गोवा रेजिडेंस में हुई ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स. सो ही सफर्ड अ हार्ट अटैक. सो 75 ईयर ओल्ड एक्टर, ही वॉज ब्रॉट टू प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पे he was brought as unconscious only अपने अपार्टमेंट से जब वो वहाँ पर पहुँचे थे. सीनियर डॉक्टर ने उनको अटेंड किया, CPR दिया था उनको, बट ही कुड नॉट बी रिवाइव्ड. अ मेडिकल लीगल केस जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है इन दिस कनेक्शन, वाइल जो पोस्टमार्टम है ये कंडक्ट किया जाएगा. एंड या तो ये कन्फर्मेशन जो है ये डॉक्टर शेखर सालकर जो है इन्होंने प्रोवाइड की है. एंड इसके बारे में अभी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ खैर पोस्ट भी कर रहे हैं. मैनी सेलिब्रिटीज़ आर एक्चुअली पोस्टिंग अबाउट इट. मराठी एक्टर सिद्धार्थ जाधव इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वन जिन्होंने इसके बारे में पोस्ट किया है अबाउट नाना पाटेकर्स डिमाइस, कि इन शॉक आफ्टर नोइंग अबाउट द डेथ, दिस वॉज नॉट द टाइम टू गो, ही हैड मैनी थिंग्स टू डू येट, इन डीप शॉक. इनफैक्ट नाना पाटेकर ने कुछ दिन पहले ही एक उन्होंने एड्रेस किया था पब्लिक को. सो ही वॉज एट सम्राट क्लब इंटरनेशनल, एक सेरेमनी में वो गए थे डोनापोला में, एंड वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी ऑडियंस को बहुत ही इंस्पायरिंग स्पीच एक्चुअली में वहाँ पे दी थी. दैट वाज वन ऑफ हिज लास्ट पब्लिक अपेयरेंस, ये हम कह सकते हैं. नाना पाटेकर, यू नो, ही वॉज बॉर्न इन 1951, एंड उनका करियर बहुत ही वास्ट रहा है. एंड अपनी इंटेंसिटी, डायलॉग डिलीवरी के लिए हमेशा जाने गए. और मुझे लगता है कि उनके जो करैक्टर्स थे ना, वो नॉट जस्ट एक मूवी का एक्टर, वो एक कॉम्प्लेक्स और बहुत ही अनकन्वेंशनल करैक्टर हमेशा प्ले करते आए हैं. मतलब जस्ट उनकी अगर कोई भी मूवी आप उठा के देखो नाना पाटेकर की, किसी भी मूवी में उनका जो करेक्टर है उनके अंदर इंटेंसिटी थी, एक ना इंटेंस रोल वाला उनको हमेशा करेक्टर दिया जाता था. आई वॉज वॉचिंग दिस रील अदर डे, अग्नि साक्षी आई थिंक मूवी का नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मनीषा कोयराला है उसमें. एंड मैंने वो एक रील देखी और मैंने वो मूवी नहीं देखी थी, और वो रील में मेरे को इतनी सही एक्टिंग लगी नाना पाटेकर की. इवेंचुअली सर्च द मूवी एंड वॉच द होल मूवी, एंड क्या क्लास एक्टर रहे हैं नाना पाटेकर. एक्चुअली में बहुत ही अनकन्वेंशनल करेक्टर्स इन्होंने निभाए हैं अपनी मूवी में. सो यहाँ नाना पाटेकर के बारे में खैर आज हम और भी बातें करेंगे, बट अगर आपका कुछ मैसेज है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे, इनफैक्ट यू वांट टू टॉक अबाउट इट, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इट यहाँ पे 0800 00 हम पर, या फिर मैसेज करके 5599 इज द नंबर.
2: सुपर से ऊपर ब्रॉट टू यू बाय रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स लिमिटेड, हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
0: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम.
2: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

4:31 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं ड्राइव शो। फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, इसमें पार्टिसिपेट करने का वक्त आ चुका है। यू कैन विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली विद हम। अभी आपको चांस मिल रहा है इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जहाँ पर यू कैन विन $1,000 वर्थ ऑफ माइटर 10 वाउचर। माइटर 10 में मुझे लगता है कि हर किसी को काम हो सकता है, हर किसी को अपने घर के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर चाहिए होगी जो आपको माइटर 10 मेगा में मिलेगी। एंड दिस इज़ प्रोवाइडेड बाय NZPMI। अनलॉक योर प्रॉपर्टीज़ ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI। आपके लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स है फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट। आप इन्हें विज़िट कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट को विज़िट कीजिए nzpmi.co.nz फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या फिर आप इन्हें कॉल कीजिए 0800-4-NZPMI पे। नौ इनकी ओर से आप जी सकते हैं माइटर 10 का वाउचर $1,000 का। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको NZPMI अपने नाम के साथ लिख के भेजना है 5599 पर। सो रिमेंबर द जो स्पेलिंग है NZ एज इन न्यूजीलैंड, PM एज इन प्राइम मिनिस्टर एंड I। सो NZPMI आपको अपने नाम के साथ लिख के भेजना है 5599 पर। आपके पास जब ये गाना प्ले होगा तो वहाँ से टाइम आपका शुरू होता है, आपके पास 5 मिनट का समय रहेगा इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपनी एंट्रीज यहाँ पे भेजने के लिए। एंड आप जितनी बार मर्जी मैसेज कर सकते हैं, आप चाहे 10 बार 20 बार जो भी आपको मैसेजेस करने कर सकते हैं, लेकिन रिमेंबर 5599 शॉर्ट कोड नंबर है, तो जब भी आप मैसेज करते हैं 20 सेंट्स उसके कटते हैं। स्टैंडर्ड करियर रेट्स इसमें अप्लाइड होते हैं।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स.
3: Traffic.
4: Ribble Sports Boot Drive.
5: Mostly cloudy overnight with a low of 11 on the northern to Silverdale from town, 52 minutes. Heavy from Northcote Road to Oniwa. To Massey, 21 minutes on the southern. Heavy traffic south from Newmarket to Luke Street. North from Avenue Road to just past Green Lane. Town to Manukau, 48 minutes to Drury, 1 hour 19. Southwestern heavy in both directions through Mangere Bridge and from Puhinui Road to the southern.
4: Donate your pre-loved boots in store and get 20% off a new pair of shoes at Ribble Sport.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer. 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
7: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
6: Mental health is part of our overall health. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है. अगर आप overwhelmed हैं या emotions manage करने में struggle कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है. Asian Family Services आपके कल्चर को समझते हैं और professional, confidential और free emotional support देते हैं. Call Asian Helpline Free on 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
8: Busy day. Ah, looks like I'm on dinner tonight. With Woolworths Express Pickup, I can order what I need online and pick it up in under 60 minutes. Easy. That's my kind of Woolies.
9: T's and C's apply.
6: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudema Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12, half price. Under 5s, free. Book now at sudemahotels.com/food festival.

0: 7:44 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। दिवाली आने वाली है और ऐसे मौके पे काफी लोग घर पे रंगोली भी लेके आते हैं अपने घर पे रंगोली बनाने के लिए। सो AUT के एक्सपर्ट है, दे आर कॉलिंग ऑन द फैमिलीज टू टेक केयर जब आप दिवाली के मौके पे रंगोली के प्रोडक्ट लेके आएंगे, बिकॉज किसी रंगोली प्रोडक्ट में एस्बेस्टोस की कंटेमिनेशन भी हो सकती है। सो सिंस जैन 5 रंगोली प्रोडक्ट्स जो कि न्यूजीलैंड में बेचे गए हैं have been found to contain the cancer causing substance and total of 24 colored sand products jo hai inhe recall bhi kiya gaya hai. The same or similar product jo hai have also been recalled in Australia, Japan, US, UK and across Europe as well. So last week वैसे RNZ ने report किया था कि early लर्निंग सर्विसेज जो है वहाँ पे दे वर टेम्पररी क्लोज बिकॉज वहाँ पे अलर्ट था अथॉरिटीज़ को कि पोटेंशियली एस्बेस्टोस कंटेमिनेटेड रंगोली पाउडर्स है वहाँ पे। सो AUT के जो रिसर्चर है, एस्बेस्टोस के जो रिसर्चर है, एसोसिएट प्रोफेसर भी है वहाँ के, टेरी एंड बैरी, इन्होंने लोगों को वॉर्न किया है, आपको वॉर्न किया है कि टू चेक इफ़ दे ओन एनी ऑफ द कलर्ड सैंड प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन रिकॉल्ड। सो बिकॉज अभी स्पेशली बिकॉज दिवाली आने वाली है तो दिस इज़ वन टाइम जब आप वो कलर्ड पाउडर्स निकालते हो अपने घर पे रंगोली बनाते हैं। सो डिस्पाइट इनिशियल रिकॉल नोटिसेस क्लेमिंग की जो एस्बेस्टोस एंड दीज प्रोडक्ट्स वर कंसिडर्ड लो रिस्क, लेकिन ये जो रिसर्च है इसने पाया है कि जो एयरबॉर्न एस्बेस्टोस है इन 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो टेस्ट किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी हाई लेवल के प्रोडक्ट्स में है ये। सो ऑल्दो कोई स्पेसिफिक रंगोली प्रोडक्ट ऐसा टेस्ट नहीं किया गया फॉर एयरबॉर्न एस्बेस्टोस बट सम वर फाउंड टू कंटेन एस्बेस्टोस, सो नो अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस इज सेफ एक्चुअली। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि काफ़ी घरों पे जब कई बार कंस्ट्रक्शन होती है तोड़ा जाता है या फिर दोबारा बनाया जाता है तो वहाँ पे भी बाहर वार्निंग लिखी होती है कि ज़्यादा नज़दीक आपको नहीं जाना है, एस्बेस्टोस का वहाँ पे खतरा होता है। सो एस्बेस्टोस का क्या होता है कि इसके जो फाइबर्स होते हैं अगर कोई इनहेल कर ले इट कैन लीड टू डिजीजेस जिसमें लंग कैंसर भी आता है, मेसोथेलोमिया ये भी आता है, एंड इसका ज़्यादा एक्सपोजर अगर हो जाता है इट कैन लीड टू कैंसर डायग्नोसिस एज वेल। तो इसलिए जो प्रोफेसर है इन्होंने रिकमेंड किया है कि पीपल चेक वेदर एनी रंगोली क्राफ्ट सैंड या जो प्ले सैंड प्रोडक्ट्स होते हैं दे अगर आपके पास है वो उस लिस्ट में से नहीं है जिन्हें रिकॉल किया गया था। तो अगर आपको ये चेक करना है ना कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट है ये उस लिस्ट में से नहीं है, व्हाट यू कैन डू इज़ इस वेबसाइट पे जाइए productsafety.govt.nz, इट्स productsafety.govt.nz। वहाँ पे गवर्नमेंट ने वहाँ पे अनसेफ गुड्स नोटिस वो सब कुछ वहाँ पे उन्होंने लिस्ट करके रखा है। सो गवर्नमेंट वैसे अभी कंसिडर कर रही है काफ़ी चीज़ों को, सैंड प्रोडक्ट्स को विच आर यूज्ड बाय चिल्ड्रन दैट हैव नॉट टेस्टेड नेगेटिव फॉर एस्बेस्टोस। सो टू रिमेन सेफ स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि यू बाय द सैंड प्रोडक्ट्स जहाँ पे रिटेलर्स कैन प्रोवाइड द रिजल्ट ऑफ नेगेटिव एस्बेस्टोस टेस्ट। सो अगर आप बाय कर रहे हैं इस बार रंगोली पाउडर्स तो मेक श्योर कि आप ये रिटेलर्स के साथ ज़रूर चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछने में कुछ नहीं जाता है, आप अगर हेजिटेट करोगे कि भाई ये सवाल पूछेंगे कैसा लगेगा, इट्स बेटर देन हैविंग एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस आई विल से। सो अल्टरनेटिव टू क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर मेकिंग रंगोली इंक्लूड पाउडर मेड एट होम, जो कि आप घर पे आप एनी वे यू नो राइस या फूड कलरिंग उस लीव्स या पेटल्स को लेके भी वैसे आप रंगोली बना सकते हैं। देर आर सेवरल अदर आइडियाज़ टू डू द रंगोली एज वेल अगर आपको फिर भी लगता है कि ये अनसेफ है, बट या फॉर डिटेल्स यू कैन गो टू द वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट है productsafety.govt.nz, वहाँ पे इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, जो प्रोडक्ट्स जिनको रिकॉल किया गया है उसकी लिस्ट भी आपको मिलेगी वहाँ पे।
1: The Drive Show with Sandy and Rusbane, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura JQ. Throwback.
2: ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.

0: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 140cc quality lawnmowers, just $249. Cordless leaf blower and battery, just $70. Cordless weed eater and battery, just $70. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
1: Don't sleep on Briscoe's one-day sale on now with huge one-day 60% off deals plus huge one-day store-wide savings. Stores open late. Briscoe's one-day sale today only. See online for TCs and store hours.
2: Voting feels easier when you know what to expect. Accessible resources are available to help you prepare to vote in the 2026 general election. Get information in the format that works for you. Choose from audio, braille, easy read, large print, and New Zealand Sign Language. Visit vote.nz or call 0800 36 7656. You can vote from Monday 26 October to 7pm on Election Day, Saturday 7 November. Brought to you by the Electoral Commission.
3: Now when you're in the loop with ANZ and take the train, money loops back. Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT trains with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
4: It's my turn on dinner and my flatmates have only ever seen me make toast. Burnt toast. But I look like I know what I'm doing with Wilbur's sweet chilli butterfly chicken. Even though I don't. That's my kind of Woolies.
5: Check.
6: Brought to you by Mann Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tyres on 0800 00 00 10.
5: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
7: Good evening, I'm Bridget Hastie with the latest at 5. The Greens are describing National's election welfare policy as shameful. Co-leader Chloe Swarbrick says Christopher Luxon's promise to target job seeker benefits is wrong.
8: We currently have the highest unemployment that we have in 11 years. There are so many New Zealanders, especially young New Zealanders, who are without jobs.
7: National's policy includes random drug tests for those on JobSeeker to make sure they're job ready. The party says it wants to ensure the welfare system remains focused on employment and is fair and affordable for taxpayers. A serious crash has blocked part of State Highway 1 in South Canterbury. It happened on the Temuka-Orari Highway at Orari, north of Winchester. Drivers are urged to avoid the area. Significant progress has been made in suppressing the 1,400 hectare fire near Queenstown. Fens crews have contained about 80% of its perimeter, with full control near the Walter Peak homestead. Gisborne Coast Guard volunteers have pulled off an 11-hour rescue of a solo sailor who was trapped by a stuck anchor. The man raised the alarm from Mahia Peninsula at around 10 on Tuesday morning. When help arrived, he was dehydrated and injured from trying to get free, while his 42-foot yacht's foresail was badly torn. To sport, All Blacks coach Dave Rennie is under no illusions as to the quality of the Wallabies for Game 1 of the Bledisloe Cup on Saturday. As Wallabies coach, he's handed a number of them their international starts. And to motorsport, with Mag & Turbo's 80,000k tyre warranty, the opening supercars practice session for the Bathurst 1000, Kai Allen and Jaden Ojeda were the only drivers to complete a lap in under 2 minutes and 6 seconds.
5: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
9: World's best, hamari koi brand nahi hai.
5: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
10: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 18.8 डिग्री है और आज को बनाए 10 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है. सनसेट आज का 7:32 पर.
11: The Drive Show with Sandy and Rusbane, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusbe.
12: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
10: 5:03 हो चुके हैं और वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू। ऐसे पावर ड्राइव एट 5 आपके लिए शुरू हो चुका है एंड अगर आपने बॉलीवुड की न्यूज़ मिस आउट की है तो आज सैड न्यूज़ आई है बॉलीवुड से। वेटरन एक्टर नाना पाटेकर ही पास्ड अवे। वेल, नाना पाटेकर जो कि इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव एक्टर कह सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल परफॉर्मर हम इनको ज़रूर कह सकते हैं, ओवर द 5 decades जो इन्होंने मूवीज़ की है, अनकन्वेंशनल करेक्टर्स इन्होंने अपनी मूवीज़ में प्ले किए हैं, मतलब नॉट जस्ट अ सीरियस रोल्स जहाँ पे क्रांति वाले रोल भी इन्होंने किए हैं, नेगेटिव शेड में रोल किए हैं, बट देन कॉमेडी भी इन्होंने की है। हर एक रोल में इनके डायलॉग्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, द वे ही डिलीवर्ड हिज डायलॉग्स। तो आज 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में हम ट्रिब्यूट देने वाले हैं यहाँ पे ड्राइव शो में नाना पाटेकर को। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट नाना पाटेकर, उनके मूवीज़ के गाने हम यहाँ पे प्ले करने वाले हैं एंड उनके कुछ डायलॉग्स जो कि फेमस डायलॉग्स हैं वो भी यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। इनफैक्ट नाना पाटेकर बहुत अच्छे शायर भी थे तो उनकी शायरी भी हम यहाँ पे प्ले करने वाले हैं आफ्टर 6 PM। सो 6 PM to 7 PM विल बी ट्रिब्यूट टू नाना पाटेकर। नाउ पावर ड्राइव एट 5 आपके लिए शुरू हो चुका है और इस आवर में थोड़ी देर में रुजबे की जो इंटरव्यू है विद द लेबर कैंडिडेट फ्रॉम तकनीनी खड़क सिंह, इनके साथ आप सुनने वाले हैं। एक्चुअली में इनसे बातें हमारी कल रात को हुई थी एंड इन्होंने इन डिटेल बहुत कुछ इन्होंने बोला है पॉलिसीज़ के बारे में। आपके काफ़ी सवाल हमारे पास यहाँ पे आए थे तो वो सारे के सारे सवाल जो है हमने समराइज़ करके इनसे पूछे हैं तो वो सारे जवाब ज़रूर यहाँ पे सुनेगा। एंड ये इंटरव्यू हेयर दिस वन सॉन्ग, इसके बाद कुछ मैसेजेस है तो वो इंटरव्यू अभी आप यहाँ पे ज़रूर सुनने वाले हैं। बट बिफोर दैट आई एम गिविंग यू चांस राइट नाउ टू पार्टिसिपेट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून। फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून दिवाली के मौके पे आप यहाँ पे 5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस जीत रहे हैं। अभी आपके पास मौका है पार्टिसिपेट करने के लिए $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड वाउचर जीतने के लिए, ग्रॉसरी $1,000 की। लगता है कि 2 महीने का आपका राशन सॉर्टेड हो जाएगा। सो आपको करना क्या है, लॉजिक, बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस गुरु कंडोला जो कि हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो आपको लॉजिक स्पेस अपना नाम लिख के भेजना है 5599 पर। आपका समय शुरू होता है अब, आपके पास 5 मिनट का समय है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। hum.rover.nz पे आपको इस कंपटीशन के टर्म्स एंड कंडीशंस मिलेंगे एंड रिमेंबर 5599 पर आप जब भी मैसेज करते हैं स्टैंडर्ड करियर रेट सप्लाई।

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
3: Hum, accurate traffic.
4: Sit back and save lives.
5: Mostly cloudy overnight, a low of 11. Busy on the northern from Esmond to Oniwa Road. Town to Silverdale, 52 minutes. To Massey, 25 minutes on the southern. Heavy south from Spaghetti Junction to Mount Wellington. Coming north from Avenue Road to just before Green Lane. Town to Manukau, 52 minutes. To Drury, 1 hour 15. Southwestern, an earlier breakdown in the Waterview Tunnel has now cleared.
6: Every blood donation could save up to 3 lives. Book now, New Zealand Blood Service.
7: My Titan Mega Henderson. Up weekdays, pe subah 6 बजे से खुला है। बिल्डिंग सप्लाईज, टिम्बर, पावर टूल्स और ट्रेड एसेंशियल्स सब कुछ साइट पे जाने से पहले ही उठा लो। गेट इन, गेट सॉर्टेड एंड गेट द जॉब डन अर्लियर। ओपन फ्रॉम 6 AM। माय टिटन मेगा हेंडरसन।
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88-600.
9: Busy day. Ah, looks like I'm on dinner tonight. With Woolworths Express Pickup, I can order what I need online and pick it up in under 60 minutes. Easy. That's my kind of Woolies.
10: T's and C's apply.
11: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November। टीज एंड सीज अप्लाई।
12: Whites separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūtaki, All Together Auckland.
13: Are you ready to go home?
14: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
15: Power Drive at 5.
16: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
17: Politicians aur unke policies.
18: Aapke sawal, unke jawab.
17: Newsland speaks only on Hum.
19: गुड इवनिंग, वेलकम टू न्यूजीलैंड स्पीक्स। एक ऐसा शो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ड्राइव शो में, जहाँ पे वी आर टॉकिंग टू द पॉलिटिशियंस। और थर्सडे को यूजुअली कन्फेशंस करते हैं हम यहाँ पे, ड्राइव थ्रू कन्फेशंस, बट पॉलिटिशियंस अब कन्फेशंस कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू नो कि क्या है पॉलिसीज के पीछे, क्या हो रहा है, क्या है सब पार्टीज़ का अपना अपना एक मानना है, क्या है वो मानना। आप तक ये इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं ताकि आपको पता चले कि जब आप वोट करने जाओगे इस टाइम तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ, और उम्मीद यही रहेगी कि आप वोट करने जाओगे. बट टुडे जॉइनिंग अस वी हैव समवन फ्रॉम द लेबर पार्टी, समवन हु इज रिप्रेजेंटिंग द लेबर पार्टी. वी हैव खड़क सिंह ओवर हियर. हाय खड़क सिंह, वेलकम टू द शो. कैसे हो आप?
10: हाँ जी, आपको और सबके सुनने वाले श्रोताओं को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल योर लिसनर्स.
19: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड टेकिंग योर टाइम आउट. वी अंडरस्टैंड कि काफ़ी बिजी टाइम है आपके लिए अभी, लॉट ऑफ कैंपेनिंग गोइंग अराउंड. कैसे चल रहा है अभी? व्हाट डू यू थिंक द वाइब इज राइट नाउ?
10: Vibe is very, very good, actually very, very positive. And I just came out from Sylvia Park with our Honorable Chris Sipkin. We did the tour for Sylvia Park. Bahut pyar mil raha hai logon ka, aur bahut, you know, yesterday's ki debate ke baad vibe aur bhi achhi ho gayi hai. Aur jo logon ka aaj positive feedback tha regarding that live debate yesterday, to wo bahut achha tha.
19: हाँ, काफ़ी कुछ लेबर के हित में गया कल के डिबेट में. काफ़ी वोटिंग में भी लेबर को मिला वोट वहाँ पे, सो डेफिनेटली अ मोरल बूस्ट.
10: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लाइक आई सेड, यू नो, अभी कैंपेन जैसे हमारे ऑनरेबल क्रिस सिटकिन जी ने बोला, लीडर ने बोला था उस दिन कि वी हैव 4.5 weeks, लॉट ऑफ कैंपेनिंग लेफ्ट एंड दिस इज द राइट टाइम टू यू नो गो हार्ड एंड चेंज दिस पोल्स टू इन अवर फेवर एज वेल, यू नो. सो दैट्स व्हाट हम सब लोग मिलके अपने अपने इलेक्ट्रेट में और जहां भी हमें पार्टी का ग्राफ ऊपर लेके जाना, तो हम सब मिलके अच्छी मेहनत कर रहे हैं.
19: दैट्स ऑसम खड़क सिंह जी. सो लेट्स गेट इनटू सम टफ क्वेश्चंस हियर एज वेल ऑन हम टुडे.
10: जी जी जी, नो प्रॉब्लम, वेलकम. आई ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन टू माय बेस्ट एबिलिटी.
19: थैंक यू सो मच. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ. सो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, इसके ऊपर काफी बातें हो रही है. हमने एक्चुअली में अलग अलग पार्टी मेंबर्स के साथ भी बात की, एंड मैं आपसे ओपन ऑनेस्ट होके बात करूंगा. मैं आपको बोलता हूँ कि सब लोगों ने जो बिल है वो लेबर के ऊपर फाड़ा कि लेबर ने बहुत ही चीज़ें ख़राब कर दी पहले सालों में, और अब वो सब उसको फिक्स कर रहे हैं. इसके ऊपर आपका क्या कहना है?
10: मेरा सबसे पहला ये कहना, वो बिल्कुल गलत आपको प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. और आपको अभी फिस्कल जो बुक्स ओपन हुई हैं उसमें आपको देखा होगा एवरीडे इंटरेस्ट इज मोर देन अवर प्रीवियस रिकॉर्ड. तो ये बात कहना गलत होगा. अब 3 साल आपकी सरकार रही हो फिर भी आप प्रीवियस गवर्नमेंट पे भांडा फोड़ रहे हो, वो ठीक बात नहीं है. यू आर द गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग डे टू डे, एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इज द नंबर वन इश्यू फॉर एवरी न्यूजीलैंडर आउट देयर.
19: So how is labor trying to like, what is labor like? I saw yesterday's debate as well, जहाँ पे Chris Hipkins ने कहा कि हाँ वो $20 limit लेकर आएंगे public transport के ऊपर, फिर और भी बहुत सारे उन्होंने schemes बताए जो वो करने वाले हैं. But don't you think that the debt of the country is going to increase if all these things take place?
10: नो नो नो नो, हमारा फिस्कल जो आपने, एवरी सिंगल डॉलर इज अकाउंटेबल फॉर अवर फिस्कल. हमने जो आपको दिया है अभी ऑनरेबल बाबरा एडमंड्स ने बुक्स में, अभी और भी जब सरकार बन जाएगी और उसके बाद भी आएंगे. जैसे आपको हमारे लीडर ने बोला $20 फेयर कैप लगाया, हमने 3GP वेजेस लगाया, फ्री प्रिस्क्रिप्शन लगाए, फ्री मेटर्निटी स्कैन दिए और फिर सर्वाइकल स्क्रीनिंग दिया, और $1,000 जो अपना अप्रेंटिस होंगे उनको हम एडवांस में टूल बॉक्स लेने के लिए, उससे जॉब एम्प्लॉयमेंट होगी, उसके बाद ट्रेडमैन आएंगे, उसके बाद जो एम्प्लॉयर होगा उसको भी सब्सिडी मिलेगी, और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी हम लोन स्कीम दे रहे हैं ताकि जो न्यू ग्रेजुएट्स होंगे वो अपने अपने सबर में नया क्लिनिक खोल सके. सो देयर आर लॉट ऑफ यू नो पॉलिसीज. आप वॉच करोगे तो हमने आपके सुपर मार्केट डुओपोली को, जो कि मोनोपोली एज यू नो कि मैं रिटेल ट्रेड में हूं, ये जान को आपको खुशी होगी, आई एम सो हैप्पी कि ये डुओपोली को हम बिल्कुल तोड़ेंगे और अपने स्मॉल बिजनेसेस को, जो वेयर हाउस, हम आपको मालूम होगा सारे हमारे स्मॉल बिजनेसेस पैक एंड सेव में शॉपिंग करते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड में एक वेयर हाउस ही नहीं है कॉस्को के बगैर, राइट. तो उस पे हम पहले वहां से रिटेल लेके आते हैं, फिर अपनी शॉप में आके मार्जिन लगा के लोगों पर चार्ज करके फिर हम अपना प्रॉफिट मार के अपनी लाइवलीहुड बनाते हैं. तो लेकिन इनको जो हमारे वेयर हाउसिंग कंपनीज हैं, जो बिग कंपनीज है, वो हमें प्राइस मैच नहीं करती, तो ये हमारे स्मॉल रिटेलर्स के लिए बहुत फायदा होगा. साथ की साथ आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात की, जैसे $20 फेयर कैप किया, रीजन्स में $10 फेयर कैप किया, और भी बहुत इतनी पॉलिसीज है उन्होंने कहा, जो अपनी इंश्योरेंस की नई कार खरीदते हो उसमें जो हिडन कॉस्ट है वो भी नहीं, उसको भी हैंडल करेंगे. यू नो देर आर लॉट ऑफ वर्क वी नीड टू डू दैट. कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इमीडिएट और प्राइस पेट्रोल में इन्होंने हमने नेक्स्ट 3 years का फ्यूल लेवी टैक्स है जो हमने वो फ्रीज कर दिया कि हम नहीं करेंगे.
19: Now, you did speak about you owning a retail business, and retail businesses हमारे काफ़ी जो सेगमेंट जो इंडियन डिसेंट के लोग हैं, फीजी से भी जो लोग हैं, काफ़ी लोग businesses ओन करते हैं, रिटेल businesses ओन करते हैं, एंड there's been a lot of stress around that. पिछले कुछ सालों में काफ़ी रिटेल businesses भी बंद हो चुके हैं, there's a lot of crime happening.
10: बट आपको जानकारी देता हूँ, 15 years हाई लिक्विडेशन हुआ इनके टर्म में, अभी बिजनेसेस 15 year हाई फिगर दे रहा हूँ लिक्विडेट हुए हैं.
19: बट
10: तो ये क्यों हुए हैं?
19: वो ये कह रहे हैं कि वो ये इसलिए हुए क्योंकि जो पहले गवर्नमेंट थी उन्होंने चीजें बिगाड़ दी थी और उसका अभी उनको इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसा उनका कहना है.
10: ये तो बिजनेस, देखो बिजनेसमैनों का लिक्विडेट होना पिछली सरकार को ब्लेम करना कोई मायने रखता ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू. जब हमने 2023 में हम छोड़ के गए तो इकोनॉमी स्टार्टेड टू पिक अप. बेसिकली इन कोविड टाइम इन टफ टाइम्स नो लिक्विडेशन हैपन, आई एम टॉकिंग अबाउट 15 इयर्स हाई. सो 15 इयर्स हाई का ब्लेम करना पिछली सरकार में ये गलत बात है, एंड दे आर नॉट टेलिंग यू द ट्रूथ, एंड बिकॉज दे हैव टेकन द कंट्री बैकवर्ड्स. हमारे टाइम में तो 5 डिजास्टर आए थे, कोविड आया, फिर अर्थक्वेक आई, गैब्रियल आया, फिर यू नो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू मैनेज. जैसे आपको मैंने 3 अपने छोटी मूवी देखते होते थे जब हम छोटे होते थे, रोटी कपड़ा और मकान और महंगाई, ये चारों तो अब चल रहे हैं. इसीलिए लेबर ने, हमारी सरकार ने वही चारों पे फोकस कर रखा है.
19: सो इन टर्म्स ऑफ रिटेल क्राइम, लेबर क्या पॉलिसीज लेकर आना चाह रहा है, क्या एक्शंस उनके रहने वाले हैं जिससे रिटेल क्राइम ना बढ़े, क्योंकि रैम रेट्स बीच में काफी बढ़ गए थे, अब जाकर कम भी हो गए हैं काफी. सो डू यू थिंक,
10: तो आपको आपको कल रात की डिबेट में क्रिस सिपकिन ने ओन किया, उस समय जब हमने 12 और 14 साल में जाते जाते अपने हमने लो लाए, यू नो 12 टू 14 इयर्स विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, वो भी एक उसके लिए जो रैम रेड हुए, दिस इज वन ऑफ द 1500 पुलिस हमने लास्ट टाइम भर्ती किए, वो भी वन ऑफ द रीजंस है. उसको टाइम लगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. यस We take that on board and we are not soft on crime. लेकिन जो क्राइम का कोज है वो है गरीबी, पॉवर्टी, हमें उसे टैकल करना होगा अगर हम हमें अपनी सोसाइटी को लेवल पे लेके आना, और वो हम लेबर पार्टी की पॉलिसीज हैं.
19: सो मैं एक और चीज पे टच करना चाहूंगा, डुओपोली के बारे में आपने बात की, एंड यू सेड दैट इज गोइंग टू हेल्प द स्मॉल बिजनेसेस, क्योंकि अब होपफुली यहाँ पे वेयर हाउसेस और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ताकि रिटेल शॉप्स को पैक एंड सेव या कोई और शॉप पे जाके बल्क में ना खरीदना पड़े. एंड
10: मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि आपको मैं क्योंकि मैं रिटेल है, मैंने फोर स्क्वायर के जब मैंने 15 ईयर फोर स्क्वायर है, नाउ आई एम इंडिपेंडेंट सुपर मार्केट ओनर, बट मेरी माई फैमिली रन इट एंड आई एम फुल टाइम पॉलिटिकिंग. बिकॉज फोर स्क्वायर के फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में ड्यूरिंग माई टाइम एग्जिट क्लोज ही नहीं था, आप छोड़ ही नहीं सकते थे.
19: अच्छा.
10: हाँ, तो बेसिकली यू कैन जस्ट एंटर एंड यू कैनॉट एग्जिट. उससे क्या था, कंपनी ये कहती थी कि आप बेच दो, वी हैव अ बायर्स लाइंड अप फॉर यू, उनकी प्राइस पे बेचना पड़ता था. तो लेकिन हमने जब इंडिपेंडेंट, जब मैं पॉलिटिक्स में गया तो मैंने इंडिपेंडेंस, मेरे को उन्होंने रिलीव कर दिया. उसके बाद सरप्राइजिंगली मैं आपको ये बताता हूँ, अभी भी मेरे को ग्रोसरी स्टोर में मेरे को फूड स्टफ सप्लाई करती है और मैं उनका बैनर ओनर नहीं हूँ. ये चेंजेस लाना बहुत जरूरी है, और आपके सारे छोटे बिजनेसमैन को ये सुन के खुशी होगी, You are allowed to have accounts with these companies now, and they will deliver with the conditions, whatever the conditions are. But groceries they will supply to your store.
19: So, ये आप बोल रहे हो, कौन सी organisation करने वाली? Sorry, I missed that part.
10: नहीं, organisation food stuff से मैं लेता हूँ अभी भी.
19: Food stuff deliver करते हैं आपको आगे?
10: हाँ, बिल्कुल करते हैं जी.
19: अच्छा.
10: 100%. मैं इसलिए कह रहा हूँ ये लोगों को जानकारी नहीं हो सकी, एंड आई एम सो सैड कि भी ये लोगों को ये पता ही नहीं है. एंड फ्रॉम लास्ट 6 years मैं उनके बैनर का ओनर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को सारी ग्रोसरी फूड स्टफ्स खुद डिलीवर करती है अपार्ट फ्रॉम देयर होम ब्रांड्स.
19: ऑलराइट, थैंक यू सो मच कड़क सिंह जी. हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे अभी और ब्रेक के बाद फिर से आपसे जुड़ेंगे, आपसे और भी बातें करेंगे. बट वी आर इन कॉन्वर्जेशन विद कड़क सिंह फ्रॉम लेबर पार्टी. और आपके कोई सवाल है तो 5599 पे जरूर भेजिए. वील सी यू सून.
20: कैंपेन ट्रेल से सीधे स्टूडियो काउच तक न्यूजीलैंड स्पीक्स विद सैंडी एंड रुस्बे.
21: Hollywood's most wanted.
22: गुड्डी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
23: मैं लाऊं अपना ए गेम.
21: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: campaign trails a C-Day studio couch tuck. Newsland Speaks with Sandy and Rusbe.
1: We are in conversation with Kadak Singh from Labour Party. Kadak Singh ji, welcome back. So, in terms of small businesses, उनकी सहायता के लिए लेबर पार्टी के और क्या ऐसे पॉलिसीज़ हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं एंड व्हाई शुड दे सपोर्ट द लेबर पार्टी?
2: हाँ जी, ये मैं सभी को, मेरे को जब मैं मीटिंग्स करता हूँ तो वो एक सिनेरियो बोलते हैं कि नेशनल लेबर और नेशनल को बिजनेसमैन माना जाता और लेबर को बिजनेसमैन नहीं माना जाता। मैं उनको ये कहता हूँ, हम लोग बिजनेसमैन बाद में आते हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉयड हार्डवर्किंग ओनर सेल्फ ऑपरेटर्स हैं, ओनर ऑपरेटर्स हैं। उससे क्या होता है कि हम अपनी मेहनत करके, काम करके इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बूस्ट करते हैं, लेकिन स्मॉल बिजनेस की आवाज पहुंचाना सरकार तक वो हमारा काम है। जैसे हमने पहुंचाया जीएसटी, पहले 60,000 तक रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था, अब 80,000 कर दिया लेबर पार्टी ने हमारी नई पॉलिसी में। 15% जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी हुए नहीं थे, वो ये अपने स्मॉल बिजनेसेस के लिए वो उसको अवेल कर सकेंगे। फिर और 10,000 का जो टैक्स क्रेडिट है वो पहले ही साल में आप ले सकोगे, $10 million से अगर का टर्नओवर आपकी नीचे है, उससे आपको कैश फ्लो जल्दी, पहले ही साल में जब बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें कैश फ्लो चाहिए होता है। तो वो हमारी पॉलिसीज ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, वो लेबर की वेबसाइट पे जाके आप और भी पढ़ सकते हो। लेकिन हमारा स्मॉल बिजनेस एज अ बीइंग अ स्मॉल बिजनेस ओनर, my job is to make sure that we give the right feedback of our community politicians and make sure those policies are drafted for the people.
1: Kadak Singh ji, mere paas ek sawal hai aapke liye, and this is something that is just coming from my personal reflection. Main kafi politicians se bhi baat ki hai during this segment aur kafi logon ne ye kaha hai ki jo debt hai हमारे ऊपर, वो डेट बहुत ज़्यादा है और वो डेट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। अब ऑन दी अदर साइड वी आर हियरिंग ऑल दीज थिंग्स कि यू नो लेबर पार्टी इज डूइंग सो मेनी थिंग्स इन द प्रपोजल टू इम्प्रूव।
2: आपको पता होगा कल की डिबेट में ऑनरेबल क्रिस सिप्किन ने बोला जो डेट है वो उससे भी ज्यादा है, पहले से भी पुराना ज्यादा हो चुका है इनकी टर्म में। तो ये अभी इतने मेरे को फिगर याद नहीं है, लेकिन उस पर एवरी डे वो भी इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं और 3 साल में। क्योंकि क्या होता है, अब हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हुआ 50,000 से ऊपर, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, 3,000 से ऊपर बिजनेसेस लिक्विडेट हो गए, 260,000 न्यूजीलैंडर छोड़ के चले गए, तो उससे क्या इकोनॉमी गिर गई। तो बेसिकली क्या है, इनको वो मैनेज ही नहीं करना, और अब पेट्रोल प्राइस एक आया $4 के करीब हो रहा है, कोई सब्सिडी नहीं दे रहे। तो मेरे कहने का मतलब है सरकार को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है, और आवर बुक्स आर एवरी सिंगल डॉलर इन द फिस्कल इज अकाउंटेड फॉर।
1: लेकिन अभी जैसे यू नो लेबर के टर्म पे कोविड आ गया था, वैसे ये टाइम पे अभी वॉर आ गया है जिसके कारण फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं, सो देयर आर आल्सो एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग दिस ना। इट्स
2: सो देयर इज ओनली वन व्हिच इज वर्ल्ड वाइड, तो कोविड वर्ल्ड वाइड में आया तो। लेकिन 2023 मैंने तो आपको पहले बोल दिया कि हमारे टाइम में 5 डिजास्टर्स आए, लेकिन 5 डिजास्टर्स में सरकार का काम होता है जान बचाना और लोगों को सेफ रखना और उनकी इकोनॉमी को ठीक रखना, और वो रखी उन्होंने। तो अब इनके 3 साल में ना तो इनसे इकोनॉमी संभाल हुई, और ये एक डिजास्टर आया वर्ल्ड का, तो उसपे $4 के करीब पेट्रोल हो रखा आज। और एवरी डे नर्सेज 54 नर्सेज हायर की फुल टाइम इक्वलेंट इन 2 years। अब बताओ 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, कॉरिडोर्स में हॉस्पिटल फुल है, GP अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही, बताओ इसको, ये किसको ब्लेम करेंगे? और हमने कहा, हमनी सरकार ने, ऑनरेबल क्रिस सिप्किन जी ने प्रॉमिस कर दिया, जितनी भी न्यूजीलैंड ग्रेजुएट होंगी हम उनको सबको जॉब डिस्प्ले देंगे। दिस इज द पॉलिसीज वी नीड टू गिव इट टू अवर पीपल एंड मेक श्योर द इकोनॉमी विल ग्रो विद इट, एंड वी मेक श्योर ऑल द सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम द पॉलिसीज गवर्नमेंट मेक्स।
1: We hear you, Kadak Singh ji, we hear you. I just want to now touch about taxation. Aapne GST already touch kiya, ki 80,000 ka proposal aaya hai. What about capital gains tax? Capital gains tax ke upar bhi ek stand hai Labour Party ka?
2: In logon ka aapne कल सुना होगा डिबेट में जब उन्होंने बोला कि और टैक्स कितने हैं स्टॉप बेसिकली एल से वर्ड से शुरू होता मैं रेडियो पे नहीं बोलना चाहता ओनली वन कैपिटल गेन टैक्स और ये इन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं नाइन मोर टैक्सेस वो मेरे को मैं डिबेट में था एक अपनी में मैंने उनको बोला एक तो हमें मालूम है आप एट अपने उनके नाम बता दीजिए उनको पता ही नहीं है हमारी पॉलिसी तो सिर्फ एक है ओनली वन कैपिटल गेन टैक्स एंड इट्स ओनली ऑन द प्रॉपर्टी स्पेकुलेटर्स एंड नाइन आउट ऑफ टेन विल नॉट बी हैव नो बेसिकली कैपिटल गेन टैक्स बिकॉज उनके पास बेचारों के पास एक एक घर भी नहीं है
1: तो ये
2: नो कैपिटल गेन टैक्स ऑन बिजनेस नो कैपिटल गेन टैक्स ऑन योर commercial property unless you sold it no nothing on this housing which you live in no farm and you know policies are already on the line basically and I main sab aapke saroton ko sabko ye kehna chahta hu aap khud jaake labor ki website pe jaake khud gyan lijiye aur khud padhiye aur inke jo mis information hai unke upar please believe mat kijiye
1: so just to get clarity on this So, for capital gains tax, ये किसको capital gains tax लगने वाला है मतलब as per your policy?
2: जो investors अब देखो capital gains tax already दे रहे हैं लोग जो company बना के developments करते हैं वो already देते हैं ये वो लोग हैं जो speculator एक घर बनाया दूसरा घर बनाया उस पर profit किया उस पर उन्होंने कोई tax नहीं दिया एवरी रिटेलर बिजनेसमैन जो है वो अपनी जो कमोडिटी बेचता है उस पर टैक्स देता है प्रॉफिट पे जो घर एक बना के दूसरा घर बना के उसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं दे रहे और उनकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो दिस इज वेयर इट इज सो बेसिकली कैपिटल गेन टैक्स उन्हीं के ऊपर लगेगा और वो भी प्रॉफिट के ऊपर ही देना आपको टैक्स राइट अगर किसी ने 100,000 प्रॉफिट बनाया तो 28% दो आप $72,000 प्रॉफिट रखो और वो हमने एक और किया उसके साथ जो अपना प्रॉफिट आएगा उसको हमने रिंग फेंस कर दिया हेल्थ सेक्टर में इन अदर वर्ड्स आपका ही पैसा हेल्थ में लग गया
1: नाइस
2: तो यू सी सो इसलिए मैं कहना चाहता हूं इतनी बढ़िया बढ़िया पॉलिसीज है मैं धर्म से और मान से कह सकता हूं आप खुद जाके पॉलिसीज पढ़िए और किसी जब आप वोट करने जाओगे फुल इन्फॉर्म्ड होके जाना और वोट उसको देना जिसको आपका हक है डेमोक्रेटिक राइट है लेकिन वोट डालने जरूर जाना क्योंकि हमारी कम्युनिटी वोट नहीं डालती इसलिए हमें कभी कभी नुकसान हो जाता है उसे और आपके इसी अभी ऑन वी आर ऑन द सेम सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू स्ट्रेस दिस पॉइंट कि भी बिफोर 25th ऑफ अक्टूबर मेक श्योर एवरीवन इज एनरोल्ड बिकॉज दे हैव चेंज द लेजिस्लेशन के पहले होता था आखिरी दिन आप रजिस्टर भी कर सकते थे और आखिरी दिन आप वोट भी कर सकते थे on the day of the voting now ab legislation change kar di inhone 25th ke baad agar aap enroll nahi hoge to aap vote nahi dal sakte to isliye main aapke sare sunne wale jitne bhi aapka channel sunte hain unko nivedan karta hu please take this as a very very important message make sure you enroll and please vote on the day to make sure that your democratic right is not taken away from you.
1: Absolutely. Thank you so much. हम भी वही उम्मीद में है कि you know हम शो भी इसलिए लेकर आ रहे ताकि हमारे जो लिसनर्स है वो जाके वोट करें इस बार खड़क सिंह जी एक फाइनल टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूँ एंड दैट इज अराउंड योर इलेक्टोरेट यू आर बैटलिंग फ्रॉम टाकानिनी दिस टाइम
2: जी जी जी जी जी
1: टाकानिनी का एक ही एक चीज जो अभी हम वेस्ट में रहते बट फिर भी हमें टाकानिनी का वो एक चीज काफी पता है वो है जो उसका वो एक बॉटलनेक हो जाता है जो ट्रैफिक जाम हो जा रहा है मोटरवे पे अराउंड दैट इज देयर एनीथिंग इन प्लान टू एड्रेस दैट इशू
2: हाँ देखो मैं एडवोकेट जरूर करूंगा मैंने आपको पहले भी बोल दिया क्योंकि आई लिव इन टाकानिनी इलेक्टेड फ्रॉम लास्ट 30 years मैंने धंधा भी यहीं किया अपना बिजनेस भी यहीं किया रहता भी मैं रीड आउट रोड पे ही हूँ लास्ट 30 years से सारा कम्युनिटी काम मैंने टाकानिनी में ही किया तो लेकिन जो ग्रोथ हुई है न्यूजीलैंड में टाकानिनी की बहुत बढ़िया स्पीड से ग्रोथ हुई है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की और सोशल सर्विसेज में कोई नहीं की और स्कूल कोई नहीं बने बेसिकली विद द स्पीड ऑफ द सेम के जितना डेवलपमेंट हाउसिंग में हुआ तो हमारी आवाज यही रहेगी जैसे मैंने बोला जितने भी प्रोजेक्ट हमारी पार्टी यही बोलती है जितने भी प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के इस सरकार ने चालू कर दिए हम उनको कैरी ऑन रखेंगे सरकार बनने के बाद जितना भी हमारा बुक्स में कुछ भी रेवेन्यू जो भी होगा फिर उस प्लानिंग को हम उस समय देखेंगे
1: ऑलराइट सो Yeah, that's quite bold statements, Karak Singh ji. And we wish you all the best. Thank you so much for joining us on Hum. It was a pleasure.
2: और आपने साथ के साथ ये भी बता देता हूँ. हमारी सरकार ने ये भी किया. हॉस्पिटल में जो रिपेयर्स हैं, हम will take that on a priority basis. स्कूल में है उसकी भी प्रायोरिटी बेसिस है और तीन चार और भी हैं. So we will be basically क्या है? Cost of living immediate relief has to be given to all the New Zealander. They are all suffering and they are the first top priority will be the cost of living.
1: Thank you so much, Karak Singh ji. We look forward to talking to you again, but all the best for the elections. Thank you for joining us on The Drive Show today.
2: Thank you, ji. Sab sroton ko dhanyawad mera sunne ka. Apni awaz pohchane parliament mein liye two tick labor aur Karak Singh for thakane nahi. Thank you, ji.
1: Thank you.
0: Politicians aur unke policies.
3: Aapke sawal, unke jawab.
0: Newsline speaks only on Hum.
4: Chatbusters.
5: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manukau, Mount Wellington, and Westgate. Up to 60% off on now.

0: तेरे साथ तो उन्होंने गाया भी था.
1: Shirley Setia Unfiltered. Catch the full conversation
2: on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: Accurate traffic.
4: Simplicity's lowered KiwiSaver fees again.
5: Mostly cloudy overnight with a low of 11 on the northern heavy from Northcote Road to Oniwa on the northwestern town to Massey. 23 minutes on the southern heavy heading south from Spaghetti Junction to Luke Street. North from Highbrook Drive to Green Lane. Town to Manukau 46 minutes. Drury 1 hour 8. Southwestern slow southbound through Waterview Tunnel and heavy in both directions through Mangere Bridge to Puhunui Road.
4: Keep more of your money with Simplicity, the low fee non-profit KiwiSaver provider.
6: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudema Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12, half price. Under 5s, free. Book now at sudemahotels.com/food festival.
7: Don't sleep on Briscoe's one-day sale on now with huge one-day 60% off deals plus huge one-day store-wide savings. Stores open late. Briscoe's one-day sale today only. See online for TCs and store hours.
8: It's Woolworths Health and Body Sale. Get in quick for half price on Asano products and 1 litre Palmolive body wash or 700ml shampoo or conditioner, just $6.89 each. TCs and exclusions apply. Only at Woolworths.
9: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Get there in Apex world-class comfort with Fiji Airways, where the luxuries start from the moment you book. Get fast-track security, extra baggage and priority check-in. Once you're there, enjoy even more time to relax with resort check-in. Complete your flight check-in from various Fiji resorts with your luggage transported securely to the airport. Travel in style with one of the world's top 10 airlines. Visit fijiairways.com.
10: It's All Go at Weber Store. The four-day spring sale is on. We're Auckland's only Weber Store, a world-class barbecue store unlike anything previously seen in New Zealand, where we exclusively showcase the complete Weber barbecue range with over 50 models on display. Gas to electric, wood pellet to charcoal, we've got the lot. New models, new colours, new capabilities and features with great savings to be had. Get summer ready with our big spring sale, Weber Store, 86 Lun Ave, Mount Wellington.
11: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका. लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई.
12: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
13: 546 एट द मोमेंट हो चुके हैं. इलेक्शन स्पेशल आप सुन रहे थे एंड इसमें जो आपने सवाल भेजे थे वही सवाल एक्चुअली में आज हमने यहाँ पे पूछे हैं. टोटली पब्लिक के क्वेश्चंस एक्चुअली में आज पूछे गए हैं. सो हमने परसों से अनाउंस किया था कि जो बातें हैं इनके साथ होने वाली है लेबर के कैंडिडेट खड़क सिंह के साथ, एंड आपने जो सवाल पूछे एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस थे. एंड आई नो टाइम लिमिटेड होता है, हमारे पास आज भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे, बट जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग ऑफ द आवर में इन्फॉर्म किया था, ये इंटरव्यू हमने लास्ट नाइट को रिकॉर्ड की है आपके पहले भेजे हुए सवालों के साथ. तो ऑब्वियसली जो आज के क्वेश्चंस आए हैं ये तो उनसे हम अभी रिकॉर्डेड में नहीं पूछ सकते थे, बट ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में अगर कोई और लेबर का कैंडिडेट यहाँ पे आता है तो ये सवाल हम ज़रूर सेव करके रखेंगे. बट अगर आपने मिस आउट किया है, ड्राइव लेके भेजिए 5599 पर, यू विल हेयर द होल इंटरव्यू. इससे पहले हमने एक्ट के लीडर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेविड सेमर के साथ इंटरव्यू किया है, उनसे सवाल पूछे हैं. एंड देन वी हैड इन आवर स्टूडियो नेशनल पार्टी के कैंपेन मैनेजर नवतेज रंधावा, तो उनसे भी हमने नेशनल के पॉलिसीज़ के बारे में जो आपके सवाल थे वो उनसे पूछे थे. एंड देन बिजनेसेस को क्या चाहिए और बिजनेसेस इस वोटिंग में इस इलेक्शंस के टाइम पे क्या देख रहे हैं, इसके बारे में हमने सनी कौशल से भी बातें की हैं. एंड आज हमने बात की लेबर के कैंडिडेट जो कि ताकरेनी से है, खड़क सिंह के साथ. तो ये सारी इंटरव्यूज़ आपको ऑनलाइन भी मिलेगी, रोवा पे भी है. अगर आप रोवा पे जाते हैं जो सर्च ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुज़बे, तो वहाँ पर ये सारी की सारी इंटरव्यूज़ आपको मिल जाएगी. अगर आपकी कोई भी इंटरव्यू मिस आउट हुई है तो वहाँ पर जाके आप ज़रूर सुन सकते हैं. और आज 6 बजे के बाद एक बहुत ही स्पेशल शो रहने वाला है, बिकॉज टुडे आज ही हमें खबर मिली अबाउट नाना पाटेकर दैट ही पास्ड अवे. एंड नाना पाटेकर जो कि हमेशा से अनकन्वेंशनल करेक्टर्स निभाते आए हैं, सुपर्ब एक्टर रहे हैं, 5 decades इन्होंने काम किया है इंडियन सिनेमा में, जहाँ पे मेजर काम हिंदी एंड मराठी सिनेमा में इन्होंने किया है. तो आज नाना पाटेकर के लिए ट्रिब्यूट रहेगी. वेल, इनके मूवीज़ के गाने आर नॉट द सिग्नेचर सॉन्ग्स, लेकिन इनके डायलॉग ज़रूर हम यहाँ पे प्ले करने वाले हैं. गाने तो रहेंगे इनकी मूवीज़ के, लेकिन डायलॉग एंड शायरी ऑफ नाना पाटेकर ये भी आप एक्चुअली में 6 बजे के बाद आज सुनने वाले हैं.
12: Let's go.
2: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: सिंपली गए मुलाकात हो गई आपसे. हम थ्रोबैक
1: ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना. इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.

0: Not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
1: Really? What if I miss it?
0: Well, your vote won't count for this year's election.
1: Achcha! You've convinced me. I'll enroll tonight.
2: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
3: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
4: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
3: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
5: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
6: Time check.
7: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800 000010.
6: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
8: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. Christchurch police acknowledge the search for 21-year-old Braden Hepworth has ended in a devastating outcome. They found a body believed to be his at a residential property on Hereford Street this morning. A number of people are being talked to and a post-mortem will take place tomorrow. A spokesperson says there is a small comfort in being able to bring Braden home. A list of locations of interest has been posted amid a measles case in Wellington. Places the person had visited include Salvation Army Upper Hutt and Canine Solutions Nai Nai in Lower Hutt. Transporting New Zealand wants to see more infrastructure for low and zero emission trucks. It has issued a roadmap for an emissions-free road freight sector by 2050. Spokesperson James McDevitt says they need help achieving their goal.
9: We need stronger roads and bridges. We need fit-for-purpose vehicle rules. We need more investment in heavy vehicle charging and refueling infrastructure.
8: PD Mart, previously known as Panda Mart, is accused of selling 57 non-compliant products, including children's toys and baby walkers. The Commerce Commission is taking it to court, alleging multiple failures since October 2024. It also claims the retailer misrepresented the ability for customers to make returns under the Consumer Guarantees Act. To sport, embracing the history as part of the All Blacks preparation for the Bledisloe Cup clash on Saturday. The Wallabies haven't beaten the All Blacks at Eden Park since 1986. And to motorsport with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty, the second Supercars Bathurst 1000 practice session is underway in ideal conditions. Earlier, Richie Stanaway was the quickest of the Kiwis in fourth place.
6: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
10: Are you ready to go home?
11: The Drive Show with Sandy and Rusbain. Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group. The home of GWN Havel and Omura Jaiku.
10: Let's go! Three, two, one.
6: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
12: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
13: छः बज के दो मिनट हो चुके हैं. ट्रेंड मेकर्स आपके लिए शुरू हो चुका है और ट्रेंड मेकर्स में आज हम ट्रिब्यूट देने वाले हैं नाना पाटेकर को. नाना पाटेकर की जो आज हमें न्यूज़ मिली है दैट ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 75. यू नो, नाना पाटेकर के बारे में जब हम बात करते हैं तो खैर इनके बारे में इंट्रोडक्शन देने की तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है. एंड लेकिन बहुत सारे इनके डायलॉग्स जो है मुझे लगता है खुद इनके इंट्रोडक्शन बन गए. फिल्म मेकर्स के लिए होता था कि अच्छा स्क्रिप्ट ये है, इसमें ये डायलॉग्स है, तो ये तो नाना पाटेकर ही इसको अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं. तो शुरुआत ही करते हैं एक्चुअली में वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायलॉग के साथ ऑफ नाना पाटेकर, जो कि बहुत लोगों ने बहुत कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार यूज किया है.
14: ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता. साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला.
13: ऐसी डायलॉग डिलीवरी हमेशा नाना पाटेकर की रही है. नाना पाटेकर के बारे में मैं पढ़ रही थी एंड यू नो नाना पाटेकर, उन्होंने बॉलीवुड में हीरो क्या होते हैं इसको उन्होंने रीडिफाइन किया. इस वर्ड को उन्होंने रीडिफाइन किया कि एक ट्रेडिशनल रोमांटिक लीड ही सिर्फ हीरो नहीं हो सकते हैं या फिर एक टिपिकल एक्शन हीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज नाना पाटेकर अपने मूवीज़ में, जिस मूवीज़ में वो हीरो थे, वो रॉ थे, इंटेंस थे, अनप्रडिक्टेबल थे एंड बहुत ही रियल थे। अग्निसाक्षी मूवी, क्रांतिवीर मूवी, गुलाम मुस्तफ़ा, द लिस्ट इज़ ऑन एंड ऑन ऑफ नाना पाटेकर मूवीज़, या फिर उनको हमने कॉमेडी में वेलकम सीरीज़ में देखा। सो एक आर्टिस्ट, एक जीनियस एंड एक्चुअली में एक अनफिल्टर्ड इंडिविजुअल, बिकॉज अपने इंटरव्यूज़ में हर जगह पे वो अनफिल्टर्ड रहे हैं। लेकिन ये कभी मूवीज़ के बाद, ये कभी जब इन्होंने बीच में रिटायरमेंट ली, तो ये कभी भी मुंबई में नहीं रहे। और इसके बारे में इनकी एक वार्तालाप हुई थी अमिताभ बच्चन के साथ, जो मैं आपको ये सुनाती हूँ।
15: इतनी ख्याति प्राप्त करने के बाद सब कुछ छोड़ करके आप गांव क्यों चले गए?
16: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं यहाँ कभी आप पार्टी में मैं कभी गया नहीं, मुझे वहाँ वो रस नहीं आता, वो मतलब है नहीं। मैं गाँव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूँगा और वही अच्छा लगता है।
15: हमको बड़ा आश्चर्य, क्या कहेंगे साहब, बहुत गर्व होता है सब देख करके। अब ढो रहे हैं चीजें,
16: जितना हमने चाहा ना उसे कई गुना मिल गया। अम्मी जी
15: बहुत
16: जरूरतें सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता, ऐसी है नहीं। अब बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना घर में, हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़, इस तरफ बीच में हम रहते हैं, कितने आसान है, बहुत अच्छी।
13: सो या ये गांव में हमेशा रहे हैं, शूटिंग करके गांव में चले जाना वापस, और घर पे एसी नहीं रखा, और अपने गांव में इन्होंने नॉर्मल जैसे बाकी लोग काम करते हैं, जैसे किसान भी काम करते हैं, वैसे ही इन्होंने अपनी लाइफ में काम भी किया है। वेल, इनके बारे में और भी बातें यहाँ पे करेंगे एंड यस, इनके कुछ डायलॉग्स और प्ले करेंगे। नाना पाटेकर का पूरा नाम क्या है अगर किसी को पता है तो यहाँ पे लिख के भेजिए। What is the full name of Nana Patekar? इनका पूरा नाम क्या है अगर किसी को पता है? Let's see कितने लोगों को ये पता है। 5599 is a number जहाँ पे लिख के आप भेज सकते हैं। फिलहाल इन्हीं की एक मूवी का ये गाना हम सुनने वाले हैं। वेलकम सीरीज में कमाल की कॉमेडी यार इन्होंने की, मतलब वो डायलॉग्स जो इनके थे ना, वो मूवी से एपिक बन गए। तो उसी मूवी का है ये गाना आपके लिए।

0: 6:11 हो चुके हैं। ट्रेंड मेकर्स में आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं नाना पाटेकर को। वेल, नाना पाटेकर अपनी लाइफ में इन्होंने काफ़ी अवार्ड्स भी एक्चुअली में जीते हैं। सो थिएटर से हिंदी एंड देन मराठी सिनेमा, ये इनका एक्चुअली में ट्रांजिशन रहा है। और हर सिनेमा में इन्होंने एक स्क्रीन परसोना जो है ये खुद का ही क्रिएट किया। ही डेब्यू इनका हुआ था गमन मूवी में 1978 में, और उसके बाद इनकी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस रही है बहुत सारी मूवीज़ में, लाइक अंकुश, देन परिंदा मूवी वॉज द वन जिसके लिए इनको अवार्ड भी मिला, देन क्रांतिवीर ऑफ कोर्स, तिरंगा मूवी वॉज अनदर वन, अग्नि साक्षी, अब तक 56 मूवी, अब हरन मूवी, टैक्सी नंबर 9211 एंड वेलकम, ये सारी की सारी मूवीज़ एंड मैनी मोर। एक्चुअली में इनकी जो परफॉर्मेंस थी परिंदा में, उससे इनको पहला नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। लेकिन जो क्रांतिवीर मूवी थी, इस मूवी के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला था। सो जो मूवीज़ इन्होंने की थी, मल्टीपल वैसे फिल्म फेयर ऑनर्स भी इनको दिए गए थे, पद्मश्री अवार्ड इनको मिला वैसे 2013 में। लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंसेस थी, हमेशा ऐसा नहीं था कि अवार्ड मिलेगा तो ही इनको रिकॉग्निशन होगी। लोग वैसे ही इनके परफॉर्मेंसेस को काफ़ी पसंद करते थे, जैसे उदय शेट्टी का रोल इन वेलकम मूवी। सो यू नो, उदय शेट्टी को गुस्सा क्यों आता है, जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, एक शॉर्ट टेम्पर्ड गैंगस्टर का रोल जिस वजह से उन्होंने उस मूवी में किया था। बट यू नो, इनको ही वॉज ऑल्सो फिल्म मेकर। प्रहार मूवी जिसमें इन्होंने एक्टिंग भी की है, प्रहार द फाइनल अटैक इन 1991, ये मूवी इन्होंने बनाई थी। मैंने ये मूवी देखी है और मुझे बहुत पसंद है ये मूवी। इसमें आई थिंक माधुरी दीक्षित है इस मूवी में, मुझे दूसरे एक्टर का नाम याद नहीं है। बट प्रहार में नाना पाटेकर इज़ द वन जो मिलिट्री ट्रेनिंग देता है न्यू जो ऑफिसर्स बनने वाले होते हैं। एंड फॉर दिस मूवी नाना पाटेकर अंडरवेंट मिलिट्री ट्रेनिंग। उन्होंने एक टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन किया था फॉर दिस मूवी, बिकॉज उनको था कि भाई अगर मूवी में मुझे ये दिखाना है कि मैं मिलिट्री ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मुझे खुद भी उस चीज़ के थ्रू जाना ही पड़ेगा। एंड ही वॉज कन्फर्ड द ऑनरी रैंक ऑफ कैप्टन एंड सर्व्ड ब्रीफली ड्यूरिंग द कारगिल वॉर कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। सो दिस इज़ वन ऑफ द लेसर नोन फैक्ट फॉर मैनी पीपल। वो स्किल्ड राइफल शूटर भी रहे हैं। ही वॉज अ प्रोफेशनल ग्रेट मार्कमैनशिप शूटर एंड इन्होंने नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट भी किया है। स्केच आर्टिस्ट भी रहे हैं वैसे नाना पाटेकर। बियॉन्ड एक्टिंग ही वॉज ट्रेंड कमर्शियल आर्टिस्ट एंड इन्होंने स्केचिंग अक्सर ये इन्जॉय किया करते थे। सो नाना पाटेकर की बात करते हैं एंड डायलॉग्स आपके लिए ना प्ले करे ऐसा तो हो नहीं सकता है। एंड तो इसी बात पे सुनते हैं एक्चुअली में एक और डायलॉग नाना पाटेकर का। एंड ये जो डायलॉग है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी लोगों ने इस डायलॉग को रटा था, बहुत समय तक इस डायलॉग को उन्होंने रटा था। सो या सुनते हैं ये, नाउ यू विल नो व्हाट इज। और आप बताइए इस मूवी का नाम क्या है, ये जो डायलॉग मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ इस मूवी का नाम क्या है ये आपको बताना है। और इससे पहले मैंने पूछा था कि नाना पाटेकर का पूरा नाम क्या है, विश्वनाथ पाटेकर इज़ एक्चुअली हिज फुल नेम। सो बताइए ये जो डायलॉग अभी मैं प्ले करने वाली हूँ ये किस मूवी का है।
1: शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए
0: ओके एक मिनट
1: और
0: या मुझे लगती है इस डायलॉग में ना हंसी बहुत है नाना पाटेकर की।
2: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े रेंगते रहो सटते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म, तो जिए मालूम नहीं तो मरे मालूम नहीं। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को, सब साले मुर्दे जिंदा लाशे किसे जगाती वो, मैं जाग गया कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है, लेकिन ध्यान में रखना तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले वर्दी वाले नेता इन्होंने अपना ईमान बेच दिया, एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहां गया था भाड़ में।
0: सो एपिक डायलॉग ये रहा है, और ये किस मूवी का डायलॉग है अगर आपको पता है तो लिख के भेजिए, 5599 इज अ नंबर। एंड अभी जो गाना आप सुनने वाले हैं ये भी बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ रोल था इनका, टैक्सी नंबर 9211। इस मूवी में इन्होंने ना एक सार्केस्टिक एंगरी स्ट्रीट स्मार्ट एक ऐसा रोल इन्होंने किया था जहाँ पे वो कैब चलाते हैं लेकिन अपने घर में नहीं बताना चाहते कि वो कैब चलाते हैं। तो बहुत कुछ होता है इस मूवी में, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, जॉन अब्राहम भी है इस मूवी में। सो या ओवर द वीकेंड या कभी भी आपको टाइम मिले मूवी को ज़रूर देखिएगा।

0: ट्रेंड मेकर्स
1: डिस्कवर द मैजिक एट गो बनानास चाइल्ड केयर, जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे विद मल्टीपल ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड हैमिल्टन. ये हमेशा आपके पास है. गो बनानास चाइल्ड केयर 12th बर्थडे ऑफर, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी ज्वाइन करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
2: 3, 2, 1, rush!
3: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
4: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Swimming pool heat pumps under $2,000. Outdoor four-piece resin lounge set just $299. Outdoor gazebos just $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
1: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है. अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है. एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं. कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
5: इंडिया आ रहा है ऑकलैंड एंड द ब्लू टाइगर्स नीड योर वॉइस बिहाइंड देम. देखिए इंडिया को ऑल व्हाइट्स के अगेंस्ट गो मीडिया स्टेडियम थर्सडे 12 नवंबर को. एक रेयर चांस अपनी नेशनल टीम को न्यूजीलैंड की जमीन पर लाइव देखने का. ब्रिंग द फैमिली, वेयर योर कलर्स एंड फिल द स्टेडियम विद प्राइड. अडल्ट टिकट सिर्फ $20 से शुरू, किड्स $10 से, प्लस बुकिंग फीस. बुक नाउ एट टिकटेक एंड बी देयर फॉर अ हिस्टोरिक नाइट.
0: द बीट ऑफ बॉलीवुड.
6: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
5: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
7: ट्रेंड मेकर्स आज आप यहाँ पे सुन रहे हैं और ट्रेंड मेकर्स में आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं नाना पाटेकर को. नाना पाटेकर ही पास्ड अवे टुडे एट द एज ऑफ 75. एक ऐसे अनकन्वेंशनल एक्टर ये है, लेकिन इनका जो काम है ये सिनेमा से बाहर भी था. सोशल कॉजेज़ के लिए भी ये हमेशा से आगे रहे. 2015 में एक टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ में आया था जब ये डीपली मूव्ड हुए थे, जो कि फार्मर सुसाइड्स हो रहे थे महाराष्ट्र में. एंड इसलिए स्पेशली वहाँ पे कुछ एरियाज़ में जो कि ड्रॉट अफेक्टेड रीजन्स थे, तो वहाँ पे जब ये सुसाइड वगैरह हुए उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मूव्ड हो गए थे. देन ही एस्टैब्लिश्ड नाम फाउंडेशन. नाम फाउंडेशन इन्होंने एक और मराठी एक्टर मकरंद के साथ इन्होंने बनाई और इसमें ही यूज़ टू प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल एड टू थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज ऑफ फार्मर्स जिन्होंने सुसाइड कमिट किया था. ही इनिशिएटेड लार्ज स्केल रिवर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स एज वेल एंड डैम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को चेक करना. ही डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत सारी जो कपड़े सिलाई वाली जो मशीन्स होती है, स्विंग मशीन्स एंड टूल्स टू एम्पावर द विडोज एंड सस्टेनेबल इनकम्स एज वेल. तो ये काम उन्होंने 2015 से ही करना शुरू कर दिया था. बट नॉट जस्ट दैट, ही वॉज लिविंग अमंग द पीपल. सो रैदर देन सेंडिंग मनी दूर से, ही वुड पर्सनली विजिट उन विलेजेस को, उन फैमिलीज के साथ बैठ के ग्राउंड एफर्ट ये हमेशा किया करते थे. सो नाना पाटेकर ने हमेशा ऐसा मीडिया में जाके ये नहीं बोला कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मेरी फ़ोटो लो, मैं यहाँ बैठा हूँ. इट वॉज जस्ट अ पब्लिक आउट देयर जो समय पर ये सब कुछ देख रहे थे. नाना पाटेकर के बारे में बात करते हैं तो उनका एक और साइड भी था. सोशल कॉजेज़ के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, बट उनका एक रोमांटिक साइड भी था. एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनके ऊपर उनको हमेशा से एक क्रश रहा है. तो और उनके उन्होंने एक शायरी बोली थी एक शो में, तो ये मैं आपको सुनाती हूँ।
8: माधुरी के लिए मैं एक तरफा माधुरी से प्यार करता हूँ, जाहिर है उसकी तरफ से तो नहीं हो सकता था इस शक्ल मैं एक्टर हूँ उसमें डायरेक्टर हूँ नाटक का, और वो सोचता है कि माधुरी है वहाँ, और वो सोचते हुए वो कहता है, माधुरी के लिए कहा था तो आज तक भुलाने में कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम, तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम, जाऊं कहीं देखूं कहीं तुम हो वहां, तुम हो वहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं।
7: इतना ही नहीं, 3.5 मिनट की ये शायरी इन्होंने लिखी थी माधुरी दीक्षित के लिए। वेल, एक तरफा प्यार इनका रह गया माधुरी दीक्षित के लिए। बट कमिंग बैक टू मूवीज जो इन्होंने की, जो अभी आप गाना सुनने वाले हैं, दिस वॉज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंट रोल जो नाना पाटेकर ने किया, जहाँ पे डेफ एंड म्यूट का रोल इन्होंने किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट खामोशी द म्यूजिकल। एंड इससे पहले जो मैंने सवाल पूछा था, जो डायलॉग आपके लिए प्ले किया था, येस, क्रांतिवीर इज अ राइट आंसर। फाल्गुनी हिम्मत, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, एंड बरखा नॉर्थ शोर से सुन रही है, नितिका थैंक यू आपके मैसेज के लिए भी। सो या खामोशी मूवी के बारे में बात करते हैं, तो ही प्लेड जोसेफ का रोल जो उन्होंने प्ले किया, द फादर ऑफ एनी, मनीषा कोइराला के फादर का रोल। यार, साइन लैंग्वेज में पूरी मूवी में इन्होंने जो एक्टिंग की है, जो कम्युनिकेट किया है, अगर मुझे साइन लैंग्वेज समझ में भी नहीं आती है, अच्छे से हम उस एक्टिंग को समझे हैं, इतनी ब्यूटीफुल वे से इन्होंने उस मूवी में एक्टिंग की, जहाँ पे एक लविंग बट बहुत ही प्रोटेक्टिव फादर का रोल इन्होंने किया। सो नाना पाटेकर का ये एक अनकन्वेंशनल रोल ही था। सो ही वॉज नॉट अ ग्लैमरस करेक्टर, इट वॉज नॉट अ ग्लैमरस करेक्टर, लेकिन एक यू नो, एक ऐसे फादर का रोल किया जो अपनी बेटी के लिए अच्छा ही चाहते हैं। एंड उनके जो बीच में डायलॉग डिलीवरी इतनी, मतलब म्यूट होके भी इतनी लाउड थी कि एक्सप्रेशंस उनके एक्सप्रेशंस के थ्रू उनके जो इमोशंस है वो समझ में आ रहे थे, उस करेक्टर के इमोशंस हमें समझ में आ रहे थे। सो या इसी मूवी का सुनते हैं ये गाना।

0: ट्रेंड मेकर्स में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नाना पाटेकर को. नाना पाटेकर जिनके बारे में आज न्यूज़ आई दैट ही पास्ड अवे. डायलॉग्स इनके जब हम प्ले कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये एपिक डायलॉग के बिना तो ये आवर अधूरा है.
1: एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है. साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है. सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो और सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ. क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है. साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है.
0: यशवंत इनकी मूवी आई थी 1996 में, इसी मूवी का ये डायलॉग था. सो नाना पाटेकर डिफरेंट थे अपनी स्क्रीन पे. उनका एंगर जो था वो ऐसा नहीं लगता था कि मैन्युफैक्चर्ड है, यू नो, जैसे ये जब ये डायलॉग्स बोलते थे. हिज साइलेंसेस आल्सो कैरिड द वेट. उनकी डायलॉग डिलीवरी एक ऑर्डिनरी लाइन को हमेशा मेमोरेबल मोमेंट बना देती थी. इनके बारे में और भी बातें करेंगे, फिलहाल इन्हीं की मूवी वेलकम बैक से ये गाना सुनते हैं.

0: The Drive Show with Sandy and Rusbay, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku. Hum, accurate traffic.
1: New tasty rise bars and bites in supermarkets.
2: Mostly cloudy overnight, a low of 11. On the northern, it's heavy from Northcote Road to the Harbour Bridge. Town to Silverdale, 31 minutes to Massey, 16. On the southern, heavy traffic heading north from Highbrook Drive to just before Green Lane. Town to Manukau, 27 minutes, Drury, 42. Southwestern is quite heavy, heading north through Mangere Bridge. Town to the airport, taking 24 minutes.
1: New tasty rise, low-carb protein bars and bites. Less carbs, better snacking. Do 8 Sudokus. Save 3 people's lives. Count the holes in a ceiling tile, or just count the edges and then multiply it. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products. Watch a round of darts. Take a small nap.
3: These are some of the things you can achieve in one blood or plasma donation at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
4: It's my turn on dinner and my flatmates have only ever seen me make toast. Burnt toast. But I look like I know what I'm doing with Wilbur's sweet chilli butterfly chicken. Even though I don't. That's my kind of Woolies.
5: Don't sleep on Briscoe's one-day sale on now with huge one-day 60% off deals plus huge one-day store-wide savings. Stores open late. Briscoe's one-day sale today only. See online for TCs and store hours.
6: The Cooperative Bank's home loan crew are in the house. Check it. Got that home dream, but don't know where to start? Little Kiwi Saver and lots of listings bookmarked. LIMS, LVRs, what does it all mean? Been checking out listings since 2019. Deposit, pre-approval. How much can I borrow? Let's make a plan today for your tomorrow. Talk to the Cooperative Bank's home loan crew. From first questions to front door keys, we got you. T's and C's apply.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, jahan aapke bachche seekhenge in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ye hamesha aapke paas hai. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. To jaldi join karo aur enjoy karo special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
8: When you've got roads, rain and traffic, you get potholes.
9: Oh man, potholes are the worst.
8: Yes, we know. That's why we have the Auckland Council Pothole Promise.
9: Huh, how does it work?
8: Well, someone alerts us to a pothole via the website. Then our crews head out, spot the pothole, catch it and release it somewhere where it won't be a nuisance.
9: Really?
8: No. We fill them with an approved asphalt premix, usually within 24 hours. It's how we keep the city moving. Search Pothole Promise. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
0: Are you ready to go home? The Drive Show with Sandy and Rusbay, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
10: Let's go! 3, 2, 1.
11: Trend Makers.
12: Trend Makers में आज हम tribute दे रहे हैं नाना पाटेकर को. नाना पाटेकर, who passed away today at the age of 75, एक ऐसे एक्टर जिन्होंने 5 सदियां काम किया है इंडियन सिनेमा में, हिंदी एंड मराठी मूवीज़ में. इनके एक इंटरव्यू सुन रही थी जहां पे इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ रियलाइजेशन के बारे में बातें की थी विद आमिर खान. थोड़ा सा बेटा आपको सुनाती हूँ मैं.
13: बहुत इम्पोर्टेंट है वो तुझ में आया. हम क्या सॉरी बोलने में डरते हैं? हिचकिचाहट होती है हमें. सॉरी कैसे बोले? हम इतने बड़े हैं यार, सॉरी कैसे बोले? तो वो सॉरी जो तेरे मन में जो आया वो तूने बोल दिया ना, वो जिंदगी बहुत आसान बना देती है. तुझे अभी मालूम है, जब ही तू बोल रहा था मैंने कहा तू कन्फेशन कर रहा है. मैं बीच में कुछ बोलना ही नहीं चाहता था, मैं सिर्फ तुझे देख रहा था कि तुझे अपने आप को टटोलने का जो एक वक्त मिला कोरोना के वक्त क्या है. हम वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो शेर गालिब साहब का कि जिंदगी भर आईना साफ करते रहे, धूल तो चेहरे पे थी.
12: सो ये इंटरव्यू 1 साल पहले इन्होंने की थी आमिर खान के साथ, जो कि बहुत ही कमाल की इंटरव्यू है. कभी सर्च करो तो इसको ज़रूर सुनिएगा. यू नो, नाना पाटेकर जो है, बहुत ही स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्शन थी इनकी अपनी खुद की लाइफ के ऊपर. इन्होंने रिसेंटली ये भी बोला है कि हमारी ज़िंदगी उधार की है, कि हमारी लाइफ किसी और को बिलोंग करती है, बिकॉज़ ये मूवीज़ के थ्रू ही कई बार करेक्टर्स के ज़रिए ही लोगों के बीच में जीते हैं. ही स्पोक अबाउट नेवर रियली फाइंडिंग द टाइम टू लिव हिज ओन लाइफ जब तक ये मूवीज़ में बिजी रहे थे. फॉर एन एक्टर, उन्होंने बोला कि एक करेक्टर जो है रिप्लेस कर देता है किसी और करेक्टर को, वाइल ये सब चीज़ें एडिक्शन भी बन जाती है. एंड ही सेड दैट व्हेन दैट अप्लॉज स्टॉप, जब वो ताड़ियाँ बंद हो जाती है, लेकिन द एक्टर इज़ नो लॉन्गर कास्ट या रिमेम्बर्ड इन द सेम वे, विच इज़ क्वाइट सैड, राइट. वेल, नाना पाटेकर, इन्होंने अपनी लाइफ में लोगों की हेल्प भी की. वो सिर्फ ऐसा हीरो ही नहीं रहे मूवीज़ में, लेकिन रियल हीरो बन के भी लोगों की लाइफ में पहुँचे. उनकी लाइफ का सुधार भी करने की उन्होंने कोशिश की. एक ऐसे अनकन्वेंशनल हीरो जो आज स्क्रीन को फाइनली आज अलविदा कह गए, बट उनकी आवाज़ हमेशा हमारे साथ रहेगी, उनकी मूवीज़ हमेशा हमारे साथ रहेगी, जिनको हम सेलिब्रेट करते रहेंगे. वेलुरी की मूवी है अग्नि साक्षी, जिसका गाना आप यहाँ पे अभी सुनने वाले हैं. इसी नोट पे मैं आपको कहती हूँ टाटा बाय बाय. अब आपसे मेरी मुलाकात होगी कल कॉफ़ी ब्रेक में 3 बजे, देन ड्राइव शो में विद रुज़बे. बाय.

0: पट मत लपट झपट जल हट बाजू हट नट खट हट जा। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू,
1: कभी 101 कभी 102,
0: उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू,
1: कभी 101 कभी 102।

0: Happy Hour on Hum.
1: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
3: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
4: I was 11 when I was put into an induced coma and airlifted to Starship. I have a rare lung condition, and my family gathered to say their goodbyes. But instead,
5: I woke up. The people at Starship saved my life, and now I have two beautiful kids of my own. Looking back, seeing how far I've come, I think little me would be so proud.
6: Mercury, helping Starship turn little into big for 25 years.
7: Now there's a better way to a new phone with Spark Upgrader. Combine our huge phone deals with great trade-in savings, plus look out for exclusive offers just for you. See what you could save on a new phone at spark.co.nz/upgrader. Available interest-free, credit criteria and terms apply.
8: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardo's is asking Aotearoa to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
9: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo. Or avocado, $2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.

स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: scaled back. The 1,400-hectare perimeter of the Walter Peak fire is now fully contained. The fire ground is being handed back to the landowners to manage, and flare-ups will be monitored. Transporting NZ has set out its roadmap to a net zero road freight sector by 2050. It's calling on the next government to help make the transition commercially viable. To sport now and day one of the Bathurst 1000, two practice sessions. Youngsters Kai Allen and Lockie Dalton were able to top the timesheets in the two sessions, and those sessions were hampered by complaints over the Bathurst track surface. Motorsport with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty. And New Zealand Rugby has taken legal action against NRL expansion side Papua New Guinea Chiefs over the use of the name Chiefs.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
3: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
4: A very good evening, everyone. Welcome to the show. मैं क्रिश आ गया हूँ आपके साथ देने के लिए. आज थर्सडे है. थर्सडे नाइट तो होता है बहुत ही रोमांटिक सा ये वाइब और एटमोसफियर हमारे हम एयरवेव्स पर. तो आज 8 अक्टूबर है. जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, स्वागत है आपका. और ऐसे ही आपका साथ हम देंगे ऑल द वे टिल मिड नाइट. 8 to midnight आपके लिए रहेगा रिदम एंड रोमेंस.
2: जस्ट बात की नरमी, मोहब्बत के राज.
1: Whispers of इश्क.
4: Yes, of course, everyone. Rhythm and Romance में स्वागत है आपका. मैं क्रिश रोमांटिक गानों को लेकर आ गया हूँ. प्यारे प्यारे गाने आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे. आज तो काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर भी करना है, कॉम्पिटिशन्स भी लेकर आना है, क्योंकि फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून जो हमारा बहुत ही बड़ा हाईलाइट है वो भी आपके लिए हम शामिल करेंगे. तो रोवा पर बातें होंगी, हम पॉडकास्ट पर भी हम बातें करेंगे और प्यारे प्यारे रोमांटिक सॉन्ग्स आपको सुनाते रहेंगे. क्रिश का साथ है और वेलकम एवरीवन. मिडनाइट तक आपको हमारा साथ देना है.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Festival of Fortune. Win your share of $5,000 worth of prizes with hum. This Diwali, 30th October, ko draw hone ja raha hai. To abhi ek aur competition aapke liye shuru karenge hum, taki aap jeet sake $1,000 worth of fuel voucher. One winner ko milega $1,000 of fuel voucher. Imagine kijiye, ye bahut hi shandar inaam jeetne ka mauka hai. You'll have $1,000 worth of fuel voucher to yourself. IH text kare apne naam ke saath 5599 par. Abhi aapke paas mauka hai. IH letter I aur letter H text kare apne naam ke saath 5599 par to be in the draw to win Indelible Homes, your building experts. Ye proudly aap तक लेकर आ रहे हैं ये प्राइज indelibleHomes.co.nz आप विजिट कर सकते हैं और भी जानकारी के लिए. तो याद रहे IH के साथ अपना नाम 5599 पर ड्रो में शामिल होकर $1,000 worth of fuel voucher जीतने का मौका है और ये किसी एक विजेता को मिलेगा, लकी विजेता को मिलेगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं.

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Glad I got my enrollment sorted the other day.
2: See, bhai, I told you it was easy.
3: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
2: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
3: Really? What if I miss it?
2: Well, your vote won't count for this year's election.
3: Achha, you've convinced me. I'll enroll tonight.
4: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
5: Hum. Night Cafe on Hum. You're listening to Krish.
7: Let's go.
8: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, एक एक करके आपके फेवरेट सॉन्ग्स भी हम लेकर आते रहेंगे। लेकिन अभी बातें हो रही है फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून, जबकि ड्रो 30th अक्टूबर को होने को है। बहुत टाइम नहीं रह गया है, अनदर 3 वीक्स टू गो। तो जितना हो सके उतना आप अपना लक आजमाएं। विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस। आपको बस भेजना है IH अपने नाम के साथ 5599 पर, लेटर I और लेटर H अपने नाम के साथ 5599 पर, टू विन $1,000 ऑफ फ्यूल वाउचर। एक विनर को मिलेगा, किसी एक लकी विजेता को मिलने जा रहा है $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर, थैंक्स टू इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स। विजिट करें www.indelibalehomes.co.nz। टर्म्स एंड कंडीशंस hum.rowa.nz पर आपको मिलेगा। यहां पर आप जाकर टर्म्स एंड कंडीशंस भी एक्सेस कर पाएंगे। मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hu. Election special jari hai, to aise mein unfiltered drive sunna na bhule. Podcast mein alag alag mundo par baatein hoti hai aur jabki election special jari hai, to aise mein Sunny Kaushal se baatein hongi, Sandy aur Rizbain se baatein karenge, jisme discussion hoga about the pressures facing Kiwi businesses from rising crime, repeat offenders to immigration, workforce shortages or cost of doing business. Aur ye share karenge what he believes the next government should prioritize, chahe whether politicians are truly listening to small businesses or kya wo ek sawal hai jo every business owner ko कैंडिडेट से पूछने चाहिए बिफोर कास्टिंग देयर वोट. याद रहे शनि कौशल से बातें होंगी. ये चेयरमैन है एंड सीईओ है इंडिया न्यूजीलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चेयरमैन है एथनिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलायंस मिनिस्ट्री ऑफ एथनिक कम्युनिटीज, चेयरमैन है डेयरी एंड बिजनेस ओनर्स ग्रुप और साथ में फॉर्मर चेयरमैन है मिनिस्टेरियल एडवाइजरी ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड फ्रॉम 2024 टू 2026. ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर फुल एपिसोड आपको मिल जाएगा. मैं कृष आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम।
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून, इसके बारे में तो आपने सुना होगा। विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली विद हम। दिवाली बहुत ही करीब है, तो ऐसे में बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका हमारे साथ होगा। ड्रॉ होगा 30 अक्टूबर को। तो पहला, अगर आप जीतना चाहते हैं $1,000 कैश, एक विनर को मिलेगा $1,000 कैश। फॉर्चून विद होल ग्रेन्स, एसेंशियल विटामिंस, फॉर्चून फ्यूल्स, एवरी विन बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्चून। तो ये लक आपका हो सकता है अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे। यू हैव टू बी इन इट टू विन इट। तो कीवर्ड फॉर्चून टेक्स्ट करें FORTUNE विद योर नेम और 5599 पर भेज दे टू बी इन द ड्रॉ टू विन $1,000 कैश, जीतने का मौका रहेगा। तो अभी आपके लिए मैं टाइम शुरू कर रहा हूँ। आप हमारे पास फॉर्चून लिखे अपने नाम के साथ और 5599 पर भेज दे। याद रहे कुछ और भी प्राइजेस जीतने को है, इस पर भी जानकारी बहुत ही जल्दी मैं लेकर आऊँगा। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हे चैट जीपीटी दिवाली आने वाली है ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए
3: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ
2: बढ़िया है अच्छा ग्रोसरीज लेना है पूरे घर की पेंटिंग करवानी है नया सोफा लेना है इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए और हाँ कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए
3: इंटरेस्टिंग और कुछ
2: बस इतना ही
3: सर मैं चैट जीपीटी हूँ अंबानी नहीं हमसे ना हो पाएगा
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 एफएम और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स फ्यूल वाउचर्स होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स हैरिंगटन लिविंग मनोको ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
4: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
5: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
6: Do 8 Sudokus. Save 3 people's lives. Count the holes in a ceiling tile. Or just count the edges and then multiply it. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products. Watch a round of darts. Take a small nap.
7: These are some of the things you can achieve in one blood or plasma donation at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
8: पूरे शहर पे कब्जा होगा राज होगा
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
8: हम
0: नाइट कैफे ऑन हम
9: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है कुछ समय पहले मैंने आपसे पूछा था फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून के दौरान कि आप फॉर्च्यून टेक्स्ट करें 5599 पर अपने नाम के साथ और आप ड्रो में शामिल होकर $1,000 कैश जीत पाएंगे एक ही विनर को मिलेगा $1,000 कैश तो अभी भी आपके पास समय है यू नो काइंड रिमाइंडर कि अभी भी आप इसमें भाग ले सकते हैं कुछ ही देर तक और हम ये कॉम्पिटिशन ओपन रखेंगे आपके लिए कीवर्ड फॉर्च्यून के साथ अपना नाम लिखे और 5599 पर भेज दे याद रहे फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून विन योर शेयर of $5,000 worth of prizes this Diwali with hum aur terms and conditions rova.nz par aapko mil jayega main krish aapke saath de raha hu sunte raho hum

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You are listening to number one, Hum, playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और प्यारे गानों के साथ साथ इंटरेस्टिंग खबरें. वैसे रोवा पर भी आप हम म्यूजिक स्टेशंस का मजा ले पाएंगे. हम रिवाइंड में आपको मिलेगा बॉलीवुड्स गोल्डन ईरा 60s और 70s के हिट्स. 80s जुक बॉक्स में आपको मिलेंगे 80s ईरा ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स. और फीजी भजन में आप वर्ल्ड्स फर्स्ट 24/7 फ्री फीजी भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर पाएंगे, जिसमें भजन फ्रॉम फीजीज बेस्ट आर्टिस्ट एनी टाइम एनी वे आपको मिलेगा. चढ़ती कला पंजाबी हिट्स, बैक टू बैक पंजाबी हिट्स ओनली ऑन रोवा. फिजी कीर्तन संग्रह, बिगर चॉइस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट अब हम फिजी कीर्तन संग्रह में आपको मिलेगा. ये भी हमारा एक हम म्यूजिक स्टेशन है ऑन रोवा. यहाँ पर न्यू पूल ऑफ कीर्तन को एड कर दिया गया है जो आप इंजॉय कर पाएंगे. राहत फतेह अली खान के गाने, लव ऑफ सूफी और कवालीज अगर है आपका तो फिर आप चेकआउट करें म्यूजिक स्टेशन ऑफ राहत फतेह अली खान. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one, Hum, playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. इलेक्शन स्पेशल जारी है तो ऐसे में अनफिल्टर्ड ड्राइव सुनना ना भूले. पॉडकास्ट में अलग अलग मुद्दों पर बातें होती है और जबकि इलेक्शन स्पेशल जारी है तो ऐसे में सनी कौशल से बातें होंगी. सैंडी और रिजबेन से बातें करेंगे जिसमें डिस्कशन होगा अबाउट द प्रेशर्स फेसिंग कीवी बिजनेसेस फ्रॉम राइजिंग क्राइम रिपीट ऑफेंडर्स टू इमिग्रेशन वर्कफोर्स शॉर्टेजेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. और ये शेयर करेंगे व्हाट ही बिलीव्स द नेक्स्ट गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज, चाहे वेदर पॉलिटिशियंस आर ट्रूली लिसनिंग टू स्मॉल बिजनेसेस, और क्या वो एक सवाल है जो एवरी बिजनेस ओनर को कैंडिडेट से पूछने चाहिए बिफोर कास्टिंग देयर वोट. याद रहे सनी कौशल से बातें होंगी. ये चेयरमैन है एंड सीईओ है इंडिया न्यूजीलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चेयरमैन है एथनिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलायंस मिनिस्ट्री ऑफ एथनिक कम्युनिटीज, चेयरमैन है डेयरी एंड बिजनेस ओनर्स ग्रुप और साथ में फॉर्मर चेयरमैन है मिनिस्टेरियल एडवाइजरी ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड फ्रॉम 2024 टू 2026. ड्राइव टेक्स करें 5599 पर फुल एपिसोड आपको मिल जाएगा. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: disco ho ya rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
2: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke nazdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
3: The beat of Bollywood.
4: World's best, hamari koi branch nahi hai.
3: Night Cafe.
5: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ नाइट कैफे में. वैसे इलेक्शन स्पेशल पर पॉडकास्ट तो आपके लिए जारी है रिज़बी और सैंडी के साथ में, लेकिन अनफिल्टर्ड ड्राइव में आप शिर्ली सेतिया को भी सुन पाएंगे. कैंडिड और रिवीलिंग कन्वर्सेशन ये करेंगी विद सैंडी और रिज़बी. Shirley opens up about her journey from New Zealand to India, the realities of navigating the entertainment industry as an outsider, aur kya challenges ka samna inko karna pada with trying to find her place in an industry jahan par connections or expectations or perceptions can play a huge role. Ye log baatein karenge about the good, the bad and the brutal honest side of the industry, from the pressures of being an artist to dealing with public opinion to the struggles of being an outsider. और किस तरह से अपना करियर आपको बनाना होगा अपने ओन टर्म्स पर. तो इसके लिए आप अनफिल्टर्ड विद शिर्ली सेतिया ना भूले. 5599 पर टेक्स्ट करें ड्राइव. फुल एपिसोड का लिंक आपको मिल जाएगा. मैं

0: ka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं। अगर आज आपका जन्मदिन है वेरी हैप्पी बर्थडे एवरीवन जिनका आज जन्मदिन है एंड दोज हु आर सेलिब्रेटिंग आई एम श्योर आज बहुत कुछ घर पर किया गया है या फिर वीकेंड के लिए भी आपने प्लानिंग बनाकर रखा है तो फिर टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश एवरीवन अ हैप्पी बर्थडे जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं। अगर आप आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड हो या फिर आउटसाइड ऑफ ओकलैंड हो आप हमें रोवर के जरिए सुन रहे हैं तो बिग शाउट आउट टू ऑल आवर रोवर लिसनर्स क्योंकि आपको हम हमेशा याद करते हैं। आप हमसे दूर होकर भी हमें अपने बहुत ही करीब रखते हैं थ्रू रोवर। तो आपके लिए अगला गाना सुनते रहो हम मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: Welcome back everyone, you're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. एक एक करके आपके फेवरेट सॉन्ग्स तो मैं लेकर आता रहूंगा. जितने भी हमारे नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, अगर आप हमें सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो स्वागत है आपका. नेक्स्ट जो 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक का सेगमेंट है, ये खासतौर पर आपको डेडिकेट कर रहे हैं. ट्रक ड्राइवर्स, ऊबर ड्राइवर्स, साथ में फैक्ट्री ऑपरेटर्स, मशीन ऑपरेटर्स, मुझे पता है कि हम की गूंज आपके आसपास होती है और ऐसे ही एंटरटेन्ड होकर आप काम करते हैं और आपका कंपनी हमें मिलता है और हमारा आपको. थैंक यू सो मच. इस घंटे पर आप से बातें करेंगे अबाउट फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून, जो कि बहुत ही धमाकेदार फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून जो इनाम देने का सिलसिला है आपके लिए. तो इसमें बस भाग लेने के लिए आप तैयार रहे, क्योंकि वो भी बारी बारी से आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, जिसमें बहुत ही ईजिली आप ड्रो में अपने नामों को शामिल कर पाएंगे. वेलकम बैक टू द शो एवरी वन. 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक अभी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ.

0: Cafe on Hum.
1: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
4: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800 634-234. TCs and lending criteria apply.
5: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
6: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
7: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
6: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
7: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
6: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
7: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।

0: Cafe on Hum.
1: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है। कुछ समय पहले मैंने आपसे पूछा था फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून के दौरान कि आप फॉर्चून टेक्स्ट करें 5599 पर अपने नाम के साथ और आप ड्रॉ में शामिल होकर $1000 कैश जीत पाएंगे। एक ही विनर को मिलेगा $1000 कैश। तो अभी भी आपके पास समय है, यू नो काइंड रिमाइंडर कि अभी भी आप इसमें भाग ले सकते हैं। कुछ ही देर तक और हम ये कॉम्पिटिशन ओपन रखेंगे आपके लिए। कीवर्ड फॉर्चून के साथ अपना नाम लिखें और 5599 पर भेज दें। याद रहे फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून विन योर of $5,000 worth of prizes this Diwali with Hum aur terms and conditions rova.nz par aapko mil jayega. Main Krish aapke saath de raha hu, sunte raho Hum.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम।
1: नाइट कैफे यहीं पर खत्म होता है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। अब हमारी मुलाकात होती है एक बार फिर नेक्स्ट मंडे को, आ जाएंगे नाइट कैफे मंडे टू थर्सडे लेकर आएंगे और साथ में मिलकर हम लोग एंजॉय करेंगे अपना ये टाइम जो कि मंडे टू थर्सडे होता है। अपना बहुत ही ख्याल रखे, हैव अ वंडरफुल फ्राइडे, हैव अ वंडरफुल वीकेंड, और मंडे को मुलाकात होती है। क्रिश का बहुत सारा प्यार, गुड नाइट एवरीवन।

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया
2: अभी. अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.

0: drop the bait.
1: दिन तो ले का कंगना मुंह दिखाई दे दे फिर तू

0: you get your podcast.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
3: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
4: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
3: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
4: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
3: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
4: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।

0: Night Flight on Hum.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: भीड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: हम द बीट ऑफ बॉलीवुड,
2: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी गुड ब्रांच भी है।
1: नाइट फ्लाई।

0: मेरे साथ तो उन्होंने गाया भी था.
1: Shirley Setia Unfiltered. Catch the full conversation
2: on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
4: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
3: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
4: इंटरेस्टिंग. और कुछ?
3: बस इतना ही.
4: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा.
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश. फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
5: MediaWorks Complaints. How can I help?
6: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
5: Nice.
6: And you talked me into creating this funny character.
5: Great.
6: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
5: Are you?
6: Yes.
5: Are you Bobby the Baker?
6: Yes.
5: What's that thing you do again?
6: Stop it.
5: You bring the mouth.
6: Stop it.
5: I'll bring the pie.
6: Stop it, please.
5: Okay.
6: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
5: So what's the problem?
6: My name's Bruce.
7: Advertise with
8: MediaWorks.
7: New Zealand listens to us. We'll be right back.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
0: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
0: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
2: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
3: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
4: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
5: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
6: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
5: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
7: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800 4 NZPMI।
8: The beat of Bollywood.
9: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
8: Nightfly.

0: ये हाथत बॉम्ब सोड़ा आड़े रॉकेट गए फुल जड़ी से तूने भरे ले पॉकेट अरे बार अब बन मेरे जैसा बन ये ले नाना का बॉम्ब जाके उड़ा दे घर
1: Bhai phu, phugadi phu, you like me and I like you too. Oh bhai phu, phugadi phu, you like me and I like you too. You like

0: Night Flight on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट लीगल एसोसिएट्स डॉट को डॉट इन सेट.
0: Night Flight.

कोई शिकवा ना करेंगे ना आजमाएंगे, तुम जहां पाव रखोगे ये दिल बिछाएंगे, हम तुम्हारी वफा की दुनिया में प्यार ही

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जैसे की क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
3: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
4: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
5: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
6: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
7: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
8: The big sale is on now at Beds R Us with amazing deals on selected sleepyhead beds like 60% off Swiss Tech Precision Queen Size now 3499. The big sale at Beds R Us Manikau and Pukekohe, where dreams begin.
9: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
10: Yes, Bebo.
9: Catch kya hai?
10: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
9: I still can't believe it. No catch.
10: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland.
11: PNC Supply.
12: The beat of Bollywood.
13: World's best. Hamari good brands nahi hai. Wow. Night.

0: उन्होंने गाया भी था.
1: Shirley Setia, Unfiltered. Catch the full conversation
2: on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
3: Driving you home.
4: Drive Show with Sandy and Rusby.
5: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
6: ये गलत बोल दिया यार.
5: और पहनता भी नहीं है उसको.
6: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
5: इंटरेस्ट
7: ब्रांड हो गया अभी वो.
6: अभी ब्रांड हो गया ना.
5: रुजबे के बाल लगे उस.
4: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
5: रुजबे 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है.
8: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलीडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक.
5: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में.
8: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलीडे पैकेज. बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज.
5: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज.
8: बुक नाउ विद सन टूर्स.
5: कॉल करें 0800 478686.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Monaco.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
3: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
2: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
4: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
5: दिवाली आई, खुशियाँ लाई, BFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है। अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं, BFSL के साथ होम लोन करवाएं, $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं। 50 इंच टीवी के लकी ड्रो में भी एंट्री पाएं। तो इस दिवाली खुशियाँ बढ़ाएं, BFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं। सर्च BFSL और कॉल 9984699934। टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई।
6: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
7: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
8: यस बेबो।
7: कैच क्या है?
8: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स, साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ।
7: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
8: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर, ईस्ट ऑकलैंड, PNC सप्लाई।
9: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाएं, खुशियाँ खिलाएं।
10: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
11: Hum, time check.
12: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
13: Good morning, is it theek se baj rahe hain?
11: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
14: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Some bad news for the Opportunity Party. The latest taxpayer Curia poll has them just below the 5% threshold required for Parliament. National and Labor were both on 28%, the Greens 13%, New Zealand First 12%, ACT 9% and Te Pāti Māori 1.4%. That would see the coalition government comfortably return to power. A win for water safety advocates as new life jacket rules kick in. From today, they are mandatory on vessels up to 6 metres. Maritime NZ's Matt Wood says it will save lives.
15: You are two-thirds more likely to survive an incident on the water if you're wearing a life jacket. And then once you're in the water, you know, a life jacket buys you time, you need to be able to call for help.
14: The government wants to crack down on dogs being shut away in crates and kennels for extremely long periods. Associate Agriculture Minister Andrew Hoggard has opened it up for consultation as they don't want to unintentionally punish good owners.
16: Either putting the dog in the kennel when you go to sleep at night or heading out during the day, putting the dog in the kennel then, so long as you're letting it out, giving it good exercise and activity, this shouldn't affect you.
14: Oil prices have jumped after a spate of attacks on tankers in the Strait of Hormuz. Brent crude is up more than 5% for the day to just under $106 a barrel. To sport, the Eden Park record looms large on the eve of the opening Bledisloe Cup test. The All Blacks are unbeaten in their last 53 tests, dating back to 1994 there. The stakes are high for centre Quinn Tupaia.
17: It's obviously a lot of pressure on the group, but it's also a privilege. We love to play at Eden Park.
14: And champion harness racing trainer Mark Purden has been left with fractures in his hip and pelvis after being kicked by a horse in Canterbury yesterday.
11: Sports News, brought to you by

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज के मौसम के लिए कहा गया है मेनली फाइन वेदर रहेगा. लिटिल बिट ऑफ क्लाउड जो है लेट मॉर्निंग और आफ्टरनून में जरूर आज हम एक्सपीरियंस करेंगे, अदरवाइज ऑल गुड. इसी घंटे होगा सनराइज 6:45 AM पर, सनसेट 7:33 PM पर. टेम्परेचर राइट नाउ 11.8 डिग्रीज, ओवरनाइट 13 डिग्रीज आज रहने वाला है.
0: फर्स्ट कैच अप द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.

0: एक्साइटमेंट का होता है, खुशियों का होता है, बट नॉट सो मच फॉर द किड्स मे बी.
1: क्यों?
0: स्कूली छुट्टियां खत्म हो रही है ना.
1: अरे वो तो है ही अलग.
0: परविंदर
1: for the kids and Parvinder, वो अलग बात ही है actually में that it feels like जैसे जैसे छुट्टियाँ खत्म होती है तो होता है, दुख होता है. And on the other hand, I guess me as a parent, I feel the same, but don't know about other parents. मेरे को भी बड़ा बुरा लगता है. I start thinking like क्या यार वापस से school, you know the kids have so much to do. ये पढ़ाई बनाई किसने?
0: Yeah, but the good thing is, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं who look forward to going back to school, meeting with friends, spending time with teachers, and school का environment भी एकदम अलग ही होता है. तो जो भी है, आइए आज का ये दिन आपके लिए बहुत ही खुशनुमा रहे, बहुत ही अच्छा रहे, इसी शुभकामना के साथ इस सफ़र को अब हम शुरू कर रहे हैं.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
2: Hey, ChatGPT. दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
3: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
2: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
3: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
2: बस इतना ही।
3: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
4: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
5: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
6: Weber barbecue sales almost never happen, so don't miss this one. Join us at Auckland's only Weber store for our massive birthday sale this weekend. Get hands-on with the complete 2026 range, the new Weber Spirits, the upgraded Genesis range, and every colour of New Zealand's favourite barbecue, the Weber Q. The grills are blazing, the savings are real. See you at Weber store, 86 Lun Ave, Mount Wellington. Sale finishes Monday.
7: Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
8: Yes, Bebo.
7: Catch kya hai?
8: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi, selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
7: I still can't believe it. No catch.
8: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds. Botany Town Center, East Auckland.
9: PNC Supply.
10: Playing Bollywood's biggest hits.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco. Global Headlines.
11: सुबह के मुख्य समाचारों में, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि 3 नवंबर को होने वाले यूएस मिड टर्म इलेक्शन से पहले ईरान पर कोई अटैक नहीं किया जाएगा। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने बताया कि तेहरान के साथ प्रोडक्टिव बातचीत चल रही है और उनका मेन गोल ईरान को न्यूक्लियर वेपन लेने से रोकना है। ये स्टेटमेंट उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आए हैं जिनमें इलेक्शन से पहले ईरान पर पोटेंशियल नए स्ट्राइक्स की प्लानिंग का दावा किया गया था। भारत में दिल्ली सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट ने प्रिवेलिंग सिचुएशन और दिल्ली पुलिस के इनपुट्स का हवाला देते हुए फ्राइडे और सैटरडे यानी आज और कल सभी लिकर शॉप्स बंद रखने का आदेश दिया है। चीफ इलेक्शंस कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर होने वाले प्रोटेस्ट को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आज और कल कंप्लीट शटडाउन रहेगा। पहले की तरह शॉप टाइमिंग्स कम करने के बजाय इस बार दो दिनों के लिए रिटेल लिकर शॉप्स को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश दिया गया है। फिजी में तीन पुलिस ऑफिसर्स सिमियोने रोको सेमुंदु, युवाने सुकनई सोरो और इलिसोनी वांग को अपने ही कोलीग 24 या ओल्ड कांस्टेबल पेनियासी रदांगी के मेडा के चार्जेस में अरेस्ट किया गया है। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस ने फॉरेंसिक ओवरसीज फॉरेंसिक रिजल्ट्स और इन्वेस्टिगेशन फाइल के री असेसमेंट के बाद तीनों ऑफिसर्स पर ज्वाइंट मेडा चार्जेस लगाए हैं। फरवरी में हुए एक झगड़े और मौत के केस में तीनों अक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर्स को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुबह के HFC बैंक स्टेडियम में पुल मैचेस खत्म होने के बाद 86th FMF IDC के सेमीफाइनल्स कन्फर्म हो गए हैं। सुपर प्रीमियर डिवीजन के सेमीफाइनल्स में डिफेंडिंग चैंपियंस रेवा नावुआ का सामना करेगा, जबकि मबा और लंबासा के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। प्रीमियर डिवीजन में सेंगांगा वेसेस तावुआ और फिजी अंडर 17 वेसेस किरिबास होगा, जबकि सीनियर डिवीजन में ड्रेकेती वेसेस तावियोनी और नंदोंगो वेसेस मबुआ सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे। सभी सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे और जो विनर्स होंगे वो अगले रविवार यानी 11 अक्टूबर सभी सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे और इनके विनर्स जो हैं फाइनल्स में अपनी जगह बनाएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: Bollywood's most wanted.
9: Gundi ghad dao ya seedha andar aao.
12: Main laau apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: जस मानक की आवाज में आपके लिए लेकर आ रहे थे आज का हमारा ये पहला चार्ट बस्टर. व्हेन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग रिलीज्ड, काफी पॉपुलर हुआ था ये. और अगर आपको हम एग्जैक्ट टाइम बताएं तो ये गाना जो है ये इनफैक्ट रिलीज हुआ था इन द ईयर 2019. और 2019 में जब ये आया तो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इस गाने को मिली कि आज भी जब इस गाने को सुनते हैं तो वी एंजॉय इट एंड रिमेंबर द मोमेंट इट गॉट रिलीज्ड. नाउ टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स, आपके लिए तो काफ़ी अपडेट्स हम लेकर आते रहते हैं, बट बॉलीवुड से जुड़ी जो खबरें हैं ये भी आपके नाम हम शामिल करते हैं. लेकिन कल से अगर देखा जाए तो बस एक ही खबर जो है ये सामने आ रही है. बहुत से लोग अपनी अपनी जो श्रद्धांजलि है ये तो अर्पित कर ही रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड पीपल आर रिमेम्बरिंग द मोमेंट्स दे हैड जब उनकी मुलाकात हुई थी नाना दादा नाना पाटेकर के साथ.
1: जी यू नो ही वाज एन अमेजिंग एक्टर जो हमेशा लोगों के दिलों में बसे रहेंगे. और जो खबरें अभी आ रही हैं उसमें ये भी कहा गया है कहीं ना कहीं कि उनकी मृत्यु से कुछ घंटों पहले उन्होंने अपने एक दोस्त को टेक्स्ट किया था और ये कहा था कि दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल.
0: या एंड ये इन्फॉर्मेशन जो है हर जगह सर्कुलेट हो रही है दैट ही हैड टेक्स्टेड अर्ली आवर्स इन द मॉर्निंग सेइंग कि इनकी तबीयत सही नहीं है. और अराउंड 4 इन द मॉर्निंग आई थिंक उनको उनके घर के अंदर जो ये पाया गया इन गोवा, जहाँ पर ही वॉज फाउंड अनकॉन्शियस. और करीबन 45 मिनट्स जो है ये उनको रिवाइव करने की कोशिश की गई, बट अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट वर्क. तो उनका जो दोस्त है जिनके बारे में कहा गया है कि जब उनके पास ये मैसेज आया था कि उनको उनकी तबीयत सही नहीं है, तो वो उनके घर गए जहाँ पर उन्होंने उनको काफ़ी सीरियस हाल में जो है ये पाया था. और उनके जो केयर टेकर है उनको कॉन्टेक्ट किया गया, एम्बुलेंस बुलाया गया, लेकिन ही वॉज़ अनरेस्पॉन्सिव. ही वॉज़ टेकन टू मणिपाल हॉस्पिटल इन गोवा, जहाँ उनकी मृत्यु जो है ये बताई गई अप्रॉक्सीमेटली 5:20 इन द मॉर्निंग जो है ये हुई है. एंड ये वजह बताई गई है कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मृत्यु जो है ये हुई है. और ऑफकोर्स उसके बाद चलकर इनके अंतिम संस्कार की भी तैयारियाँ जो है ये की गई, जहाँ पर ये भी कहा गया है कि इनकी जो अंतिम संस्कार है ये इनफैक्ट गोवा से इनको पुणे ले जाया गया, जहाँ पर उनका जो अंतिम संस्कार है ये किया गया.
1: ओके. और नाना पाटेकर जो है हिस्टोरिकल रहे हैं इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स. यू नो बॉलीवुड पर हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि वो बाहर की फिल्मों को अंग्रेजी फिल्मों की कॉपियां जो है ये बनाती है, उसकी नकल करती है. नाना पाटेकर एक ऐसे एक्टर थे जिनकी फिल्म को हॉलीवुड ने कॉपी किया था.
0: ओह रियली, व्हिच मूवी वाज दैट?
1: इनको पॉपुलैरिटी जो है 1980s में ही मिल गई थी. 1989 में हम में से बहुत सारे लोगों को याद होगा फिल्म परिंदा.
0: जी,
1: इस फिल्म का गाने जो है ये बहुत ही पॉपुलर हुए थे. और इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म्स जिसको एज अ टेम्पलेट यूज किया गया डिपेक्टिंग द अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स रियलिस्टिकली. फिल्म में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ ने भाइयों का रोल किया था. वो लिव एंड वर्क अंडर अन्ना, नाना पाटेकर ने इस रोल को निभाया था उस फिल्म में एक डॉन का. द फिल्म विच ऑल्सो स्टार्ड माधुरी दीक्षित, ये कॉमर्शियली एक सक्सेस थी. म्यूजिक बहुत पॉपुलर हुआ था, यू नो गाने जो है बहुत पॉपुलर हुए थे. और 1998 में परिंदा फिल्म जो है इसको तमिल में बनाया गया था. But the surprise remake was announced in 2012 जब विधु विनोद चोपड़ा ने कहा कि he was set to adapt the film for American audiences with a Hollywood cast. अभिजात जोशी जो है इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा था ब्रोकन हॉर्सेस के लिए. एंटोन येलचिन और क्रिस मार्केट जो है ये दो लीड थे, अलोंग विद विंसेंट डी ऑनोफ्रियो. जो रोल इन्होंने निभाया था वो नाना पाटेकर का किरदार था.
0: वेरी इंटरेस्टिंग, हु वुड हैव थॉट ना.
1: यस,
0: तो एक रिमार्केबल एक्टर, अनफॉर्चुनेटली नो लॉन्गर विद अस इन दिस वर्ल्ड, लेकिन इनके काम की वजह से और इनकी अमेजिंग जो पर्सनैलिटी है इसकी वजह से लोग हमेशा इनको ज़रूर याद रखेंगे. आज सुबह सुबह हम जानकारी जो है कि आपके लिए हम लेकर आ रहे थे. और ऑफकोर्स कुछ और भी बातें अगर जो सामने आती है इस मामले में तो आपके साथ हम शेयर करते हुए चलेंगे. फिलहाल 30 मिनट हो रहे हैं 6:00, थोड़ी देर बाद आज यानी 9th October के बारे में भी आपसे बातें हम करेंगे.
2: Show with Vijay and Pooja.
3: Hey, dekho maa gaye.
2: Hum ek
3: accurate traffic.
4: New tasty rise bars and bites in supermarkets.
5: A little cloud, should be mostly fine all day today. A high of 21 degrees into the city at the moment. Northern motorway are mostly clear drive-in. Still just 16 minutes in from Constellation Drive to the city. Northwestern, 17 in from Massey. Starting to build a little bit, but still quick. Southern, little slow patch at Manurewa. That's about all. 20 minutes Manukau to the city. Fine on the southwestern. Public transport A-OK.
4: New tasty rise low-carb protein bars and bites. Less carbs, better snacking.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer. 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz
10: Glad I got my enrollment sorted the other day.
11: See, bhai, I told you it was easy.
12: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
11: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
12: Really? What if I miss it?
11: Well, your vote won't count for this year's election.
12: Achcha, you've convinced me. I'll enroll tonight.
13: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
14: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
2: Breakfast Catch Up.
0: तो चलिए इस प्रॉमिस्ड अभी आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ यू नो इंटरेस्टिंग अपडेट्स व्हेन इट कम्स टू 9th of October क्या कुछ आज मार्क किया जा रहा है ये आपके साथ हम शेयर करेंगे लेकिन बिफोर वी डू दैट गुड मॉर्निंग के मैसेजेस जो है ये आपके हमारे पास आए हैं तो आपको याद कर लेते हैं सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू राज ड्राइविंग फॉर आरवी प्रकाश ट्रांसपोर्ट आपने हमारे पास सुबह सुबह अपना मॉर्निंग मैसेज भेजा है थैंक यू सो मच राम राम हैप्पी फ्राइडे एवरीवन हैव अ गुड डे मिस्टर माटा माटा ने मैसेज किया है और साथ में मैंडी ने कहा है गुड मॉर्निंग गाइज हैव अ वंडरफुल फ्राइडे और इनके अलावा आज एक और एक मैसेज जो है ये हमारे पास आया है इट्स फ्रॉम बिनीता जी गुड मॉर्निंग हैप्पी फ्राइडे हैव अ ग्रेट वीकेंड इन्होंने कहा है एंड ऑफ कोर्स नॉट फॉरगेटिंग बॉबी वान जी जिन्होंने आज अपना जो मैसेज है ये हिंदी में लिखकर भेजा है हमारे पास
1: हाँ.
0: इन्होंने लिखा है नमस्ते पूजा और विजय आपका शुक्रवार शुभ हो और साप्तांत का आनंद ले माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे जय माता दी थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके भी इस मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: तो अभी वक्त है देखें आज क्या कुछ मार्क किया जा रहा है आज का दिन जो है ये कैसा गुजरने वाला है इन सभी चीज़ों के बारे में बातें जो है ये भी हम बारी बारी से इस प्रोग्राम में करते रहते हैं टुडे द 9th of October जो है इट्स वर्ल्ड पोस्ट डे
0: पोस्ट डे इज इन
1: जो आपके पोस्टमैन होते हैं मेलमैन होते हैं इट्स डे टू से थैंक यू टू देम
0: ओके
1: इसके अलावा आज क्यूरियस इवेंट्स डे है और साथ में टुडे इज वर्ल्ड एग डे
0: ओह
1: यस ये सारी चीज़ें आज मार्क की जा रही हैं और इसके अलावा आज अगर देखें तो सयानी गुप्ता एक्ट्रेस जो है ये आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं आज ही के दिन जन्म हुआ था निजामुद्दीन औलिया का इन द ईयर 1238
0: ओह तो इनके बारे में आज हम बातें कर रहे हैं क्योंकि
1: क्योंकि निजामुद्दीन औलिया जो है इनको एक बहुत बड़ा सूफी संत माना जाता था. मोस्ट ऑफ हिज लाइफ जो है इन्होंने दिल्ली के आसपास गुजारा और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं कि ही वॉज द स्पिरिचुअल गाइड टू अमीर खुसरो. Yes.
0: Now that makes sense.
1: निजामुद्दीन औलिया, आज के दिन इनका भी जन्म हुआ था. तो ये 9th of October की कुछ चीज़ें जो हैं. अभी वीकेंड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं. कल देखें तो कल फिजी का इंडिपेंडेंस डे जो है ये भी मार्क किया जाएगा.
0: Yep, and a lot of people will definitely be celebrating it. तो आप भी अगर इसका हिस्सा बनने वाले हैं, आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. ज़रूर सेलिब्रेट कीजिएगा इस दिन को. लेकिन साथ ही साथ इधर हमने आपसे आज का जो हमारा पहला सवाल ये भी करना है. आज जो मूवी ऑफ द डे आपको गेस करनी है, इट्स अ मूवी जो कि हम नाना पाटेकर जी जो है उनकी मूवी के बारे में बातें करने वाले हैं. और एक तो ऑफ कोर्स क्लू खैर आपके हाथ लग ही गया कि कौन है इस फिल्म में. पर जिस तरह से सवाल पूछना है वो ही ये कि आपको हमें एक ऐसी फिल्म का नाम बताना है जिसमें इन्होंने किसी भी लीड एक्ट्रेस के पिता का रोल किया हो और उसी लीड एक्ट्रेस के साथ शायद किसी और फिल्म में इन्होंने यू नो एज अ लीड मेन ऑपोजिट डायरेक्टर्स ये प्ले किया हो. तो सवाल समझ में आया? नहीं समझ में आया. ओके, द क्वेश्चन इज आज आपको हमें एक ऐसी बॉलीवुड मूवी के बारे में बताना है बिकॉज आई हैव गॉट एन आंसर फॉर दिस. दैट्स व्हाई कि कौन सी बॉलीवुड मूवी हो सकती है आज की हमारी मूवी ऑफ द डे जिसमें नाना पाटेकर ने अपनी एक लीडिंग लेडी जिनके साथ शायद इन्होंने कुछ रोमांटिक रोल्स उनके ऑपोजिट कुछ रोल किया हो उनके फादर का रोल प्ले किया था इस मूवी में.
1: अच्छा. कौन सी ये एक्ट्रेस हो सकती है?
0: इट्स अ वेरी पॉपुलर फिल्म, अ वेरी पॉपुलर मूवी.
1: नाना पाटेकर की फिल्में ही पॉपुलर होती थी
0: जी, लेकिन इस फिल्म में इनके अलावा कुछ और भी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे और इस फिल्म की कहानी को बहुत पसंद किया गया था. इनके रोल को भी ऑफकोर्स बहुत सराहा गया था इस फिल्म में. बट वो कौन सी फिल्म है आपको आज उस फिल्म का नाम बताना है. सो रिमेंबर, ऐसी कोई एक फिल्म जिसमें नाना पाटेकर ने किसी एक्ट्रेस के साथ प्रीवियस फिल्म में शायद काम किया हो एज opposite to her as the leading man to that particular actress, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने उनके पिता का रोल प्ले किया था.
1: Okay.
0: Yeah. तो चलिए देखते हैं क्या आज की फिल्म आप बता पाते हैं कौन सी फिल्म है. और अगर नहीं कुछ डिफिकल्टी हुई तो थोड़ी देर बाद कुछ और क्लूज आपको देंगे हम ज़रूर. बट फिलहाल के लिए आपके पास है करीबन 5 मिनट्स का टाइम. बताना है आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे कौन सी मूवी हो सकती है, एक ऐसी फिल्म जिसमें नाना पाटेकर ने किसी एक लीडिंग लेडी के साथ उनके फादर का रोल प्ले किया था जिनके साथ उन्होंने शायद किसी प्रीवियस फिल्म में ऑपोजिट उनके एक रोल जो है ये किया हो. तो कौन सी मूवी हो सकती है? Very popular movie as I have said. और देखते हैं क्या आप में से कोई सही जवाब दे पाता है या नहीं.
3: Let's go.
2: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: विशाल मिश्रा की आवाज में आज का स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आपके लिए हम पेश कर रहे थे। और फिलहाल समय की ओर देखें तो 17 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में, वैसे 7 बजने में ठीक 7 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। और इधर हमने आज जो इस मूवी के बारे में पूछा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट है या लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम सही जवाब हमारे पास आए हैं। आई कैन एक्चुअली टेल यू सिर्फ 4 सही जवाब आए हैं।
1: Oh, okay.
0: Yeah, and it's not enough, you know, if when it comes to a movie that's so popular and so big, कि सिर्फ 4 लोगों को इसका सही जवाब जो है ये पता हो। तो आज आपको बताना है, हमने आपसे पूछा था कि कौन सी फिल्म हो सकती है आज की हमारी बॉलीवुड मूवी, और हमने कहा था कि एक ऐसी मूवी जिसमें शायद इन्होंने प्ले किया हो, एक लीडिंग एक्ट्रेस जिनके साथ इन्होंने एक ऑपोजिट रोल प्ले किया था, उनके फादर का रोल भी। तो मैं आपको एक्चुअली क्लूज दे देती हूँ, ठीक है?
1: ठीक है,
0: आई विल क्लूज विच विल मेक इट ईजी फॉर यू। 1998 में एक फिल्म आई थी युग पुरुष, और इसमें काम किया था नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ और मनीषा कुराला ने एक साथ। फिर उसके बाद 1996 में आई थी एक और एक फिल्म अग्नि साक्षी, और अग्नि साक्षी तो मैंने खैर देखी हुई है, इसमें भी काम किया था एक साथ नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ और मनीषा कुराला ने।
1: ओके,
0: फिर 1996 में एक और एक फिल्म आई थी जिसमें नाना पाटेकर प्लेड मनीषा कुराला फादर्स रोल।
1: तो कौन सी वो फिल्म थी?
0: जी, he played a character opposite Manisha Koirala in 2 films, unke leading man ke roop mein anti role tha unka, but even then he played opposite her, aur 2 filmon mein unke opposite leading man play karne ke baad ek film mein unke father ka role play kiya tha।
1: तो वो कौन सी फिल्म थी? BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आपको हमारे पास भेजना है। अपॉर्चुनिटी है आपके पास अभी भी, तो चाहे तो अपने जो जवाब है ये हमारे पास आप भेज सकते हैं। वैसे आज जैसे हमने कहा है 9th of October, अगर आपका बर्थडे है, शादी की सालगिरह है, तो आपको क्या करना है, मैसेजेस समय से पहले हमें प्लीज़ ज़रूर भेज दें, ताकि अगले घंटे अराउंड 7:30 या 7:40 के आसपास हम आपको विश कर सके इस प्रोग्राम में। आप चाहें तो buzz@humfm.com पर अपने ईमेल समय भेज सकते हैं, और इजी हो तो आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। 5599 नंबर है जिस पर अपने मैसेजेस आप भेज सकते हैं। यही नहीं, आज एक बार फिर हम फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, इसमें हिस्सा लेने का मौका आपको हम देने वाले हैं,
0: तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। टोटल ऑफ $5,000 बोथ ऑफ प्राइजेस हम गिव अवे कर रहे हैं दिस दिवाली फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में। लेकिन आज जो पहला इनाम आप ऑन द ब्रेकफास्ट शो जीत सकेंगे वो है लॉजिक फाइनेंस की ओर से न्यू वर्ल्ड के वाउचर्स वोथ $1,000।
1: तो ग्रॉसरी शॉपिंग आपकी सॉर्टेड हो सकती है, और ये $1,000 लागत के न्यू वर्ल्ड के शॉपिंग वाउचर्स जो है ये अगर आपको जीतना है तो हमारे साथ ही रहें। ऑल थैंक्स टू लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कुंडोला, उनकी ओर से ये जीतने का मौका हम आपको देंगे। लेकिन कब, कैसे, क्या आपको करना होगा जानने के लिए आपको सुनते रहना है।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम। Accurate traffic.
6: Fragrance and cosmetics clearance sale.
7: A little cloud, should be mostly fine all day today. A high of 21 degrees into the city at the moment. Northern motorway, a mostly clear drive in. Still just 16 minutes in from Constellation Drive to the city. Northwestern, 17 in from Massey. Starting to build a little bit, but still quick. Southern, a little slow patch at Manurewa. That's about all. 20 minutes Manukau to the city. Fine on the southwestern. Public transport, A-OK.
6: Clearance sale this Saturday. Sacred Heart College, Glen Dowie from 9 a.m. While stocks last.
8: Ruzbe, 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
2: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
8: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
2: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
8: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज।
2: बुक नाउ विद सन टूर्स।
8: कॉल करें 0800 478686।
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
11: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12, half price. Under 5s, free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
12: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
13: 10 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। 7 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में, और अगले घंटे जो न्यूज हेडलाइंस है इसमें कुछ खास जानकारियां होंगी। एक ऐसा शॉप है, एक शॉप के खिलाफ कॉमर्स कमीशन ने अदालती कार्रवाई जो है ये शुरू करने का फैसला किया है। कौन सा ये आउटलेट है, इसके बारे में डिटेल्स जो है ये हम आपको देने वाले हैं। एंड एज वी मूव क्लोजर टू द इलेक्शंस, एक और जो सर्वे है उसमें कुछ नंबर्स सामने आए हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है किस जगह पर है राइट नाउ, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स हम आपको देंगे।
14: तो याद रहे ये अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये आपको याद रखना है कि अगर आप इस साल इलेक्शन में वोट करना चाहते हैं देन इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड मैंडेटरी कि आप अपना जो इलेक्शन वोट करने के लिए इस इलेक्शन में अपने आप को एनरोल कर लें, या फिर अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड है तो अपने डिटेल्स आप अपडेट कर लें बिफोर मिडनाइट 25th of October। रिमेंबर बिफोर मिडनाइट 25th of October, क्योंकि अगर आपको वोट करना है इस साल के जनरल इलेक्शन में यू नीड योर डिटेल्स टू बी अपडेटेड और यू नीड टू बी एनरोल्ड बिफोर 25th of October, क्योंकि इसके बाद अगर आप करोगे तो आपका जो यू कह सकते हैं कि वोट ये वैलिड नहीं रहेगा, इनफैक्ट यू वॉन्ट बी एबल टू वोट एट ऑल बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड, सो कीप दैट इन योर माइंड। राइट नाउ 8 मिनट बाकी है हमारे स्टूडियोज में 7 बजने में। आज जो हमने मूवी ऑफ द डे के बारे में पूछा था तो सही जवाब उसका है खामोशी 1996 में ये फिल्म आई थी और आई डोंट नो हाउ मेनी यू हैव सीन दिस मूवी. मुझे बहुत पसंद आई थी. आई हैड सीन इट. आई फाउंड इट टू बी वेरी इमोशनल एट द सेम टाइम और बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी था. इनफैक्ट खामोशी द म्यूजिकल इस फिल्म का नाम ही था एंड दिस वॉज द वेरी फर्स्ट मूवी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जिसे संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था.
13: Okay.
14: उन्होंने इसकी कहानी लिखी थी और इसे डायरेक्ट भी किया था और इस फिल्म में नॉट जस्ट नाना पाटेकर लेकिन उनके साथ सलमान खान, मनीषा कोइराला, सीमा बिस्वास और हेलन ने अलग अलग जरूरी किरदार जो है ये प्ले किए थे.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
1: पूरी की पूरी गैंग के लोगों कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो।
2: गुड मॉर्निंग, क्यूरा नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। फिलहाल 4 मिनट हो रहे हैं समय हमारी स्टूडियोज में 7:07। दिस इज द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं मॉर्निंग मैडनेस का सफर। हम आपके साथ

0: तो जबकि 4 मिनट हो रहे हैं 7:00 चले इस घंटे की शुरुआत जो है इनाम के साथ ही करते हैं।
1: हाँ जी चलो दैट्स वेरी गुड।
0: इट्स अ फ्राइडे ना
1: ओके दोनों ने एक ही चीज बोली राइट। तो इफ वी टॉकिंग अबाउट इनाम व्हाट आर वी डूइंग
0: हम फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून इस साल हमने आपके लिए शुरू किया है जहां पर टोटल $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस जो है ये जीतने का मौका आपको हम दे रहे हैं इस बार। और इनाम जो है इसमें अगर देखें $1,000 वर्थ ऑफ फील्ड वाउचर्स ऑल थैंक्स टू इनडेलिबल होम्स, $1,000 लागत के फर्नीचर होम डेको वाउचर्स हैरिंगटन लिविंग की ओर से, $1,000 वर्थ ऑफ माइटन वाउचर्स NZPMI की ओर से, और $1,000 कैश फॉर्च्यून की ओर से, और $1,000 लागत न्यू वर्ल्ड वाउचर्स थैंक्स टू लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला। आप जीत सकते हैं जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। गुरु कंडोला हाउस होल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, आप कॉल कर सकते हैं 0800 लॉजिक जी पर। तो उनकी ओर से $1,000 लागत के न्यू वर्ल्ड वाउचर्स आप में से किसी एक को ही मिलेंगे।
1: तो ये जो इनाम है आपके हो सकते हैं, और जैसे कि हमने कहा कि इट्स यू ओनली जिसका ये होगा, और इसके लिए एक छोटी सी चीज़ आपको करनी है, लेट अस नो दैट यू वांट टू विन। और अगर जीतना है तो बस बताने के लिए कि यू आर इंटरेस्टेड इन विनिंग अपनी एंट्रीज हमारे साथ आप रजिस्टर करा सकते हैं लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, जिनकी ओर से अगर आप $1,000 वर्थ ऑफ जो न्यू वर्ल्ड के वाउचर्स जीतना चाहते हैं। तो इसके लिए अब आपको अपनी एंट्री सेंड करनी है। सबसे पहले लिखना है लॉजिक, LOGIC लॉजिक लिखे सबसे पहले, फिर लिखे आप अपना नाम, और फिर लिखे आप अपना जो लोकेशन है, और हमारे पास सेंड कर दे 5599 पर। नाउ वी आर कीपिंग इट वेरी सिंपल ताकि आपको मैसेज भेजने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, सही गलत जवाब का कोई इशू ना हो। यू जस्ट टाइप इन योर मैसेज एंड यू सेंड इट अक्रॉस। सो लॉजिक लिखे, फिर अपना नाम लिखे और अपना लोकेशन, एज इन आप किस सबब से या किस शहर से हमारे साथ जुड़े हैं आज सुबह सुबह, ये आप हमें लिखकर बता सकते हैं। एंड वंस यू टाइप दीज थ्री थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर मैसेज, बस सेंड इट अक्रॉस। आपको टेक्स्ट कर देना है इसे 5599 पर। दैट्स इजी,
0: वेरी वेरी सिंपल, बड़ी आसानी से आप कंपटीशन में आज हमारे साथ हिस्सा ले सकते हैं। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, बस अपना जो अपनी जो एंट्री है ये हमारे पास जितनी जल्दी हो सके उसे आप भेज दें।
1: बिल्कुल, आपको हम देंगे सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम। पहला गाना है 2 मिनट्स का, अच्छा 5 मिनट्स है, चलो इट बी रफली अराउंड 5 मिनट्स 30 सेकंड्स का टाइम। पहला गाना है अराउंड 2 मिनट्स का, और दूसरा गाना जो है अराउंड 3 मिनट्स 30 सेकंड्स तक का। तो दोनों मिला दो अराउंड 5 मिनट्स 30 सेकंड्स, राइट। तो जैसे ही दूसरा गाना फिनिश होगा विल रैप अप द कॉम्पिटिशन एंड मेक श्योर विद इन द टाइम लिमिट आपकी एंट्री आए, बिकॉज once we close the competition to uske baad aapki entries agar aati bhi hai it won't be valid, so within time limit apni entry jo hai aap send kijiyega। Logic space your name space your location 5599 par, logic finance ki aur se $1,000 worth of new world ke vouchers jo hai ye jeetne ke liye। Terms and conditions around the promotion janna hai to hum.over.nz visit kare, and remember every time aap hamare paas 5599 par text karte hain standard carrier rates do apply।

0: Rashi Vibes.
1: सबसे पहले मेष यानी एरीज आज आपके लिए कहा जा रहा है कि दिन आपका जनरली ठीक ठाक ही होगा, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, बॉसेस काम से काफ़ी खुश रहेंगे और आज इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, हेल्थ भी आपका बढ़िया रहेगा।
2: उसके बाद अगर देखा जाए तो वृष ने टॉरस आज आपके लिए कहा गया है कि जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ पर आज आप अपना संयम बनाए रखें, ये सलाह दी जा रही है, अदरवाइज आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आज आपके। उसके अलावा सोच समझकर बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस ले वरना नुकसान का सामना करना पड़ेगा। परिवार के साथ बहुत ही अच्छा समय बीतेगा एंड दिस इज समथिंग दैट विल कीप यू हैप्पी टुडे।
1: मिथुन यानी जेमिनी, तरक्की के कुछ मौके आपको मिलेंगे, बिजनेस के फैसले समझदारी से अगर करते हैं तो अच्छा फायदा हो सकता है। पति पत्नी के जीवन में आज काफ़ी प्यार और मिठास जो है ये होगी और मेंटली आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे।
2: करके निकेंसा आपके लिए कहा गया है, नौकरी में आपके जो सहकर्मी है यानी कि कलीग्स हैं इनका आज पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, यू विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद देयर सपोर्ट टुडे। बिजनेस के मामले में सोच समझ कर ही फैसला ले और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इट शुड बी अ डिसीजन दैट आप आगे चलकर रिग्रेट ना करें। परिवार में शुभ काम जो है ये होगी, इसकी चर्चा होगी और इसकी वजह से आज आपका दिन भी अच्छा बीतेगा।
1: सिंह यानी लियो, आज अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा आपको और फाइनेंशियली आज आपका दिन बहुत ही अच्छा होगा, फ्रेश और एनर्जेटिक काफी फील करेंगे और इमोशनली आप अपने चाहने वालों के और करीब होंगे।
2: कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि आज का दिन जो है ये बिजनेस रिलेटेड दिन ऐसा है जहाँ पर आप रिस्क नहीं ले सकते, सो जितना आप रिस्क लेने के बारे में सोच रहे थे या इससे दूर रहे उतना आपके लिए अच्छा। शांति और समझदारी से काम लेंगे, आज आप काफी अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। बच्चों को लेकर भी आज कोई बहुत अच्छी खबर आपको मिलेगी।
1: तुला यानी लिब्रा, इन्फ्लुएंस रहेगा आज आपका, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, अपने निजी जिंदगी को अपने प्रोफेशनल जिंदगी के साथ अच्छी तरह से बैलेंस करने की कोशिश जो है ये आपको करनी होगी।
2: और इसके बाद वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि आज आप बिजनेस से जुड़े कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें अगर आप फायदे की उम्मीद कर रहे थे तो ऑल यू नीड टू डू इज आपको एक चीज करनी है, वो है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। परिवार में अगर देखा जाए तो फैमिली लाइफ आपका जो बहुत ही अच्छा और सुखद और शांतिपूर्वक बीतेगा, यू'ड फाइंड अ लॉट ऑफ पीस टुडे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा खुशी जो है ये महसूस होगी।
1: धनु यानी सेजिटेरियस, आज नए काम की कोई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, बिजनेस आपका और आगे बढ़ेगा, प्लान्स पूरी होंगी, बच्चों की ओर से आज आपको काफी खुशी मिलने वाली है।
2: और उसके बाद अगर देखा जाए तो आज मकर यानी कैप्रिकॉर्न के लिए कहा गया है काम का दबाव अधिक रहेगा, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा और उसके साथ साथ आज परिवार में कुछ ऐसे यू नो ओकेजन्स हो सकते हैं या इनकी प्लानिंग हो सकती है विच विल बी सो एक्साइटिंग कि आप इसको लेकर खुश भी रहेंगे और लुक फॉरवर्ड भी करेंगे।
1: कुंभ यानी एक्वेरियस, आपका इंटेलिजेंस एकदम चमक कर लोगों के सामने आएगा, हर एक सेक्टर में हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आज सक्सेस आप हासिल करेंगे, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेगा, फाइनेंशियली भी दिन बढ़िया होगा।
2: और फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कि बातों पर कंट्रोल बनाकर रखें आप, क्योंकि कभी कभी कुछ शब्द होते हैं, कुछ टोन होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से लोग आपको गलत भी समझ सकते हैं, क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। दूसरी ओर आपके लिए कहा गया है कि बचत करने की कोशिश करें, अदरवाइज फाइनेंशियली अपने आप को बहुत ही डिफिकल्ट पोजिशन में आप पाएंगे इन अ फ्यू ईयर्स टाइम। सो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे और इसी उम्मीद के साथ साथ आज की इस सुबह को आपके नाम करते हुए थोड़ी देर बाद ऑन द ब्रेकफास्ट शो हम लेकर आने वाले हैं आज का सेलिब्रिटी अलार्म और डोंट फॉरगेट 7:30 न्यूज हेडलाइंस भी आपके लिए रहेगा।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजय एंड पूजा
3: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस, फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग मोनाको, बिग ऑन स्टाइल, ग्रेट ऑन प्राइस, परफेक्ट फॉर योर होम, हैरिंगटन लिविंग मोनाको।
4: ड्राइविंग योर होम
3: Drive Show with Sandy and Rusby.
5: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो।
6: ये गलत बोल दिया यार।
5: और पहनता भी नहीं उसको।
6: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
5: इंटरेस्ट
7: ब्रांड हो गया
6: अभी ब्रांड हो गया ना
5: रुस्बे के बाल लगे उस।
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
2: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
7: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
2: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
8: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
9: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 140cc quality lawn mowers, just $249. Cordless leaf blower and battery, just $70. Cordless weed eater and battery, just $70. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
10: At Woolworths, these back-to-school specials are a great way to save. Get half price on the Sistema range. And Dairyworks cheese slices 500 gram are just $8 each. T's, C's and exclusions apply. Only at Woolworths.
11: It's spring season at Freedom. Save up to 50% off selected sofas and furniture. And for a limited time, take a further 10% off all sofas. Offer ends Monday. Only at Freedom.
12: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
13: Yes, Bebo.
12: Catch kya hai?
13: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
12: I still can't believe it. No catch.
13: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland.
14: PNC Supply.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manuku. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuku.
0: Celebrity Alarm. Hit it.
2: सेलिब्रिटी अलार्म से पहले वुड लाइक टू लेट यू ऑल नो कि आज का हमारा जो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी हम आपको दे रहे थे फॉर हमारा फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून.
1: यस,
2: तो ये इट हैज़ कम टू एन एंड. लॉजिक फाइनेंस की ओर से $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड के शॉपिंग वाउचर्स आप जीत सकते थे अगर आपने अपनी एंट्री हमारे पास भेजी होती तो. बट सिंस आपने नहीं भेजी है तो अनफॉर्चुनेटली यू वॉन्ट बी पार्ट ऑफ दिस ऑन द शो राइट नाउ टुडे. और मौके मिलेंगे, डिपेंड्स कि उन मौक़ों का आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ना. आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो भी एक मौका मिलेगा, पता है क्या जीतने का?
1: क्या?
2: $1,000 कैश जीतने का.
1: क्या पता आज 9th ऑफ अक्टूबर का दिन आपके किस्मत के तारे जो है, सितारे जो है, जो भी आप कहना चाहें, एकदम हाई पर हो ना,
2: चमक उठे.
1: हाँ.
2: तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. और याद रहे कि कब ये मौका आपको हम देंगे फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में पार्ट लेते हुए फॉर्च्यून की ओर से $1,000 कैश जीतने का. जानने के लिए आपको सुनते रहना है. फिलहाल ये आवाज आपको पहचाननी है, जरा बताइए कौन है ये.
15: धूप बराबर नहीं आती, हमारे बराबर कोई पॉपुलर लड़का होगा वो 10 गलती कर सकता है, मैं एक भी नहीं कर सकता. वो किसी और का दिन है, किसी और की जिंदगी, किसी और की किस्मत है, जिसके अंदर वो 100 गलती भी माफ है और फिर भी वो बने रहेंगे. हमारी तो एक में भार है, आपकी जिंदगी चलती बिल्कुल लैंड माइंस पे चलते हो आप, क्योंकि आपके पीछे कुछ नहीं है ना. और ये आपके पीछे कुछ नहीं है, ये आपकी नस्लें नहीं बोलेंगी.
2: तो ये आवाज किसकी है आपको बस अनुमान लगाना है. ये आई थिंक ये जो शख्स है ये जाने जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रोफेशन जिसका ये हिस्सा है, जहाँ पर कहते हैं कि ये हंसी मजाक वाले प्रोफेशन से जुड़े हैं. पर कभी कभी यार ये इतनी कमाल की बातें कह जाते हैं कि इट रियली मेक्स यू थिंक कि भाई दिस इज़ सो ट्रू, सो रिलेटेबल, एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ नॉलेज एज वेल कि आप अपनी लाइफ जो किस तरह से जो है स्पेंड करें या करनी चाहिए इनफैक्ट. तो ये शख्स तो है काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी क्या बहुत पॉपुलर है. और आपने अगर इनकी आवाज पहचानी है तो क्या करना है?
1: आपको लिखना है BF, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम, और भेज देना है 5599 पर.
2: तो here we go, एक आखिरी बार आपको इनकी आवाज सुना रहे हैं, बहुत जाने माने हैं ये. कौन है ये? अगर आपको पहचानना है तो अच्छे से सुनिएगा.
15: बराबर नहीं आती, हमारे बराबर कोई पॉपुलर लड़का होगा वो 10 गलती कर सकता है, मैं एक भी नहीं कर सकता। वो किसी और का दिन है, किसी और की जिंदगी, किसी और की किस्मत है, जिसके अंदर वो 100 गलती भी माफ है और फिर भी वो बने रहेंगे। हमारी तो एक में भार है, आपकी जिंदगी चलती बिल्कुल लैंड माइंस पे चलते हो आप, क्योंकि आपके पीछे कुछ नहीं है ना, और ये आपके पीछे कुछ नहीं है, ये आपकी नस्लें नहीं बोलेंगी दोबारा।
14: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 0800 634 234.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में लेटेस्ट टैक्सपेयर यूनियन क्यूरिया पोल के मुताबिक अपॉर्चुनिटी पार्टी 4.8% पर आ गई है, जो पार्लियामेंट में एंट्री के लिए जरूरी 5% थ्रेशोल्ड से 0.2 पॉइंट्स कम है। पोल के तहत नेशनल 28.5, लेबर 28.2 पर है, जबकि ग्रीन 13.3, एनजेड फेस्ट 12 और एक 9.2 पर बने हुए हैं। अगर अपॉर्चुनिटी पार्लियामेंट नहीं पहुंच पाती तो रूलिंग कॉलिशन पार्टीज को 65 सीट्स के साथ क्लियर मेजोरिटी मिल जाएगी, जो अपोजिशन से 10 सीटें आगे होंगी। अपॉर्चुनिटी लीडर क्वेले वोंग माउंट एल्बर्ट इलेक्ट्रेट सीट जीतने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हाल ही के पोल में वो इस रेस में चौथे नंबर पर चल रही हैं। बजट रिटेलर पीडी मार्ट, जिसे पहले पेंडामार्ट के नाम से जाना जाता था, के खिलाफ कॉमर्स कमीशन ने बच्चों के खिलौने और बेबी वॉकर्स समेत 57 नॉन कॉम्प्लायंट प्रोडक्ट्स बेचने पर कोर्ट केस दर्ज किया है। कंपनी पर 7 तरह के चिल्ड्रंस का सीट को गलत तरीके से इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बताकर बेचने का भी आरोप है। कॉमर्स कमीशन ने बताया कि अक्टूबर 2024 से स्टोर विजिट्स के दौरान ये लापरवाही बार बार सामने आई है, जिससे छोटे बच्चों की सेफ्टी को खतरा था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पीडी मार्ट ने अनसेफ का सीट्स और टॉयज रिकॉल किए हैं और कोर्ट एनफोर्सेबल अंडरटेकिंग्स के तहत नॉन कॉम्प्लायंट प्रोडक्ट्स को सेल से हटा दिया है। एनपीसी के क्वार्टर फाइनल्स जो हैं, ये आज से शुरू होंगे। आज रात 7 बजे नॉर्थलैंड टेस्मन से खेलेगा। कल 2:35 PM पर नॉर्थ हाबा वेसिस तारानाकी। कल 4 बजे ओटागो और हुक्स बे का मैच खेला जाएगा, जिसके बाद संडे को 1:35 PM पर कैंटरबरी वेकाटो का सामना करेगा। दूसरी तरफ ऑल ब्लैक्स कल वल्बिस का सामना करने के लिए तैयारी कर रही है। कल के मैच की ओर अगर देखें तो बॉर्डन बैरेट नंबर 15, विल जॉर्डन और साथ में लीरोय काटा विंग्स पर स्टार्ट करेंगे। क्विन तोपेया, साथ में जोडी बैरेट, डेमियन मैकेंजी, कैम रोईगार्ड, वॉलेस सितिती, पीटर लकाई, टुपो वाई, जॉश लॉर्ड, स्कॉट बैरेट, फ्लेचर निवल और कोडी टेलर जैसे खिलाड़ी जो हैं इस मैच को शुरू करेंगे, जबकि कोडी टेलर टीम को कैप्टन करेंगे। रिजर्व में असाफा ओमुआ, जोश बावा, पसिलियो तोसी, शैनन सेल, एंटन सेगना, कायल प्रेस्टन, रिको युवाने और जोश मोबी को रखा गया है। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Hey, देखो आ गए।
1: हम Accurate Traffic.
4: Everything for gardens, lawns and landscaping at Dalton's Landscape Supplies.
5: Should stay sunny all day, just some patchy cloud, 21 hour high into the city. Northern Motorway, 18 minutes Constellation Drive to town, 32 from Silverdale. Just a bit of traffic here and there, but not too bad. Northwestern, 22 minutes in from Massey, slow from St. Luke's, a little heavy at Greylin. Southern, 26 Manukau to town, slow East Tāmaki to Penrose and at Green Lane. Fine on the Southwestern. No issues with public transport.
4: Easy ordering or pickup. Daltonslandscapes.co.nz.
6: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
7: It's Macca's 50th birthday. And to celebrate, we're giving you 1 in 3 chances to win food prizes. Order ticketed items using the Macca's app to play. The more the merrier at Macca's 50th. T's and C's apply.
8: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
9: Save big at Rebel and get the kids sorted for back to school. Grab a huge range of kids' running shoes for just $69. Get 20% off selected bags and bottles. Plus, score an extra 20% off all clearance. Back to school value is on now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
0: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Get there in Apex world-class comfort with Fiji Airways, where the luxuries start from the moment you book. Get fast-track security, extra baggage, and priority check-in. Once you're there, enjoy even more time to relax with resort check-in. Complete your flight check-in from various Fiji resorts with your luggage transported securely to the airport. Travel in style with one of the world's top 10 airlines. Visit fijiairways.com.
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
12: Birthday greetings.
13: Iska birthday bhai?
14: Mera hi birthday hai, chalo line mein aa jao.
13: Happy birthday to you.
15: A very very happy birthday आपको विश करने का समय हो रहा है आज यानी on the 9th of October जितने भी लोग जहाँ कहीं भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी की पूरी हम टीम की ओर से हम विश कर रहे हैं आज हैप्पी हैप्पी बर्थडे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे काजल आपको विश करना चाहते हैं जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके हस्बैंड है रोनल्ड इन्होंने स्पेशल प्यारो विशेज आज आपके स्पेशल डे पर आप तक पहुँचाया है तो हमारी ओर से आपको एक बार फिर से अ वेरी हैप्पी बर्थडे हम विश कर रहे हैं
2: बॉटनी में आज नवाज इंजीनियर जी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं खुशी के इस मौके पर इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां और हमारी ओर से भी आपको आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना है

0: 1800-634-234.
1: All right, तो इधर हमने आपसे जो कहा था कि आपको बताना है आवाज आज हमारी जो सेलिब्रिटी की हमने आपके लिए प्ले की थी, ये कौन है, मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, तो इसीलिए आई वुड लाइक टू एक्सटेंड द टाइम अ लिटिल बिट, क्योंकि एक तो हमारे पास काफी लोगों ने अपने अपने मैसेजेस भेजे हैं. 8400 उन्होंने कहा कि जाकिर हुसैन की आवाज है, तो नहीं ये उनकी आवाज नहीं है. और दूसरा एक और एक मैसेज आया है जोहिर, इन्होंने कहा है मोहम्मद जोहिर कि चंदू की आवाज़ है जो कपिल शर्मा शो में रहते हैं, चंदन प्रभाकर, उनकी आवाज़ भी नहीं है. तो ना तो ये जाकिर हुसैन है और ना ही तो ये चंदन प्रभाकर है, लेकिन ये बहुत ही जाने माने शख्स है. एक चीज़ आपको बताएं, कॉमेडी की दुनिया को बिलोंग करते हैं, लोगों को हंसाने का काम है इनका, लेकिन हंसाते हंसाते लाइफ के कुछ बहुत ज़रूरी सीख ये लोगों को दे जाती है अपनी बातों से, और उनमें से एक ये सीख जो इस ऑडियो में आप सुन सकते हैं.
2: इससे में धूप बराबर नहीं आती, हमारे बराबर कोई पॉपुलर लड़का होगा वो 10 गलती कर सकता है, मैं एक भी नहीं कर सकता. वो किसी और का दिन है, किसी और की जिंदगी, किसी और की किस्मत है, जिसके अंदर वो 100 गलती भी माफ है और फिर भी वो बने रहेंगे. हमारी तो एक में बाहर है, आपकी जिंदगी चलती बिल्कुल लैंड माइंस पे चलते हो आप, क्योंकि आपके पीछे कुछ नहीं है ना, पर ये आपके पीछे कुछ नहीं है, ये आपकी नस्लें नहीं बोलेंगी.
1: तो कौन है ये और किसकी आवाज़ है ये, बहुत ही जाने माने शख्स है ये. इतने सारे शोज़ इन्होंने किए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, सम ऐसे स्टेडियम्स इन्होंने भरे हैं अपने शोज से जो एक हिस्टोरिकल मोमेंट भी साबित हुई है. और रिसेंटली इन्होंने शोज़ वगैरह से या यूँ कहे कि लाइव परफॉर्मेंसेस से भी रिटायरमेंट जो है ये अनाउंस किया था. नॉट अ रिटायरमेंट लाइक अ ब्रेक इन्होंने अनाउंस किया था. इट हैपेंड आफ्टर अरिजीत सिंह अनाउंस हिज ब्रेक, तो उसके बाद इनका भी आया था. और इनका एक शो आया है नेटफ्लिक्स पर, आई डोंट नो हाउ मेनी यू हैव सीन इट, अभी भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है ये. तो कौन है ये शख्स, इतने सारे क्लूज हमने आपको दे दिए हैं, ना तो ये चंदन प्रभाकर है, ना तो ये जाकिर हुसैन है, लेकिन कौन है अगर आपने पहचान लिया है, अपने आंसर्स हमारे पास आप टेक्स्ट कर सकते हैं.
3: BF आंसर और नाम ये 5599 पर आपको हमें भेजना है.
4: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर
1: हम एक्यूरेट ट्रैफिक
2: एवरीथिंग फॉर गार्डन्स लॉन्स एंड लैंडस्केपिंग एट डॉल्टन्स लैंडस्केप सप्लाइज
3: 21 hour high today, staying a mainly fine one all day. Into the city, mostly fine motorways. Southern, slowest of the bunch, 27 minutes Manukau to town. Slow east Tāmaki to Penrose and Ellerslie to Green Lane, just 38 minutes all the way from Drury. Fine on the southwestern. The northern, 20 minutes in from Constellation Drive, no real slow spots. Northwestern, 22 in from Massey. Patchy from St. Luke's, but heavy there.
2: Easy ordering or pickup. Daltonslandscapes.co.nz.
4: All right, Pepper, now we're going to do a radio ad.
5: Can't you just use my line from the TV ad?
4: Well, let's just do it again, please, Pepper.
5: Phone dollars are for phones. Obviously.
4: Yeah, okay, another one, but without the obviously.
5: Phone dollars are for phones. Ring, ring, ka-ching. Obviously.
4: QTs and Cs.
5: Eligibility and T's and C's apply. For more info, visit 1NZ/OneWallet.
4: Cool, in the end bit.
5: One New Zealand. Let's get connected.
6: Keen to score 20 cents per litre off your fuel? Scan Club Plus from Friday to Sunday when you spend $100 at New World, Pack and Save or Foursquare. That's some smart shopping. T's and C's and exclusions apply.
7: Save big at Rebel and get the kids sorted for back to school. Grab a huge range of kids' running shoes for just $69. Get 20% off selected bags and bottles. Plus, score an extra 20% off all clearance. Back to school value is on now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
8: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
9: Yes, Bebo.
8: Catch kya hai?
9: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
8: I still can't believe it. No catch.
9: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland.
10: PNC Supply.
11: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
11: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
13: तो आज का हमारा थ्रोबैक जो है इसका अब समय हो चुका है, लेकिन इससे पहले कि आज का थ्रोबैक आपको हम सुनाएं, हमने आज सेलिब्रिटी लाम में जो आवाज़ आपको सुनाई थी, कई आंसर्स हमारे पास आए थे, फिर हमने आपको बताया था ना कि इसमें से दो जवाब तो गलत है. नवनीत ने अपना जवाब भेजा है, सतने गुरप्रीत है, ऐशे वेलिंगटन से अंजलि है, सतनाम है, और कुछ लोगों ने मैसेजेस किए हैं, नाम नहीं लिखा है. जेनिस, थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. तो आज की हमारी सेलिब्रिटी इन सेलिब्रिटी लाम वॉज नन अदर देन जाकिर खान. जाकिर खान बड़े जाने माने कमेडियन हैं और साथ ही साथ यू नो फिलॉसफी से जुड़ी जो बातें जिस अंदाज से ये कहते हैं लोगों को बड़ा पसंद आता है.
14: तो आप में से जितने भी लोगों ने अपने आंसर्स हमारे पास भेजे हैं, थैंक यू सो मच. और द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है 8 बजे के बाद. वैसे तनिषा हैं, जेनिस ने वीरदास लिखा था, किसी ने कपिल शर्मा लिखा, कुछ लोगों ने जाकिर खान लिखा था, ऐश वेलिंगटन से थे, और भी कई आंसर्स जो है कि आए थे.
13: वेरी नाइस. अच्छा 10 मिनट बाकी इधर हमारी स्टूडियोज में, वैसे 8 बजने में ठीक आठ पर तो न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद ट्रेंड पेट्रोल आज का हम लेकर आएंगे आपके लिए. अच्छा. एंड चेकआउट की आज क्या ट्रेंड कर रहा है. बट ऑन दी अदर हैंड एक खबर जो है ये भी आ रही है, एंड दिस इज अबाउट अ लार्ज पूल ऑफ ह्यूमन ब्लड जो वेलिंगटन में एक यू नो पेडेस्ट्रियन टनल के अंदर जो है ये मिला है. अपेरेंटली पुलिस को बुलाया गया था स्काउट स्ट्रीट रोंगोटाई जो है यहाँ पर 10:40 PM लास्ट संडे को, जब एक व्यक्ति को वहाँ पर कुछ यू नो ब्लड जैसा जो है ये मिला, विच वॉज अ पेडेस्ट्रियन टनल एट स्काउट स्ट्रीट इन रोंगोटाई. और जो सीन है इसे फिर कॉटन ऑफ किया गया, जहाँ पर पुलिस ने कुछ एग्जामिनेशन कंडक्ट किए. डिटेक्टिव सीनियर सर्जन स्टीव वेस्कोट जो है इन्होंने ये जानकारी दी, और फर्दर इंक्वायरी में ये पता चला कि इट वॉज ह्यूमन ब्लड. और पुलिस ने कहा है कि उन्हें कोई बॉडी तो नहीं मिली वहाँ पर, ना तो कोई शख्स मिले जिनको किसी तरह से गंभीर रूप से चोट वगैरह आई हो, लेकिन पुलिस जो है इस मामले में अब लोगों से हेल्प की मांग कर रहे हैं टू असिस्ट देम एस्टेब्लिश सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द इंसिडेंट, और अगर कोई इसमें इन्वॉल्व हो तो उनको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करने की मांग जो है ये की जा रही है. सीनियर सर्जेंट जो है इन्होंने कहा है कि पुलिस आर अपीलिंग फॉर एनीवन हु वाज इन द एरिया नियर द टनल व्हिच रन्स अंडर वेलिंगटन एयरपोर्ट फ्रॉम स्काउट स्ट्रीट रोंगटाई टू मायरो स्ट्रीट इन मिरमा. और संडे को अराउंड 10:40 PM इनफैक्ट जैसे कि हमने कहा ये घटना जो है ये सामने आई है. और किसी के पास अगर CCTV या डैश कैम फुटेज हो जो उस एरिया को कवर करता हो तो आपको भी इनकरेज किया जा रहा है टू गेट इन टच विद द पुलिस. यू कैन कॉन्टेक्ट देम वाया 105 और अगर आप चाहें तो अनोनमस कॉल भी आप कर सकते हैं क्राइम स्टॉपर्स को 800-555-111 पर.
14: तो इस पर जैसे ही कुछ और डिटेल्स हमारे हाथ लगेंगे ये भी आपके लिए हम इस प्रोग्राम में लेकर आएंगे. 8 बजे के बाद आज व्हाट्स योर टेक में भी हिस्सा लेने का मौका होगा.

0: accurate traffic.
1: Your new home awaits in Strathmill, Ottawa.
2: Should stay fine and sunny for us all day long. High of 21 into the city. Our motorways are very quick this morning. It's the last day of the school holes and a Friday. That's all equaling just quick motorways. Northern 20 minutes in from Constellation. Clear the whole way, really. Northwestern 22 minutes in from Massey. Slowing from St. Luke's. Little heavy there. Southern 27 from Manukau. Slow east Tāmaki to Penrose and Ellerslie to Green Lane.
1: Strathmill. Discover your new home in beautiful Ottawa. Visit strathmill.co.nz.
3: Martin Mega Henderson. Up weekdays pe subah 6 baje se khula hai. Building supplies, timber, power tools or trade essentials. Sab kuch site pe jaane se pehle hi utha lo. Get in, get sorted and get the job done earlier. Open from 6 a.m. Martin Mega Henderson.
4: The big sale is on now at Beds R Us with amazing deals on selected sleepyhead beds like 60% off Swiss Tech Precision Queen Size now 3499. The big sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
5: When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
6: Lots.
5: Will their word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
6: Probably.
5: Am I paying for this free coffee?
6: Definitely.
5: Will they talk me into an upgrade?
6: Oh.
5: Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.
7: True Midas.
8: बूढ़ा हो गया हूँ माते घर ढूंढते ढूंढते
9: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा
10: अब हमारा क्या होगा
11: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना फालतू की बातों से बचना
12: तो क्या करें
13: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
14: Taking part in the 2026 general election feels easier when you know what to expect. If you are disabled, a caregiver or a support person, then you may have questions about the accessible options available to enrol and vote. Join one of our online sessions to get practical information and ask the questions that matter to you. Find session details at vote.nz or call 0800 36 7656. Brought to you by the Electoral Commission.
15: Check.
16: Brought to you by Mann Tires for all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
17: Good morning, it's Amit Kaad Baj Rahe.
15: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
18: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 8. Wellington police are concerned about the discovery of a large pool of human blood. It was found in a pedestrian tunnel on Coote Street on Sunday night. Police say they didn't locate anybody in the surrounding area at the time. They're seeking help from the public in locating the person involved over concerns for their welfare. A significant new rule kicks in for recreational boat users today. Wearing a life jacket is now a requirement for anyone on a vessel up to 6 metres. Maritime NZ's Matt Wood says the sector has been calling for it for ages.
19: Waikato Regional Council is actually the first region to adopt a similar rule. That was in 2013. Since then, 7 other regions have done so. So now this lifts that standard for the whole country.
18: A senior specialist fire investigator will look into this week's Walter Peak fire near Queenstown. It has been fully contained and the land handed back to the owner. Fens says they will investigate whether it's connected to the controlled burn-off undertaken on a nearby farm at the end of last month. Oil prices have jumped after a spate of attacks on tankers in the Strait of Hormuz. Brent crude is up more than 5% for the day to just under $106 a barrel. In sport, the heat is on the All Blacks pack heading into tomorrow night's Bledisloe Cup opener at Eden Park. The set piece was a big issue during the series defeat to the Springboks. Lock Josh Lords, keen to get things right against the Wallabies.
20: Yeah, it's been a lot of good, honest reviews, especially around that scrum. Games are won up front, and unfortunately, we probably weren't where we wanted to be against South Africa.
18: And Australia play a cricket test in South Africa tonight for the first time since the sandpaper saga 8 years ago, which saw 3 players banned for ball tampering.
15: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
21: World's best, hamari good brands nahi hai.
15: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
17: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का वेदर मेनली फाइन रहेगा विद सम मॉर्निंग या लेट मॉर्निंग एंड आफ्टरनून क्लाउड और सनसेट 7:33 PM पर होगा. 13.6 डिग्रीज टेम्परेचर पहुंच चुका है आज का ओवरनाइट. 12 डिग्रीज हाई ऑफ 21 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर.
15: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
15: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors. Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
17: ट्रेंड पेट्रोल में बातें करते हैं हम अलग अलग ट्रेंड्स की जो दुनिया भर से हमारे पास पहुंचती है, इसके बारे में चर्चा जो है ये होती है. और एक नया ट्रेंड जो है ये शुरू हो रहा है या शुरू हो चुका है धीरे धीरे, बस इट्स रीचिंग इट्स पीक आई वुड से. टॉय इंडस्ट्री को कुछ नए कस्टमर्स मिल चुके हैं. इट्स नॉट द यूजुअल जहाँ पर किड्स हो या वो पेरेंट्स हो जिनके बच्चे हों, यू नो द मोस्ट कॉमन कस्टमर्स वी वुड से नॉर्मली टॉय इंडस्ट्री को मिलते हैं.
0: तो कौन खरीद रहा है खिलौने?
17: बड़े लोग, एडल्ट्स.
0: बच्चों के लिए?
17: खुद के लिए.
0: हाँ,
17: एक नया ट्रेंड जिसे किडल्टिंग के नाम से बताया गया जाना जाता है इस यू नो रीचिंग इट्स पीक, जहाँ पर अब बहुत से ब्रांड्स हैं जो इस टाइप ऑफ कस्टमर के लिए भी कैटर करते हैं. एडल्ट्स जो हैं ये खुद के लिए खिलौने खरीद रहे हैं, फ्रॉम लेगो टू हॉट व्हील्स टू कलेक्टेबल्स एंड प्लशीज. और बच्चों के लिए एक नॉस्टैल्जिया मोमेंट जो है ये क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से, जिसके चलते अब बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं हु आर गोइंग बियॉन्ड एंड दे आर क्रिएटिंग समथिंग जो वो कह सकते हैं कि यू नो वो उनके लिए है, मतलब एडल्ट्स के लिए है.
0: अच्छा.
17: तो ऐसे कुछ क्रिएशंस जो है ये किए जा रहे हैं बाय द ब्रांड टॉय कंपनीज. आपको नहीं समझ में आ रहा है?
0: समझ में आ रहा है. मैं सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा हो, ये ट्रेंड जो है किसी टॉय कंपनी ने ही शुरू किया होगा.
17: आई डोंट नो किसने शुरू किया है, बट
0: आई हैव अ फीलिंग.
17: डू यू बाय टॉयज फॉर योरसेल्फ?
0: No.
17: Me neither, but ये एक ट्रेंड है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ हमारे लिसनर्स ये करते होंगे कि खुद के लिए खिलौने लेना. यू नॉट बाइंग इट फॉर एनी वन एल्स, पर्टिकुलरली फॉर एनी किड, लेकिन खुद के लिए. तो इसी वजह से अब जब ये एक ग्रोइंग इंटरेस्ट देखा गया है तो इसके चलते टॉय कंपनीज जो है उन्होंने भी अपनी टॉयज को ऐसे डिजाइन करना शुरू किया है दैट इवन द एडल्ट्स वुड गेट अट्रैक्टेड टू इट. आई नो बोर्ड गेम्स जो होते हैं ये काफी एडल्ट्स लेते हैं.
0: हाँ, अंडरस्टैंडेबल कि
17: बोर्ड गेम्स जैसे सब खेल लेते हैं.
0: हाँ, मोनोपोली, स्नेक एंड लैडर्स, ड्राफ्ट और क्या बोलते हैं इसको,
17: मुझे तो ज्यादा नहीं पता,
0: शतरंज, चेस. हाँ,
17: राइट. तो इसी तरह से अभी इसका भी एक नया जो यू कह सकते हैं चलन चल रहा है, तो देखते हैं कब तक चलता है और कितना आगे ये बढ़ता है. बट राइट नाउ दैट्स द लेटेस्ट ट्रेंड जिसके बारे में डिटेल्स हमारे हाथ लगी है.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: Hey Chat GPT, दिवाली आने वाली है. ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
3: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
2: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
3: इंटरेस्टिंग. और कुछ?
2: बस इतना ही.
3: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं. हमसे ना हो पाएगा.
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश. फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
5: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Swimming pool heat pumps under $2,000. Outdoor four-piece resin lounge set just $299. Outdoor gazebos just $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
6: Home and contents belong together, and insuring them together makes life easier. Switch to Tower and save $200 on new home insurance and $100 on new contents insurance. Use promo code EASYSAVE. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
7: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
8: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
7: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
9: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
10: A lot of injuries happen on the weekend, so if you're out and about or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
11: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco, big on style, great on price, perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton.
12: What's your take?
13: देखते हैं क्या हाल होता है आज हमारे बच्चे टेक का. क्या किसी का कोई व्यू शेयर करने के लिए हमारे पास कॉल आता भी है या नहीं. बट आपको बता दें, इफ़ यू वांट टू कॉल एंड टॉक टू अस लाइव ओन एयर, तो आप इसके लिए हमारे पास 0800 004866 पर कॉल कर सकते हैं. पर अगर आप कॉल नहीं करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं ऑन 5599.
14: मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, यूनाइटेड एयरलाइंस के जो CEO है स्कॉट कर्बी,
13: हाँ,
14: इनका डेली रूटीन
13: क्या है?
14: डेली रूटीन जो इनका है उसमें शामिल है 8.5 hours ऑफ स्लीप डेली,
13: ओके,
14: एर्ली मॉर्निंग वर्कआउट्स,
13: ओके,
14: 3 hours ऑफ रीडिंग एंड 4 hour कैप ऑन मीटिंग्स.
13: 3 hours ऑफ रीडिंग,
14: हाँ,
13: 3 घंटे पढ़ाई करते हैं,
14: हाँ,
13: लाइक बुक्स वगैरह,
14: क्या?
13: और 4 hours ऑफ क्या?
14: 4 hour कैप है मीटिंग्स पर, 4 घंटे से ज्यादा मीटिंग्स में ये हिस्सा नहीं लेते
13: पर डे
14: हाँ.
13: मतलब टोटल मिलाकर अगर चार घंटे हो गए दैट्स व्हाट ही डज
14: या
13: उससे ज्यादा नहीं.
14: तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि वो टिपिकली सुबह 5:30 बजे तक जाग जाते हैं 8.5 घंटे की नींद के बाद. ही डज नॉट सेट एन अलार्म क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में बेली कभी अलार्म की जरूरत पड़ी है.
13: ओके
14: उठने के बाद ही हैज एन एप्पल और बनाना उसके बाद अपना वर्कआउट शुरू करते हैं और फिर वर्कआउट के बीच बीच में यू नो न्यूज़पेपर्स वगैरह जो है व्हेन ही इज टेकिंग अ ब्रेक वो पढ़ लेते हैं और फिर सुबह 7 बजे तक उनका कहना है कि उनके बच्चे जो है ये उठ जाते हैं स्कूल टाइम हो तो वो बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं एंड ऑफन टेक्स देम टू स्कूल. और उनका कहना है कि उनके पास उनका एक ट्रेडिशन है विच ही एब्सोल्युटली लव्स इज कि अपने 7 साल के 7th grader जो या 7 साल के नहीं 7th grader स्टूडेंट चाइल्ड जो है उनको उनको एम्बेरस करना विद बिग हग्स एंड किसेस.
13: Okay.
14: Yeah. Everyone thinks it's hilarious and he actually thinks it's funny too. तो और साथ में तक अराउंड 8 o'clock वो काम जो है ये शुरू कर देते हैं एंड he has a strict guideline of no more than 4 hours of meetings a day और 2 to 2.5 hours जो है ये ideal number उन्होंने सेट किया है कि इतना नहीं 5 minutes of lunch. पिछले 4 सालों से चलते चलते पढ़ते हैं.
13: बहुत अच्छा है रीडिंग भी टाइमिंग बहुत अच्छा है बट आई डोंट अग्री विद दिस 5 मिनट्स का लंच. I don't like that idea.
14: By around 5 p.m. वो काम खत्म करने की कोशिश करते हैं so that he can spend time with his children during the school year. You know, school के बाद उनको practice और activities के लिए लेकर जाते हैं. Around 6 p.m. family dinner होता है.
13: Okay.
14: और फिर उसके बाद hide and seek और वो सारी चीजें बच्चों के साथ खेलते हैं. And he said by 9 p.m. He goes to bed.
13: सो जाते वापस.
14: तो मैंने इनका जब रूटीन पढ़ा तो मैंने सोचा कि चलो आज आपसे भी पूछते हैं
13: हाँ.
14: हमारा रूटीन कैसा होता है.
13: अच्छा एक ही पूछ रहा है आपको. कोई बताएगा तो देखेंगे
14: कि आपका रूटीन या फिर कम से कम हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप डू यू गेट एवरेज ऑन अ डे.
13: तो ये आप हमें बता सकते हैं और आप अपना रूटीन अगर चाहे तो वो शेयर कर सकते हैं कि दिस इज व्हाट आई डू दिस इज द टाइम आई वेक अप.
14: And do you actually read?
13: No, I don't.
14: सबसे पूछ रहा हूँ ना.
13: हाँ मैं अपना बता रही हूँ. Like I don't read books. मुझे पता नहीं क्यों. I try to develop that habit, पर नहीं हो पाता है. I read children's books at times. वो भी पढ़ाने के लिए ही पढ़ना पड़ता है तब पढ़ती हूँ. Otherwise no.
14: Okay. And how many steps on average do you do in a day?
13: That's very bad. I don't even know. मेरा जो हाल है आई थिंक आई डू इट लेस देन 1,000 steps a day और nearly 1,000 steps a day. बहुत बहुत बुरा है ना. आई डोंट वर्क आई डोंट वॉक.
14: So, अब लाइन सम आपके लिए खोल रहे हैं. इतने सारे सवाल हमने आपसे पूछ लिए किसी एक का जवाब तो आपके पास होना चाहिए.
13: जी यार क्वेश्चन बहुत है इंटरेस्टिंग तरीके से पूछने के लिए भी हम यू नो आइडियाज़ लेकर आते रहते हैं. इन्वॉल्वमेंट और इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए भी तरह तरह की चीज़ें करते रहते हैं पर जैसे कि हमने कहा टोटली डिपेंड्स आप कितना इंटरेक्ट करते हैं कितना कंट्रीब्यूट करते हैं. इफ़ यू डोंट कंट्रीब्यूट इफ़ यू डोंट इंटरेक्ट तो फिर हम खुद में ही बातें करके सेगमेंट खत्म कर लिया करेंगे. गुड मॉर्निंग.
12: गुड मॉर्निंग. हाय विजय एंड पूजा कैसे हो.
13: बढ़िया जी. सबसे पहले तो शुक्रिया आपका आपने कॉल किया इसके लिए. और आप बताइए पूरा रूटीन बताना चाहेंगी या फिर कुछ कुछ बिट्स एंड पीसेस फ्रॉम हियर एंड देयर.
12: बिट्स एंड पीसेस फ्रॉम हियर एंड देयर.
13: ओके व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर.
12: सो आई वर्क फुल टाइम एज वेल एज इन द इवनिंग आई डू लीगल सर्विसेज. सो आई हार्डली स्लीप फॉर 5 hours अ डे. बट हाँ मैं अपनी नींद जो है वीकेंड संडे को पूरी करती हूँ एंड आई मेक श्योर दैट आई हैव 1 fruit अ डे. इट्स लाइक आई लव टू ईट फ्रूट सो दैट इज वन थिंग. एंड यस आई वेक अप एवरी सिंगल डे एट 5 o'clock.
13: Wow, do you need alarm for that? Ya fir nahi.
12: नहीं बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज नाउ द बॉडी क्लॉक हैज अडैप्टेड इन दैट वे.
13: तो बिना अलार्म के भी आप एग्जैक्ट 5 AM जाग जाती हैं? इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, यू से कि संडे को आप अपनी नींद पूरी करती हैं, तो संडे को कितने बजे जागती हैं?
12: संडे को इट्स अराउंड 10 o'clock.
13: ओके, सो यू हैव यू नो ट्रेन्ड योर बॉडी एंड योर माइंड दैट वे कि संडे को यू डोंट वेक अप एट 5.
12: नो
13: दैट्स गुड. या
14: अमेजिंग,
13: थैंक गॉड इनको एटलीस्ट वीकेंड में नींद पूरी होने का मौका तो मिलता है ना.
12: But that is also if in case I do not have any work schedule या फिर friends के साथ meetup वगैरह नहीं है. Because I love to explore sunrises, I love to watch go to beaches and watch the sunrises. So अगर वो plan बन गया तो वो भी cancel.
13: Okay, and by your stories, oh sorry, not your stories, the routine that you're telling us, मुझे ऐसा लग रहा है you don't have kids. And I guess that's the...
12: I'm single.
13: That's the main reason you get to sleep on Sunday. Till 10 a.m.
12: I enjoy my single life.
13: बहन जब तक मौका मिल रहा है ये संडे वाली जो नींद है ना enjoy कर लो. जो आपकी लाइफ में ये परिवर्तन आएगा जब भी you feel like having that change in your life ना, ये संडे वाली नींद तो छोड़ो. पूरी की पूरी नींद साइकिल आपकी ऐसी हो जाएगी कुछ समझ में नहीं आएगा. But thank you so much आपके कॉल के लिए. Thank you. I really enjoyed talking to you. Thank you.
12: Thank you. Bye.
13: Bye. तो इनका इन्होंने बताया ऐसे सिस्टम मतलब अडेप्ट हो चुका है. मंडे टू सैटरडे आई फील 5 AM शार्प उठ जाती विदाउट अलार्म. संडे शी हैज ट्रेन्ड हरसेल्फ दैट शी गेट्स अ बिट एक्स्ट्रा रेस्ट. और एक फ्रूट एवरी सिंगल डे. नाइस, वेरी नाइस.
14: तो आप
13: सॉरी
14: आपका जो रूटीन है वो भी आप हमें बता सकते हैं या रूटीन के कुछ हिस्से जो है वो आप बता सकते हैं. कितने स्टेप्स आप एक दिन में कर लेते हैं?
13: डज एनीवन एक्चुअली, आई मीन आई थिंक पीपल डू. एक ट्रेंड हुआ था ना एक बीच में 10K steps per day होने चाहिए. उस टाइम पे तो भाई ऐसा लगता था सभी गए हैं स्मार्ट वॉचेस लेने, फिटबिट लेने, ताकि अपने स्टेप्स को मॉनिटर कर सके और कितने स्टेप्स पर डे किए, कितने स्टेप्स हो गए, कितने स्टेप्स बाकी, ये सारे लोग मॉनिटर करते थे एक टाइम पे. नॉट रियली श्योर इफ इट्स स्टिल देयर इन द एरिया. गुड मॉर्निंग.
15: मॉर्निंग पूजा एंड विजय.
13: मॉर्निंग जी, कैसी हो आप?
15: ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
13: एकदम बढ़िया. आप बताइए, पूरा रूटीन के बारे में बताएंगे कि थोड़ा थोड़ा?
15: मैं पूरा बताऊंगी. फ्रॉम मंडे टू संडे आई वेक अप एट 2:30 AM.
13: हे भगवान.
14: ओके.
15: हाँ, एंड देन आई हैव शावर, देन आई चांट, एंड देन आई कुक लंच फॉर माय सन, एंड देन आई गो फॉर माय टीचिंग, एंड देन ही गोस टू स्कूल.
13: सो बाय प्रोफेशन यू आर अ टीचर?
15: Yes, a healthcare lecturer.
13: Okay. 2:30 mm-hmm. आप जागती है तो आप सोती कब है?
15: I sleep sometimes 10-11 paper mark करना पड़ता है ना
13: प्रभु मेरे को.
15: Because I was a back in Fiji, I was a physiotherapist, so I used to be on call all the time. So my body has become used to it.
13: पर मुझे आपका रूटीन सुन के नींद आना शुरू हो गया कि यार ये इतना कैसे जागती है. लाइक लिटरली आई कांट. मैं एक दिन इवन वन डे इफ आई एम अवेक चलो टिल 11 or 11:30, अगली सुबह या स्टूडियोज में जो शांति होती है ना तो आप खुद ब खुद बंद हो जाना शुरू हो जाता है. बट यू वेक अप एट 2:30 एवरी मॉर्निंग?
15: Yes, एकदम बिना अलार्म के. It's just like my body set.
13: मेरे तो 5-6 अलार्म ऑफ कर करके सोने पड़ते फिर दो पैरे वाला एक अलार्म भी आकर मुझे जगाता है तब जाकर मेरी आँख खुलती है.
15: So like I do like exercises as well. I have every day I take like 1 hour in the morning from 5 to 6 Pilates I do.
13: हम तो 4 घंटे बैठे रहते यहाँ स्टूडियो में, फिर स्टूडियो से बाहर जाकर फिर 4 घंटे बैठे रहते, फिर आधा घंटा बैठ कर घर जाते, घर पे जाके फिर बैठ जाते.
14: हम नहीं,
15: My son has the same routine. Like he wakes up 6 o'clock, catches 2 buses to school. So he's in high school, so he also sleeps like 11 or something studying. Then he wakes up 6 o'clock. and showers, prays, and then I drop him to school after breakfast.
13: So it's basically, you know, the routine you've been following. आपको देख-देख कर वो discipline सीख रहे हैं ना?
15: हाँ, उसको मैंने छोटा से routine वैसे किया था.
13: Which is very good, yeah. Thank you so much, यार, आपके call के लिए. आपका नाम क्या, by the way?
15: विजय.
13: अरे विजय.
16: हाय
13: विजय, मीट विजय.
15: यस, आई वाज लिसन टू योर प्रोग्राम, इट्स रियली नाइस.
13: पहली बार भाई आपने कॉल किया ना?
15: हाँ जी.
13: थैंक यू सो मच. ऐसे बार बार कॉल कीजिए. ओके, अच्छा लगता है आपसे बातें करके.
15: Thank you, Pooja. You have a great weekend. You and Vijay have a great weekend.
13: You too. And happy Fiji Day in advance.
15: Oh, same to you. Happy Fiji Day.
13: Thank you. Bye. Good morning.
17: Good morning, Vijay bhai.
16: Hey, good morning.
13: Vijay, मुझे अच्छा लगा इनका good morning.
16: और सब सेट है.
13: राइट है.
17: सेट ही चाहिए. राइट ही चाहिए.
16: बताओ भाई.
17: तो भाई मेरा ऐसा है कि अभी बच्चों की चल रही छुट्टियां.
16: हाँ.
17: तो कोई पता नहीं रात के 2 बजे भी लीगो बना रहे होते हैं.
13: लेगो लेगो. दो बजे बना रहे होते हैं.
17: हाँ, लेगो सब चलता है. हाँ, सारा दिन रात बस यही चल रहा है.
16: आप क्या कर रहे होते हैं?
17: फुल मूड ऑन छुट्टी. बस बच्चों के साथ
13: वो लेगो बना रहे थे, बैठ के देख रहे होते.
17: देखना पड़ता है क्योंकि वो छोटी है एक मेरी.
13: हाँ.
17: तो वो ताकि वो मुंह में कुछ ले ना जाए.
13: हाँ.
17: वो तीनों बच्चे एक साथ बैठ के.
16: हाँ.
17: पूरी रात भर यही चलता है कि अगर आप बोर हो रहे हैं पापा कोई मूवी लगाओ.
13: हाँ.
17: और जब मूवी देखना शुरू होता है एक एक करके सो जाता है, फिर एक एक करके लेके जाओ. अगर गलती से थोड़ा कोई जल्दी बीच में इधर उधर उठ गया तो दूसरा भी वेकअप हो जाएगा.
16: दूसरा भी उठ जाएगा.
17: तो बस उनको सुलाते सुलाते सुबह हो जाती है. बस
13: बस.
16: श्रीमती जी का होती है?
17: श्रीमती जी स्लीप कर रही हैं.
16: अच्छा.
17: बोले आप संभालो, अब छुट्टियां हैं.
13: डैड की ड्यूटी है ना.
16: ओके.
13: डैड ऑन ड्यूटी.
17: ड्यूटी है और उसके बाद मॉर्निंग भी ड्यूटी है. कि चाय बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ. बच्चे हैं देखो, आप आपको पता चले कि क्या खाना चाहते हैं.
13: है.
17: क्या नहीं, आप कह देते हो कि ये खाते नहीं है, खिलाओ.
13: दैट्स नाइस.
16: फिर उसके बच्चों को खिला पिला के उसके बाद क्या करते हैं?
17: डिमांड ही पूरी नहीं होती है भाई. सारा दिन आज कौन से पार्क में जाएंगे, आज कौन सा कुछ करेंगे, आज स्विमिंग करनी है, आज अगर नहीं बाहर लेके जा रहे तो घर पे बताओ क्या करना है.
16: अभी आपने भी छुट्टी ली हुई
17: मतलब,
16: है?
17: मैं तो बहुत टाइम से छुट्टी में हूँ, पिछले 2 साल से छुट्टी पे हूँ.
16: अच्छा, चलो ठीक है भाई, कम से कम आप छुट्टी पर तो हैं.
17: बिल्कुल जी,
16: घर पर हैं.
13: बट ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है जो ये बोल रहे हैं, टू कीप द किड्स एंटरटेन्ड एंड बिजी.
16: वो थोड़ी देर में उब जाते हैं ना.
13: हाँ, और ये जो बोल रहे हैं मेक सेंस.
17: शायद दिन के 24 घंटे भी मेरे को लग रहा है कम है. वो ऑल द टाइम बैटरी फुल चार्ज रहती है उनकी. हमें लगता है कि दिन थोड़ा और बड़ा होना चाहिए ताकि हमें समय मिल जाए खुद के लिए.
13: एग्जैक्टली. लाइक उनका पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आती है, समझ में नहीं आता. और स्पेशली अराउंड द स्कूल हॉलीडेज, क्योंकि उनके पास स्कूल के टाइम का कुछ नहीं होता करने को, तो वो एक चीज होती है जहाँ पर दे वांट टू कीप देम, आई मीन यू हैव टू कीप देमसेल्फ्स बिजी ना. उतना भी स्कूल टाइम जो नॉर्मली निकल जाता है, तो उस दौरान क्या क्या कैसे करे कितना करे समझ में भी नहीं आता. बट हैट्स ऑफ टू यू सर कि आप ये कर रहे हो, बच्चों को लेगो खिला रहे हो, खिला पिला रहे हो और उनको बिजी रख रहे हो. बिकॉज इट्स गुड दैट दे आर एंजॉयिंग देयर हॉलिडे ना.
17: अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली लाइक पीपल क्या करते हैं कि अपना फोन देते हैं भाई पकड़ो. हाँ. मैं फोन को दूर रखने के लिए ताकि उनके साथ अटैचमेंट रहे सही, कि जो भी कुछ है मैं एक एक पल बिताना चाहता हूँ उनके साथ.
13: वाओ, दैट्स सो स्वीट यार.
16: रियली स्वीट.
13: दैट इज अमेजिंग.
16: थैंक यू सो मच भाई.
13: थैंक यू आपके कॉल के लिए. वेरी नाइस. बहुत अच्छा लगा बातें करके आपसे जी. थैंक यू. शुक्रिया. इनका नाम पूछना भूल गई मैं.
16: अच्छा, कोई बात नहीं.
13: एंड चलो आज तो मजा आ गया यार. जितने भी हमारे कॉलेज थे सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा. एंड आई मस्ट से अलग अलग रूटीन, अलग अलग तरीके से लोग अपना यू नो टाइम जो ये स्पेंड करते हैं. बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड टॉकिंग टू अस. बट इफ़ यू हैव गॉट एनीथिंग टू शेयर अबाउट योर रूटीन, तो आप हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं ऑन 5599. और याद रखिए, बाय द वे, आज हमने कहा था ना फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में $1000 कैश जीत सकते हैं आप, ऑल थैंक्स टू फॉर्च्यून. तो ये कब रहेगा जानने के लिए सुनते रहिए.
18: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड, गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम.
19: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Accurate traffic.
3: Sit back and save lives.
4: A fine day all day, just some cloud at times, lots of sun, a high of 21. Not much traffic, just some here and there. Southern, slow Mount Wellington to the city. Otherwise, we're fairly quick. 26 minutes, Monaco to town is not bad at all. Northwestern, 22 and from Massey, speedy 2. Slow patches from Point Sheep to Grey Lynn. Northern, just a bit slow at Esmond. And a bit of traffic overall, 21 minutes in from Constellation.
3: Every blood donation could save up to 3 lives. Book now, New Zealand Blood Service.
5: You know a restaurant's good when you can't get a table for 3 weeks. Just like it's a great sign if a specialist is booked till next month. And if a builder can't fit you in till the summer, you know it's probably worth the wait. So when we tell you that Diocesan School for Girls is generally booked 2 years ahead, that should tell you everything you need to know. So if you're thinking about what's next for your daughter, join us at our open day on Thursday, the 22nd of October from 9 till 11am. Register at diocesan.school.nz.
6: Tick off your spring to-do list for less at Mitre 10. Save $50 on selected 10-litre solar guard exterior and roof paint. And get growing with 3 10-centimetre herb plants for just $18. T's and C's apply. Shop now at Mitre 10.
7: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2. 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
8: Now when you're on the loop with ANZ and take the train, money loops back. Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT trains with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
9: Weber barbecue sales almost never happen, so don't miss this one. Join us at Auckland's only Weber store for our massive birthday sale this weekend. Get hands-on with the complete 2026 range, the new Weber Spirits, the upgraded Genesis range, and every colour of New Zealand's favourite barbecue, the Weber Q. The grills are blazing, the savings are real. See you at Weber Store, 86 Lun Ave, Mount Wellington. Sale finishes Monday.
0: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and Solicitors. Papatoy and Hamilton.
10: 19 मिनट रह गए हैं अभी 8 बजने में या 9 बजने में 9 पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए इस प्रोग्राम में हम लेकर आएंगे कई अन्य चीजें हो रही हैं जिन पर डिटेल्स जो है ये बारी-बारी से आपको हम देते रहते हैं बॉलीवुड में भी तमाम चीजें आ रही हैं खबरें आ रही हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और साथ में जो पति हैं उनके
11: राजकुंद्रा
10: हां उनके खिलाफ कदम जो है ये उठाया है एंड उनको ब्लॉक कर दिया है फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रैवल उन पर 60 करोड़ रुपए का फ्रॉड केस जो है ये चल रहा है और उसी केस से रिलेटेड ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो है ये लागू किए गए हैं उधर सलमान खान ने जो जराई फिटनेस डिस्प्यूट है उसे सेटल कर लिया है रिजॉल्व कर लिया है 7.24 करोड़ का और अपना जो अपील अपनी जो अपील है उसे भी विथड्रॉ कर लिया है और तमाम अन्य चीज़ें जो हो रही हैं ये भी हम आपको बताते रहेंगे डायरेक्टर मोहित सूरी जो हैं इन्हें कन्फर्म किया है कि वो यशराज फिल्म्स के साथ बातें कर रहे हैं फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट सैयारा के बाद नोटिंग दैट आदित्य चोपड़ा प्रेडिक्टेड द फिल्म विल क्रॉस 100 crores आफ्टर व्यूइंग ए रफ एडिट
11: ओके तो और भी अपडेट्स आपके लिए डेफिनेटली हम लेकर आते रहेंगे इट्स 18 मिनट्स अवे फ्रॉम 9 फॉर नाउ और आपको दे रहे हैं चलिए आज का हमारा दूसरा मौका दिवाली के इस खास मौके पर फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं 30th of October को हम ड्रॉ करने वाले हैं हमारे फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून के जो प्राइजेस हैं इसका और $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली आप जबकि जीत सकते हैं तो इस बार हमने कहा था $1,000 कैश जीतने का मौका ऑल थैंक्स टू फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एसेंशियल vitamins. Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. Terms and conditions ke liye around this promotion, aap hum.over.nz visit kar sakte hain. And remember, jab bhi aap message karte hain, to standard carrier rates apply. Now, agar aap $1,000 cash jeetna chahte hain, to iske liye apni entry ab aapko send karni hogi. The next song is 5 minutes 30 seconds ka, aur itna hi time aapko hum de rahe hain filhal.
10: To aapko karna kya hai? Likhna hai fortune, uske baad apna naam aur kis shahar, kis city, kis town se aap hume sun rahe hain, chahe 104.2 FM par ya Rova par, you are eligible to take part. Aap jahan kahin bhi New Zealand mein rehte hain, chinta ki koi baat hi nahi, bas aap sun rahe hain, that's more important. Agar aapka naam draw se nikalta hai, to ye $1,000 aapke bank account mein jama kar diye jayenge.
11: Right, to ye mauka aapko hum de rahe hain, kahin se bhi in New Zealand aap participate kijiye, and if you are the winner, to ye $1,000 aapke ho jayenge. So in the next 5 minutes 30 seconds, write fortune, FORTUNE space, aapka naam aur aapka location, 5599 par aapko send karna hai hamare paas.
12: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: तो आज सुपर सिटी ऑकलैंड में मौसम के बारे में बताया गया है कि सुबह के समय और फिर रात के समय या शाम के समय, माफ कीजिएगा, थोड़े बहुत बादल छाए रहेंगे. अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ गुड वेदर, नाइस वेदर टू एंजॉय आउटसाइड. 7:33 पर होगा आज का सनसेट. 16.6 डिग्रीज है करंट टेम्परेचर.
0: विद वीजे एंड पूजा,
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून, विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एट हैरिंगटन लिविंग मोनाको. बिग ऑन स्टाइल, ग्रेट ऑन प्राइस, परफेक्ट फॉर योर home, Harrington Living Monaco.
3: What's going on? क्या बकते हो?
4: अरे कहना क्या चाहते हो?
1: तो आज की क्या बकते हो स्टोरी, दिस इज नॉट जस्ट समथिंग कि आपको क्या बकते हो बोलने पर मजबूर कर दे, लेकिन साथ ही साथ दिस इज समथिंग जिसके जरिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये भी कायम किया गया है. ना ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2027 के लिए है, एंड इट्स द ब्रैंड न्यू फीचर जहाँ पर एक लेटेस्ट एडिशन जो है ये हुआ है. और ये एडिशन इज़ नॉट ऑफ अ न्यू नेम, बल्कि इट्स बेसिकली ऑफ समवन जिन्होंने अपना जो यू कह सकते हैं कि पोजीशन है ये रिक्लेम किया है, एज इन कि इन्होंने इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मेंटेन किया है. और इनका नाम है लिया शुक्तकेवा. लिया शुक्तकेवा जो है ये दरअसल एक प्रोफेशनल ईटा है और ये एक इन्फ्लुएंसर भी हैं. और इनके जल्दी जल्दी खाने के जो रिकॉर्ड्स हैं, इनके पास करीबन 42 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे टाइटल्स इनके पास. शी इज़ अ स्पीड ईटर, बहुत फास्ट, ये कुछ भी आप इनको दे दो बहुत फास्ट ये मंच डाउन करती हैं. और इसी वजह से इनको एक मौका मिला गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम शामिल कराने का. एक बुरीटो जो होता है, आपको पता है बुरीटो क्या है?
5: नहीं.
1: इट्स लाइक जो टोटीला होता है.
5: हाँ.
1: तो उसके अंदर बीन्स होते हैं, जैसे कि
5: किडनी
1: बीन्स होते हैं, कॉर्न होता है, फिर किसी तरह का प्रोटीन होता है, बहुत सारा सैलड होता है, उन सारी चीजों को एक साथ डालकर उसको रैप कर उसको बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड अ बुरीटो. एंड इट्स क्वाइट अ हैवी थिंग. ऐसे नहीं कि आप एक पूरा खाओगे नील स्टिल भी हंगरी, इट्स सो फुलिंग कि आपको एक के बाद वैसे तो भूख भी नहीं लगी. और काफ़ी ऐसे व्हेन यू रैप इट बिकम्स क्वाइट ह्यूज, तो आपको ऐसे जगह जगह से छोटे छोटे बाइट्स लेने होते हैं टू फिनिश इट. नाउ ये होल बड़ा साइज बुरीटो जो है, लिया ने इस पूरे बुरीटो को फिनिश किया इन 30.75 सेकेंड्स.
5: 30.75 सेकेंड्स,
1: लेस देन अ मिनट में इन्होंने ये पूरा बरीटो जो है पूरा का पूरा, दैट्स दिस बिग इन लेंथ और दिस वाइड इन साइज, ये पूरा का पूरा इन्होंने 30.75 सेकेंड्स में खा लिया.
5: वाकई.

0: चीज जो शायद मैं खा सकती हूँ विद इन सेकंड्स में वुड बी पानी पूरी. वो मुंह के अंदर जाते ही यू जस्ट कैन फिनिश इट, यू नो. दैट्स समथिंग आई लव ईटिंग. तो एनीवेज ये है आज का हमारा क्या बकते हो स्टोरी. व्हेन आई सॉ हर ईटिंग आई एक्चुअली वाज लाइक कि माय गॉड ये कितना यू नो कमाल का टैलेंट है इनका. सब नहीं कर सकते ये, एंड लिटरली सब नहीं कर सकते ये. बट आप ये ट्राई मत कीजिएगा. इट्स नॉट अ सेफ थिंग टू डू एज वेल ना. यू कैन चोक ऑन योर फूड.
1: या उतना उतनी तेजी से तो नहीं खा सकते. दूसरी तरफ आपने कहा पानी पूरी आप खा सकती हैं, समोसे खा सकती हैं इतने फास्ट.
0: उतना फास्ट नहीं खा सकती. डिपेंड्स ऑन द समोसा साइज.
1: पानी पूरी और समोसा.
0: पानी पूरी. आई एम पानी पूरी टाइप्स या नॉट समोसा.
1: ओके नाइस.
0: I like pani puri more. And what about you? Pani puri or samosa?
1: Samosa, samosa. Any day. I don't even touch. I just touch the pani. I don't touch the samosa.
0: Wo kya puri, puri.
1: हाँ puri
0: नहीं खाते आप.
1: और उसके अंदर जो filling होती है.
0: हाँ. वो नहीं खाते. खाना पसंद करते हैं. सिर्फ pani पसंद करते हैं.
1: चना और क्या क्या होता है. आलू and all those things. I don't eat it. I just like the तीखा pani.
0: Okay.
1: The spicy one.
0: राइट तो आप ही बता सकते हैं. आज हमने सुबह सुबह एक अलग कॉम्बिनेशन कॉन्वर्सेशन छेड़ दिया है. पानी पूरी और समोसा. तो ये आप हमें बता सकते हैं. व्हाट इज योर प्रेफरेंस. लाइक मैंने तो बता दिया आई लाइक पानी पूरी. ही हैज सेड ही लाइक समोसा मो. तो हम दोनों ने अपने अपने फेवरेट्स चूज कर लिए हैं. आप अपना वोट दीजिए. पानी पूरी और समोसा. व्हाट वुड यू एक्चुअली गो फॉर.
1: समोसा विल विन.
0: लेट्स सी. आई थिंक पानी पूरी का भी अच्छा है वो यार चैन से जीतने का. अ लॉट ऑफ पीपल लव पानी पूरी. बट लेट्स सी अभी क्या करते हैं कि पहले दो गाने जब तक बजेंगे तब तक हम आपके जो एंट्रीज है इनवाइट कर रहे हैं. एंड विद इन दैट टाइम जब तक कि पहले दो गाने बज रहे हैं उसके बाद जैसे ही हम जाएंगे ऑन एयर विल सी कि किसकी जीत हुई है. कमाल तो तब होगा अगर कोई ना मैसेज करे.
1: नहीं नहीं करेंगे करेंगे. पानी पूरी और समोसा ना.
0: पानी पूरी और समोसा. लेट्स
1: पानी पूरी वाले टेक्स्ट करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता. समोसे वाले करेंगे.
0: अच्छा देखते हैं.
1: मुझे भरोसा है समोसे वालों पर.
0: देखते हैं देखते हैं. चलो जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ 5599 पर. अपना नाम लिखना मत भूलिएगा. बताना है आपको व्हाट इज योर प्रेफरेंस. व्हाट वुड यू लव टू हैव. पानी पूरी और समोसा.

0: 16 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर हमारी स्टूडियोज में, और हमने कहा था कि इस गाने के खत्म होने के बाद विल सी द रिजल्ट्स। आपके बहुत सबने इनवाइट किए थे, तो मैसेजेस आ चुके हैं, वोट भी आ चुका है, रिवील भी हो चुका है, बट या राइट फाइन ऑल गुड,
1: या राइट फाइन ऑल गुड,
0: ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना इसीलिए।
1: हाँ हाँ,
0: तो 42% जो है वोट्स आए हैं फॉर पानीपुरी एंड 58% वोट्स जो है आए हैं फॉर समोसा। तो समोसा के लिए
1: समोसा थोड़ा और ऊपर जाएगा, क्योंकि स्वरण ने कहा एक नहीं दो समोसे
0: एक कचौड़ी दो समोसा, रिमेम्बर
1: ना,
0: मेरे सिर में दर्द है इसका कारण मर्द है। You don't know this one either. Oh my God. Anyways, कई messages जो हमारे पास आए हैं जहाँ पर बड़ा प्यार दिखा रहे हैं लोग अपने फेवरेट स्नैक के लिए। भविक ने तो सबसे पहले लिखा था पानीपुरी, but unfortunately भविक हमारी तो हार हो गई।
1: Yeah, losing team.
0: किरण ने कहा है पानीपुरी एनी टाइम इन मुंबई, they have five पानीपुरी सो यमी, मतलब पांच ऑप्शंस होते हैं, दो नहीं होता है, हाँ। सिर्फ मीठा तीखा नहीं, लाइक देयर फाइव डिफरेंट ऑप्शंस किरण ने
1: कहा। यहाँ भी लेकर आए थे इतने सारे ऑप्शंस, वो ना गोविंद,
0: ओ हाँ गोविंद लेकर आए थे, गोविंद द शेफ या हाँ। अभी सलेश ने कहा है समोसा, पुष्पा जी ने कहा पानीपुरी, सासो मासा ये काउंट नहीं होगा, सासो मासा थोड़ी ना कोई चीज है।
1: Someone got really excited, man.
0: समोसा के नाम पे मतलब इतनी खुशी कि स्पेलिंग ही गलत आ गया, बट ये ज्यादा अच्छा नाम है डिश का ना, सासो मासा।
1: कुछ नया
0: पानीपुरी साक्षी ने कहा है, जाकिया ने भी सासो मासा कहा,
1: वही जाकिया ने पहले भी मैसेज किया
0: जाकिया Nice, yeah. You made me laugh, Zakia. Thank you so much. I needed it. और निकिता ने कहा है पानी पूरी विद रगड़ा, द मुंबई स्टाइल, मुंबई स्टाइल,
1: मुंबई
0: मुंबई
1: ये रगड़ा क्या होता है?
0: पानी रगड़ा इज लाइक, अरे यार मैं कैसे बताऊँ आपको, चना होता है आई थिंक, या दाल होती है किसी तरह का, वो ऐसे थोड़ा लिक्विडी तरीके से होता है, वो पानी पूरी के पूरी में डाल के खाते हैं।
1: ओह ओके, नॉट
0: इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक दैट इज रगड़ा, रगड़ा पैटीज उसमें ये जाता है ना। और उसके साथ सुनंदो ने भी कहा है समोसा, पर द बेस्ट वन वाज सासो मासा, आई थिंक सासो मासा विंस। एनीवेज, तो थैंक यू सो मच आपके वोट्स के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट्स गोइंग ऑन जारी है, एंड नाउ लेट्स फाइंड आउट आज आपके लिए जो गेम लेकर आ रहे हैं।
2: व्हाट्स अप ऑकलैंड,
1: बहुत सारी चीजें हो रही हैं हमारी कम्युनिटी में। श्री राम कृष्ण मंदिर पर 25 ओंस लॉ ऑफ मैरिकॉम में इसी संडे से नवरात्रि का पर्व शुरू हो जाएगा। ट्यूसडे 20 अक्टूबर तक चलेगा। गरबा और डांडिया रास हर दिन कथा के बाद होगा।
0: श्री हनुमान मंदिर 14 बे पार्क प्लेस बर्गडेल नोट शो में 6:15 PM से यहाँ पर आप नवरात्रि में पार्ट ले सकते हैं हर रात। और डीजे गरबा जो है ये 8:10 PM से लेकर 9:30 PM तक रहेगा। और साथ में 18 अक्टूबर को 6:30 PM से भजन जैमिंग डीजे गरबा जो है ये होगा।
1: नवरात्रि का पर्व श्री आदिशक्ति दुर्गा माता मंदिर 38A वॉम्सली रोड ओटाहूहू में मनाया जाएगा इसी रविवार से 20 अक्टूबर तक।
0: और साथ में दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट, इनकी ओर से संडे 11 अक्टूबर से लेकर ट्यूजडे 20 अक्टूबर तक 6:30 PM से हर रोज आप शामिल हो सकते हैं नवरात्रि के इस पर्व के सेलिब्रेशन के मौके पर। द केव 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मैनिकाउ, विच इज राइट ऑपोजिट वे हाउस, यहाँ जाकर आप इसमें भाग ले सकते हैं। और यहाँ पर हर कथा के बाद गरबा डांडिया एंड हुड्डा तासा का मजा जो है ये भी आप उठा सकते हैं। बाय द वे आपको याद दिला दे, द बी आर अम्बेडकर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब ये होस्ट करने वाले हैं 34th एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टूर्नामेंट। ये रहेगा 24th एंड 25th ऑफ अक्टूबर को, और ये दो दिन का इवेंट होने जा रहा है जहाँ पर देल बी रेंज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन एंड इवेंट्स, जैसे कबड्डी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल, इनफैक्ट टग ऑफ वॉर जैसे जो कॉम्पिटिशन है ये भी होंगे। एंड देर इज ऑल्सो प्लेंटी ऑफ फन एक्टिविटीज बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, इंक्लूडिंग लेमन एंड स्पून रेसेस, म्यूजिकल चेयर्स एंड बच्चों के भी कुछ रेसेस यहाँ पर होंगे। एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन टू अटेंड, बट इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट किसी भी स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन में, इसमें रजिस्टर होने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए ये भी बिल्कुल फ्री है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, बट रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। सो इफ यू वांट टू रजिस्टर और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप कॉल कीजिए प्रदीप को 021-238-5948 पर, रिमेंबर 021-238-5948 पर।
1: न्यूजीलैंड संगम द्वारा 2026 पेट्रासी पूजा जो है ये होगी कल सुबह या कल वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापाटोयटोय में सुबह 9 बजे झंडा बंधन होगा, दिन में 12 बजे पूजा होगी, शाम 6 बजे सप्रम यात्रा 44 सिक्किम क्रेसेंट क्लोवर पार्क से वैदिक सेंटर तक, रात 8 बजे गुलगुला पूजा और फिर यहाँ पर 9 बजे प्रसाद और भोजन का भी प्रबंध रहेगा। तिरुकुट्टू होगा ऑकलैंड तिरुकुट्टू ग्रुप द्वारा, जिसमें स्टील मंत्री जो है ये भी शामिल रहेंगे, तो आप जाकर इसमें जरूर हिस्सा ले सकते हैं।
0: फिलहाल 22 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर, टुडे इज फ्राइडे 9th of October, और अगर आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जो आप चाहें कि हम उनके बारे में बातें करें, लोगों तक जानकारियां पहुंचाएं ताकि वो भी इसका हिस्सा बन सके, तो याद रहे अपने इवेंट्स से रिलेटेड डिटेल्स आप हमारे पास ईमेल कीजिएगा buzz@humfm.com पर, buzz@humfm.com पर।
2: Mornings made better.
3: Two frienda, char toast, butter jam, and a special chai.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम,
6: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है,
6: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
5: दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years।
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927-99439 और विजिट legalassociates.co.nz।
11: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 140cc quality lawnmowers, just $249. Cordless leaf blower and battery, just $70. Cordless weed eater and battery, just $70. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
12: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं। लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
13: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800-564-424।
14: Yeah, I love New Zealand. I do.
15: I really do. But it feels like I'm working harder than I ever have just to get by.
16: Just to get a decent shot at life.
17: Living in my 7th rental and still saving for a house deposit. And every day I meet people avoiding the doctor because of the cost.
18: The cost of living's a joke. Try running a business.
19: I just want someone who thinks about people like me.
20: Party vote Labour.
21: Party vote Labour.
22: Party vote Labour.
23: Party vote Labour.
24: Better starts now.
25: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace, Wellington.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
26: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
2: What's going on?
1: फिलहाल 24 मिनट रह गए हैं 10 बजने में, और आपको पता है कल फिजी का जो इंडिपेंडेंस डे है ये सेलिब्रेट किया जाएगा। जो इंडिजिनस ईथो के ही हैं फिजी के, दे ट्रेस देयर रूट्स बैक टू अराउंड 3500 ईयर्स अगो, और लगभग 4-5 हज़ार साल पहले ऑस्ट्रोनेशियन स्पीकिंग पीपल जो है दे बिगिन माइग्रेटिंग आउट ऑफ ईस्ट एशिया, प्राइमरी एरियाज जो है ताइवान, साउथ ईस्ट एशिया, और डबल हल्ट जो आउट्रिगर कनूस हैं ये इस्तेमाल करते थे वो, एंड दे एक्सपेंडेड इनटू आइलैंड साउथ ईस्ट एशिया एंड पास्ट पापुआ न्यू गिनी इनटू द ओपन पैसिफिक। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए कई आइलैंड्स के पास, सोलोमन आइलैंड्स और पापुअन स्पीकिंग मेलिनीजियन पॉपुलेशन से उनकी मुलाकात जो है ये हुई, जो पहले से न्यू गिनी में रह रहे थे एंड आसपास के इलाकों में रह रहे थे फॉर 40,000 ईयर्स। और ओवर सेंचुरीज दीज टू ग्रुप्स इंटरमैरिड, शेयर्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ब्लेंडेड देयर कल्चर्स एंड जेनेटिक लाइनेज, और क्या कहते हैं कि एक टेम है लपीता जिसका आर्कियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं, उनका जो ब्लेंडेड कल्चर जो है ये बन गया एंड स्लोली स्टार्टेड सेटलिंग इनटू फिजी अराउंड 1100 से लेकर 1000 BCE के टाइम पर। दे लेफ्ट बिहाइंड डिस्टिंक्टिव स्टैम्प्ड पॉटरी लपीता वेयर जो की फिजियन साउथ साइट्स पर अभी जो मिले थे बाद में, जैसे कि वितिलेवे में बोरेवा एक जगह है वहाँ पर। इसके अलावा कई अन्य चीज़ें जो है ये की जा रही थी, जो मेरिडियन लाइन है ना, एक टाइम ऐसा था कि अगर फिजी में तव्यूनी एक जगह है, वहाँ पर अगर एक लाइन जो है मेरिडियन लाइन के बारे में आप समझती ना,
0: हाँ जी
1: हाँ, तो क्या होता है कि एक कदम आप आज में रख सकते हैं, एक कदम कल में रख सकते थे
0: एडवांस में,
1: हाँ उस लाइन, क्योंकि एक कदम उस लाइन के उस पार होता। तो टू सिंप्लीफाई लोकल बिजनेस एंड कॉमर्स, फिजी ने फिर अपना जो टाइम है इसे एडजस्ट किया टाइम जोन, सो द एंटायर नेशन रन्स ऑन अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम, बट फिजिकल मार्का कटिंग्स जो हैं थ्रू द आइलैंड अभी भी शायद कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगी। तो वो जगह यू नो इंटरनेशनल डेट लाइन या मेरिडियन लाइन जो है वो होकर गुजरता है।
0: ओके वेरी इंटरेस्टिंग। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो फिजी के बारे में बहुत खूबसूरत है, और इट्स वर्थ सेलिब्रेटिंग एंड टॉकिंग एंड नोइंग द फैक्ट कि कल फिजी डे है। कल ही वो दिन है जब फिजी को अपनी आज़ादी जो है ये मिली थी 10th of October। तो हम आज 9th of October को क्यों मना रहे, बिकॉज कल द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा नहीं होगा ना। सो वी हैव गॉट अ क्वेश्चन, वी हैव गॉट सम टाइम हियर आल्सो, एंड हम आपके कॉल्स जो ये इन्वाइट करना चाहेंगे अगर आप कॉल करना चाहे तो, बट इफ यू डोंट वांट टू कॉल यू कैन एक्चुअली टेक्स्ट अस, और आप हमारे पास 5599 पे टेक्स्ट करते हुए बता सकते हैं। आपको बतानी है अगर आप फिजी से हैं, that one thing that you absolutely miss, क्योंकि वो जो बात थी वो वहाँ पर फिजी में वो यहाँ नहीं है। Not that you are not happy with New Zealand, it's just the thing you miss home, right? तो याद करने के लिए that one thing that you feel like you absolutely can't you know manage without right now, you miss it so much, जो फिजी में आपको इतना अच्छा लगता था और यहाँ पर न्यूजीलैंड में नहीं मिल रहा है या नहीं अवेलेबल है, या फिर कुछ है ऐसी जो चीज़ जो आपको याद दिलाती है फिजी की हर बार। एंड अगर आप कभी भी फिजी नहीं गए हैं, क्या आपको फिजी के किसी एक चीज़ के बारे में कुछ भी पता है? प्रोबेबली एनीथिंग यू नो अबाउट फिजी, किसी एक शहर का नाम, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें किसी एक चीज़ को क्या बोलते हैं, या फिर वहाँ का कुछ खाने का कुछ जो आपको पता हो, एनीथिंग यू नो अबाउट फिजी इफ यू आर नॉट फ्रॉम फिजी, इफ नेवर बीन टू फिजी। सो दो लोगों के लिए है ये सवाल।
1: अच्छा,
0: तो 0800-004-866 पर यू कैन कॉल अस नाउ, और अगर कॉल नहीं कर पाएंगे या कॉल नहीं करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं।
1: तो लेट्स सी, अभी एक मिनट का टाइम दे रहे हैं, विद इन दैट टाइम देखते हैं कोई कॉल करता है या नहीं करता है, फिर उसके बाद देखेंगे।
0: इफ यू आर फ्रॉम फिजी, व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको फिजी के बारे में सबसे ज्यादा याद आती है? इफ यू आर नॉट फ्रॉम फिजी, आप कभी फिजी नहीं गए हैं, तो वो एक चीज जो आपको फिजी के बारे में पता है ये आपको बताना है। इट्स दैट सिंपल। और आप हमारे पास 0800-004-866 पे तो कॉल कर ही सकते हैं, पर कॉल नहीं करना चाहे तो 5599 पे टेक्स्ट कर सकते हैं। रिमेंबर फिजी डे जो है ये मार्क किया जा रहा है कल, यानी 10th of October को, एंड टुडे ऑन द ब्रेकफास्ट शो वी जस्ट फेल्ट लाइक टॉकिंग अबाउट इट, सेलिब्रेटिंग इट विद यू ऑल। धर्मेंद्र जी का बड़ा ही यूनिक मैसेज आया है, बड़ा अलग सा जवाब, ड्रिंकिंग कावा इन द मार्केट, ये मिस करते
1: हैं। ये करते हैं वहाँ लोग ना,
0: बहुत से लोग करते हैं,
1: दे गो टू द वेजिटेबल मार्केट, बड़े बड़े मार्केट लगे होते हैं। हर एक शहर में एंड वहां पर काबा के स्टॉल एंड अ लॉट ऑफ पीपल ड्रिंक
0: एंड इट्स नॉट अ वीकली थिंग कि वंस अ वीक ही होता है यहां पे डेली मार्केट लगता है
1: हां इट्स अ मार्केट मार्केट हर लोग हर दिन लोग आते हैं वेजिटेबल्स बेचने के लिए
0: एक्जेक्टली तो वो एक खास बात है ना फिजी के बारे में अच्छा क्या बात है यार इतने सारे लोग सुनते हाँ? अभी समोसा पानी पूरी कर रहे थे कितने लोगों ने मैसेज किया और इतने सारे लोग सुनते हैं हु आर फ्रॉम फिजी आल्सो तो वो भी कुछ नहीं बोल रहे
1: उन वो शायद कुछ नहीं मिस कर रहे होंगे
0: वहाँ वो भी हो सकता है दे माइट नॉट मिस एनीथिंग ना
1: आप कुछ मिस करती हैं
0: हाँ यार वहाँ के फ्रूट्स बहुत मिस करती हूँ मैं
1: आई जैसे कि
0: जामुन मेरे मुंह पे रखा था आई रियली मिस जामुन आई मीन फैमिली को मिस करना ऑब्वियसली दैट्स लाइक अनस्पोकन ट्रुथ
1: हाँ वो तो हर कोई करता है
0: सबको पता है कि परिवार वालों को आप मिस करते हैं आई मिस माय फैमिली आई मिस माय फैमिली बिकॉज़ मेरा पूरा का पूरा खानदान उधर है अभी सिर्फ मेरी एक बहन इधर है
1: अच्छा ठीक है ठीक
0: है बट ऑन द अदर हैंड आई एम सेइंग लाइक कि अपार्ट फ्रॉम दैट
1: हाँ फैमिली हर कोई मिस करता है
0: आई मिस फ्रूट्स जामुन एंड व्हाइट अमरूद द बिग वन
1: हाँ.
0: वो बहुत मिस करती हूँ
1: okay, धीर ने कहा है फिश पार्सल
0: हाँ नाइस यार
1: या.
0: और रोहित ने कहा है फैमिली थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए ऐसा करते हैं अभी गाने बजा रहे हैं हम
1: उसके बाद
0: मौका देते हैं ना आप मैसेज अपने भेज सकते हैं इफ यू आर फ्रॉम फिजी व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू एब्सोल्युटली मिस और इफ यू आर नॉट फ्रॉम फिजी व्हाट इज दैट वन थिंग यू नो अबाउट फिजी ये आपको हमारे पास टेक्स्ट करके बताना है 5599 पर अपने नाम के साथ
3: Hollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ
6: मैं लाऊं अपना A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: विशाल ददलानी की आवाज में आप सुन रहे थे वन ऑफ द मोस्ट वायरल सॉन्ग्स आई वुड से व्हेन इट रिलीज्ड. अभी उतना ट्रेंड करता है या नहीं, आई एम नॉट रियली श्योर, आई डोंट नो कितने लोगों को अभी पसंद है, बट या जब ये गाना रिलीज हुआ था भाई, इसका तो क्रेज ही अलग लेवल का था. एनीवेज, गेटिंग बैक टू आज का हमारा जो क्वेश्चन हमने पूछा है, इफ यू आर फ्रॉम फिजी, नेम दैट वन थिंग यू मिस अ लॉट, एंड इफ यू हैव नेवर बीन टू फिजी, वन थिंग दैट यू नो अबाउट फिजी, ये आपको हमें बताना है. तो अभी तक तो बस उन लोगों ने मैसेजेस किए हैं जो फिजी का फिजी से हैं और वहाँ की कोई एक चीज़ बहुत मिस करते हैं. नो वन हैज सेड एनीथिंग इफ दे हैव नेवर बीन एंड दे नो वन थिंग अबाउट इट. बट गेटिंग बैक टू दीज मैसेजेस, नीलेश का मैसेज है, इन्होंने कहा है कि आम बहुत मिस करते, लेकिन वो जो पेड़ से लेना, नॉट जो मार्केट में मिलता हो, लाइक खुद तोड़ कर खाना.
1: All right. शाली ने कहा, I miss fresh fruits, watermelon, pineapple,
0: yeah man,
1: popo, bear, mango, guava, coconut water.
0: Coconut water also, yeah, true.
1: ऐसा करो शालीन, आप watermelon, pineapple और popo ये लेने के लिए प्रीतेश को कोई supermarket भेज दो.
0: और यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है. इन्होंने बोला मेरे दिल में दर्द होना शुरू हो गया, लाइक जस्ट 2 weeks बैक आई बॉट वाटरमेलन क्वार्टर पीस फॉर $20, तो मेरे दिल में ऐसे दर्द हो गया. वैसा वाला नहीं मिलता है फिजी में, उतना में नहीं मिलेगा, पूरा वाटरमेलन मिलेगा $20 में. यह पहले मिलता था, नोट जो अभी क्या प्राइस है. एनीवेज, पायल का मैसेज है, इन्होंने कहा आई मिस द फूड, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डजंट टेस्ट द सेम हियर.
1: I'm from Fiji. I miss Hawaiian popo, Chochi's chili chicken, mom's homemade food, especially dalo bhaji. Sharon Sunnyvale से इन्होंने बताया है.
0: Chochi's miss कर रही
1: है. Chochi's में आजकल खाने के साथ और भी काफी कुछ मिल रहा है.
0: और फिजी वाला हॉट ब्रेड बॉबी सिंह ने मैसेज किया, वॉकिंग एयरपोर्ट रनवे इन्होंने कहा है.
1: आप तो एयरपोर्ट पर ही हो,
0: वहाँ पे हॉट ब्रेड नहीं है.
1: हनी
0: जा सकते हैं,
1: लोग आ जा रहे हैं,
0: उनसे मंगा लो ना. या राइट. सैंडी ने कहा, सैंडी हियर, आई मिस माय फिजियन फ्रेंड्स एंड द लाफ्टर. ओह या दैट इज ट्रू मैन, मिस फिजी फिश एंड चिप्स फ्रॉम नंबुकलाउ क्रीक
1: और टेरी वॉक शी मींस,
0: एंड फ्रूबू जूस. या फ्रूबू यहाँ पे मिलता है, बट नॉट ऑलवेज, लाइक
1: कभी
0: कभार मिल जाता है और हर फ्लेवर भी नहीं मिलता है. और एक और एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है I miss the tropical beaches. Here the water is always cold.
1: Also, yeah, that's true.
0: Also created this song for kids to learn some Fijian songs. Bula Fiji on YouTube. आप जाकर check out कर सकते हैं. Yeah, that's nice, man.
1: Yeah.
0: कुछ बहुत अच्छी अच्छी यादें ताजा हो गई, लेकिन अब दुख लगने लगा मेरे को.
1: क्यों?
0: अरे मतलब मेरे को भी तो याद आती है ना. ऐसा नहीं कि नहीं. And of course, there's so many things we all miss. But yeah, क्या कर सकते ना? यहाँ की कुछ चीज़ें हैं, उसका जो अल्टरनेट है उससे काम चला सकते हैं. एंड वेन एवर वी गो बैक होम टू फिजी, तो इन्जॉय कर सकते हैं उन चीज़ों को. बट राइट नाउ आप सभी को अ वेरी हैप्पी फिजी डे इन एडवांस. इट्स टुमारो 10th of October, पर आज हमारे साथ आपने अपने अपने मैसेजेस शेयर किए, उसके लिए थैंक यू सो मच.
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
4: At Bunnings, you can make any home spooky this Halloween with our new range. We've got inflatables, stake lights, and even animatronics. Plus, we've got buckets for the kids trick-or-treating. Come and get more Halloween for less.
5: Bunnings Warehouse.
6: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop. So you can fuel up without slowing your day down. And still earn smiles points on every fill. Mobile Express, let's go.
7: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
8: A lot of injuries happen on the weekend, so if you're out and about, or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
7: दिवाली आई खुशियाँ लाई PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं PFSL के साथ होम लोन करवाएं $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं तो इस दिवाली खुशियाँ बढ़ाएं PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं सर्च PFSL और कॉल ऑनलाइन 8469934 टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई
9: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी guest Sarah.
10: क्या बनाते हैं kebab को special, Chef Alex?
9: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर kebab बनता है with love and passion.
10: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
9: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
10: 100% authentic and pure as mother's love.
11: 3, 2, 1, rush!
12: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
13: Save big at Rebel and get the kids sorted for back to school. Grab a huge range of kids' running shoes for just $69. Get 20% off selected bags and bottles. Plus, score an extra 20% off all clearance. Back to school value is on now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price, perfect for your home, Harrington Living Monaco. What's going on?
0: तो आज का डेली राउंडअप शुरुआत में चलिए आपको बताना चाहेंगे अबाउट होक्स बे के एप्पल ग्रोवर्स जो है जिनका नाम है ऑर्गेनिक एप्पल ग्रोवर के क्रेग डाउलिंग. इन्होंने कहा है कि वो होप कर रहे हैं फॉर अ समर विदाउट मड, लेकिन वो ऑल्सो तैयारी कर रहे हैं फॉर अ वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम विच इज़ एल नीनो. और क्रेग ने कहा है कि वेट वेदर एंड टफ कंडीशंस तो नहीं मिलेगा इस साल समा में, बट ऑफ कोर्स एक हॉट ड्राई समा जो है इसका मतलब ये होता है कि आपको नए चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होता है एज एन एप्पल ग्रोअर. क्रेग ने कहा है कि एल नीनो जो है इसकी वजह से और प्रॉब्लम्स उनके लिए ज़रूर हो सकती है एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट. एल नीनो जो है एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है दैट हैपन्स व्हेन पैसिफिक ओशन बिकम्स वार्मर देन यूजुअल एंड फॉर न्यूजीलैंड इट कैन मीन मोर हॉट ड्राई एंड विंडी conditions जो eastern areas of New Zealand के लिए ज़्यादातर होगा which is Hawke's Bay while some other parts of the country can experience wetter weather. Forecasters ने कहा है कि El Nino conditions expect कर सकते हैं to become more influential through spring and summer with the effects potentially becoming more noticeable from November into summer months.
1: वेरी नाइस. और कैंटरबरी के कुछ इलाके जो है नेक्स्ट वीक यहाँ पर टेम्परेचर कुड गो एज हाई एज 28 degrees. और वो मेयर जो है ये आ रहा है फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, ऑल्दो अनसेटल्ड कंडीशंस जो हैं इसकी वजह से कुछ स्नो भी हो सकता है. मेट सर्विस के मेट्रोलॉजिस्ट हितकीट्स ने बताया है एशबर्टन वाज लाइकली टू रीच 28 degrees, क्राइस्टचर्च नेक्स्ट वीक वेंसडे अराउंड 26 degrees हो सकता है, हेस्टिंग्स कुड क्लाइंब अप टू 27 degrees नेक्स्ट वीक. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर आवर वार्म वीक अहेड.
7: लेट्स गो
2: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. Lock your property's true sale value with NZPMI, your

0: यू बाय 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन। दो बातें।
1: चलिए अब आपसे इजाजत लेने का समय हो गया, जाना है फिलहाल, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ और मैसेजेस आए हैं। इन्होंने कहा है, आई हैव अ लॉट ऑफ इथियोपियन फ्रेंड्स, दे लाइक फैमिली टू मी, आई मिस देम एंड द फूड द लेडीज कुक, आई मीन ट्रेडिशनल फिजियन फूड। सलेश जी ने हापा हट से मैसेज किया है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वॉचिंग माई बार टीम प्लेइंग द IDC। फैंटम ने हमारे पास अपना मैसेज भेजा है।
2: अरे आप तो फैंटम हो।
1: Anyway, thank you आपके मैसेज के लिए guys, thank you।
2: दो बातों का वक्त है। आज की पहली बात, जिंदगी में कुछ ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जो हाल पूछे तो सच बताया जा सके।
1: Oh, nice।
2: और दूसरी बात
1: जी,
2: आप खुश रहिए नहीं तो आपके डॉक्टर खुश रहेंगे।
1: चलिए इन बातों के साथ अब आपसे इजाजत चाहेंगे जाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ और समय के लिए, एंड होपफुली यू गाइस आर ऑल प्रिपेयर्ड। मंडे से स्कूल वापसी कर रहे हैं बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट, एंड नॉट फॉरगेटिंग कि कल फिजी डे भी सेलिब्रेट करने जाएंगे आप सब, तो उसके लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। मंडे को एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, नाउ शार्प 6 AM। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल फ्राइडे, एंजॉय योर वीकेंड।

0: Factor.
1: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi hai
2: My Time with Kashika.
3: स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:03 हो चुके हैं. आपका साथ निभा रही हूँ मैं कर्षिका, ऑल द वे अप टिल मिड डे. और देखो ना आवाज़ में क्या खनक आ जाती है जबकि फ्राइडे का दिन बन जाता है. और फ्राइडे का दिन जब ऐसा बन जाता है तो मन करता है कि कुछ बढ़िया बढ़िया गाने बजाऊँ, कुछ किसी को सेलिब्रेट करूँ. तो भाई वैसे एक बात बता देती हूँ, आई एम अ फैन ऑफ रेखा जी एज वेल, रेखा एक्ट्रेस. एंड इनका बर्थडे कल सेलिब्रेट होने वाला है तो मैंने सोचा क्यों नहीं कुछ एक आध गाने इनके भी बजा डालूं. कोई ऐसा गाना आपको जो वैसे अगर 80s के अगर आपको गाने सुनने ही हैं तो आप हमारे जो जूकबॉक्स है उसके ज़रिए 80s के ट्रैक्स इनकी आवाज़ में बिल्कुल सुन भी सकते हैं. अच्छा ये तो हो गया, लेकिन इसी के साथ साथ यू नो एक और कोई बर्थडे अपना इनके साथ शेयर करता है, एंड दैट्स नॉन अदर देन रकुल प्रीत. तो देखते हैं कि अगर कुछ गाने मेरी नज़र में आए तो डेफिनेटली आई विल ट्राई एंड प्ले दोज सॉन्ग्स फॉर यू. थोड़ी देर बाद हमारा साथ निभाने के लिए कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आ रही हैं रचना, एंड इनसे बातचीत करेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे और साथ साथ थैंक यू करेंगे टू नन अदर देन कशिश फूस, जिनके सौजन्य से आपके लिए मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे के दरमियान ये मुमकिन हो जाता है. और यस आपका मेरा ये सफ़र, इसमें हम ऐड करेंगे फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून. यस इस घंटे पे भी आपके साथ कुछ ज़बरदस्त शेयर करने वाली हूँ. ये इतना मज़ा आता है ना जब ये पीरियड होता है ना फेस्टिविटीज़ का, और जब हम आपको कुछ देते हैं तो वी फील लाइक आर टीम फील लाइक एज इफ वी आर योर सेंटर्स, है ना. ओके चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ती हूँ, गाना बजाती हूँ और ये गाना बजा रही हूँ ऑफ रकुल प्रीत, जिनकी एक मूवी थी सरदार का ग्रैंडसन. आई थिंक शी वॉज ग्रेट इन द मूवी. लेट्स ट्राई एंड प्ले दिस वन.
0: बचाओ क्या

0: Experts Adda.
1: So, मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट मेरे साथ साथ स्टूडियो लाइन पर आ चुकी हैं नन अदर देन इधर उधर से जाने बचना भैया जी संभाल लो क्योंकि आ चुकी है स्टूडियो लाइन पर रचना. रचना गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
2: गुड मॉर्निंग, कैसे हो कशिका जी?
1: आई एम डूइंग वेरी गुड फॉर अ फ्राइडे, इट्स बीन रियली अमेजिंग.
2: And same pins to you too. मैं भी बहुत अमीन.
1: I know. अच्छा मुझे ये बताओ कि हम क्या कर सकते हैं इफ इट्स अ फर्स्ट होम बायर या कोई इन्वेस्टर. डू यू थिंक यू नो, आई एम श्योर यू नो व्हाट डू यू नो दैट के एक होम बायर होता है उसकी क्या जरूरत हो सकती है, व्हाट शुड दे अंडरस्टैंड और नीड टू नो?
2: ओके, सो वेरी अमेजिंगली क्राफ्टेड क्वेश्चन, कुडोस टू यू. सो बेसिकली तो पहले तो बंदे का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि they are in a true mindset to buy a property and they have to be very realistic. Whether you are a first home buyer or a first time investor, pretty much you will be both in a similar boat where it will be a cost driven or a purchase price driven.
1: Right.
2: As far as agar aap investor ho, to agar aap RBNZ exempt properties, jo brand new properties hain, not many people still know ki usko bhi aap, if you have a affordability, of course lending criteria will apply, but still with as little as 10% deposit aap le sakte ho, jo bahut logo ko nahi pata hai. They still think ki as an investor you can only get an investment property with 30% deposit,
1: right.
2: So there is a gap of 20% deposit. To jo bhi listeners hain जो सोच भी रहे हैं कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना है और ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें मास्टर बिल्ड वारंटी होती है, यू नो लेस मेंटेनेंस होता है, आजकल बहुत सारी 6.5-7 lakh में मिल रही है, इजी टेनेंट फाइंड करना इजी है, ये सारी चीजें हैं, तो प्लीज आप मुझे कॉल कीजिए ऑन 0800 रचना, विच इज 0800 722. वी कैन चेक योर अफोर्डेबिलिटी, वेदर यू कैन गेट इन टू योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और नॉट, एंड वी कैन टेल यू दैट वॉट कैन बी योर बोरोइंग कैपेसिटी, एंड वी कैन प्रिपेयर यू टू बिकम एन इन्वेस्टर एट द सेम टाइम. बिकॉज यू आर अ फर्स्ट होम बायर, दिस इज द बेस्ट टाइम नाउ, ओनली 10-12 weeks रिमेनिंग फॉर क्रिसमस. एंड कशिका जी, फॉर इयर्स यू नो की October, November is a peak time because people do want to settle into their own home before Christmas, yeah. And have their school holidays, Christmas celebrations in their new home. So right now is one of the best times that the first home buyers can be vigilant.
1: Yeah.
2: Call me, know your borrowing capacity, because we will know the ways where we can get you even with as little as 5% deposit. Aapke paas genuine savings nahi hai, that's fine, but if we have the borrowing capacity, if terms conditions and criteria you are able to satisfy, to aaj dekho maine aapko itne sare options diye hain. First home buyer, 5% deposit, no genuine savings, you can check your affordability. If you are a first time investor, 10% deposit. And if you want to see your options as an investor, you have got the options available. So, itna aapka double bonanza karwa diya maine aaj.
1: देखो ये तो होना ही होना है, बिकॉज अब दिवाली भी आ रही है, और ऐसे में इतना ही कह सकती हूँ कि जब नवरात्रि आने लगती है, कई लोग अपने नए घर में जाने लगते हैं, या कई लोग प्लान करते हैं कि भाई आज के बाद से हम घर देखना शुरू करेंगे, चाहे वो फर्स्ट होम बायर हो या फिर कोई इन्वेस्टर हो, कहें भाई शगुन होता है भाई कि हम तभी तब कुछ.
2: बिल्कुल
1: है ना,
2: बिल्कुल. एंड इट स्टार्ट्स विद द आइडिया एंड द प्लानिंग, एंड एज यू नो वी नो ईच अदर फॉर लास्ट 12 years, और आपको पता है कि I give my consultations for free. I do give a lot of time and efforts to the home buyers.
1: Yeah.
2: So please don't hesitate. Hamari office address hai level 345 Mount Wellington Highway, Mount Wellington. Aap aake hume mil sakte ho, or call me on 0800 Rachna, which is 0800-722-462, and book your time. Simple.
1: अरे बहुत ही ऑन टू द पॉइंट आपने ये सब बातें की हैं. थैंक यू सो मच फॉर टुडे रचना, एंड आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी. लेकिन जाने से पहले आई वुड लव टू रिपीट दिस अलोंग विद यू कि इधर उधर जाने से बचना,
2: कॉल करो
1: रचना. थैंक यू सो मच रचना.
2: थैंक यू. बाय.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
3: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
4: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
3: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
4: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
3: बस इतना ही।
4: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 एफएम और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
5: Kick breast cancer to the curb and volunteer for the Pink Ribbon Street Appeal this October. Pick a two-hour shift at a time and location that suits you to help the thousands of women diagnosed with breast cancer. Sign up at pinkribbonvolunteer.org.nz.
6: The Cooperative Bank's home loan crew are in the house. Check it. Got that home dream, but don't know where to start? Little KiwiSaver and lots of listings bookmarked. LIMS, LVRs, what does it all mean? Been checking out listings since 2019. Deposit, pre-approval. How much can I borrow? Let's make a plan today for your tomorrow. Talk to the Cooperative Bank's home loan crew. From first questions to front door keys, we got you. T's and C's apply.
7: It's All Go at Weber Store. The four-day spring sale is on. We're Auckland's only Weber Store, a world-class barbecue store unlike anything previously seen in New Zealand, where we exclusively showcase the complete Weber barbecue range with over 50 models on display. Gas to electric, wood pellet to charcoal, we've got the lot. New models, new colours, new capabilities and features with great savings to be had. Get summer ready with our big spring sale, Weber Store, 86 Lun Ave, Mount Wellington.
8: दिवाली आ रही है और फॉर्चून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्चून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्चून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November, टीज एंड सीज अप्लाई।
9: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
10: Save big at Rebel and get the kids sorted for back to school. Grab a huge range of kids running shoes for just $69. Get 20% off selected bags and bottles. Plus score an extra 20% off all clearance. Back to school value is on now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.

0: time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Office shout out.
2: ऑफिस शाउट आउट में मेरे दोस्त वेलिंगटन से सुन रहे हैं. भाई देखिए कितना अच्छा लगता है, ये जो एक फीलिंग आती है ना कि आप यू नो को सुनते हैं. कल जैसे कि आई मेट समबडी एट ये जो दामिनी मूवी का हम लोग यू नो वो देखने गए थे मूवी, अमीनाक्षी शेषाद्री वॉज विद अस. एंड दैट टाइम आई मेट समबडी एंड शी वॉज लाइक Kashika, I've been seeing your reels and I've been, you know, trying to follow your recipes. So, वो जो कशिश की recipes Kashika की kitchen से निकल कर आती हैं, वो आपको पनीर की recipe बहुत पसंद आई. Thank you very, very much. तो जब ये इस तरह से आप हमें encourage करते हैं तो मन करता है और भी कुछ किया जाए. और साथ में Ash from Wellington, आप thank you very much for the encouragement. आपने कहा very happy और आप ही की तरह उन आँखों की मस्ती के दीवाने हम भी हैं. सो हैप्पी टू यू टू. हमने सांता की तरह गिफ्ट की अपॉर्चुनिटी, हमें सांता की तरह गिफ्ट की अपॉर्चुनिटी देने वाली रेखा जी की फ़ैन को सनी और ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग Kashika जी को. Ash, थैंक यू सो मच. सब कुछ कैसे फटाफट लिखते हो या याद कर लेते हो जब मैं कुछ बोलती हूँ? ओके Anyways, thank you so much for this. Coming up next, your Festival of Fortune. इसके लिए आप तैयार हो जाएं. क्या आ रहा है? अब पिटारे में बहुत कुछ होता है ना, फ्राइडे को आता है जल्दी.
0: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
2: One picture का ये गाना.

0: better.
1: Eat better, live better. और इस बार फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून में हम आपके लिए हर साल कुछ ना कुछ खास करते रहते हैं, लेकिन $5,000 के वर्थ हमारे पास वाउचर. और कैसा रहेगा इस महंगाई के ज़माने में जहां हर रोज़ फ्यूल का प्राइस ऊपर चलता ही चला जाता है. ऐसे में इंडेलिबल होम्स ने बहुत ही केयरफुली आपको आपके लिए कुछ प्लान किया है, और वो है फ्यूल वाउचर्स. तो इन्होंने आपको फ्यूल वाउचर्स देने की सोच ली है, और आपको सिर्फ यह क्या करना है, आई एच लिखना है यानी इंडेलिबल होम्स का शॉर्ट फॉर्म. और आपने मुझे बताना है कि आप $1,000 के माउंट लो, एक साथ एक ही बंदे को या बंदी को ये वाउचर जाएगा, ठीक है. ओके, नाउ ये गाना एक जो अब मैं बजाने वाली हूँ तभी तक आपके लिए वैलिड रहेगा. आई एच लिखिए. आपको लिखना है आपके कार का कलर कौन सा है, आप जिस कार में जाते हैं उस कार का कलर कौन सा है, बस आपको यही लिखना है. अपना नाम लिखना है, हम तक पहुंचा देना है. याद रहे, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन समझने के लिए hum.rova.nz पर आप बिल्कुल क्लिक कर सकते हैं. एंड स्टैंडर्ड करियर चार्जेस डू अप्लाई व्हेन यू आर टेक्सटिंग. सो लेट्स गेट ऑन टू अ सॉन्ग जिसमें हेमा मालिनी जी थी, बट जो बर्थडे गर्ल कल रकुल प्रीत हैं उनका बहुत प्यारा सा रोल था इस फिल्म में. शिमला मिर्च.

0: time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: एक बात है, आजकल अगर आप नोट कर रहे हैं तो गाड़ियाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूल वाउचर की जब मैं बात कर रही थी, तो फ्यूल वाउचर से रिलेटेड कार्स के बारे में बात करती हूँ. ये चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, इंटरेस्टिंगली दे आर नॉट कम्पीटिंग विद द टोयोटास राइट नाउ, टेस्लास या ईवीज, बट दे आर एक्चुअली रिप्लेसिंग अदर कार्स ऑन द न्यूजीलैंड रोड्स. अब ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग यू नो प्रेफर कर रहे हैं चीप ईवी कार्स, और उससे क्या हो रहा है कि इसकी जो वैल्यू है धीरे धीरे पेट्रोल पावर्ड फ्लीट से बढ़ती चली जा रही है, और लोगों को लग रहा है ओ माय गॉड अब क्या होने वाला है. सो दे कैन, दे आर रियली वेरी रीजनेबल, एंड अभी तक दे हैव कम अप विद गुड क्वालिटी कार्स. आई थिंक दे हैव बीन टेस्टेड वेल अकॉर्डिंग टू द न्यूजीलैंड यू नो थिंग्स. वो एक ऑटोमोटिव की इंडस्ट्री में एक रिपल सा क्रिएट हो गया कि भाई ये कार्स डायरेक्टली लोग अपने उससे बेच रहे हैं, तो ये यूज्ड कार्स हैं उनसे सस्ती वो पड़ रही हैं. अब ऐसा ही हो रहा है. बट अच्छा, चलो एक काम करते हैं, पहले उनको एक्नॉलेज कर लेते हैं ना जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमें टेक्स्ट भेजा, और साथ साथ उन्होंने ये भी किया कि अपना यू नो डिटेल्स भी भेज दी. सो इंडेलिबल होम्स की ओर से आपके लिए फ्यूल वाउचर के लिए मैं किन किन के नाम ऐड कर रही हूँ. IH लिखना था, पास IH. प्रवीण राज, शैलेश, आपने आई के बाद एक स्पेस देके एच लिखा है. आपका जब हम नाम सर्च करेंगे तो नहीं आ पाएगा. IH लिखिए, आपकी ब्लैक कार है सोनाली. आप पर्पल कार IH विशाल, नाइस. रितेशनी लता, कार रेड कलर एंड एश फ्रॉम वेलिंगटन, लाइट ब्लू कलर की गाड़ी है आपकी. रेड कलर की कार है आनंद. एंड विश्वा, वाइट कलर की कार आपकी है. एंड देन आई हैव गॉट, विश्वा के बाद कौन है, ब्लू कलर की कार है कृष्णा. धीर, आपकी वाइट कलर की कार है. एंड ब्लैक कलर की वीनू छाबरा आपकी कार है. किन्नरी, आपकी ब्लैक कलर की कार है. आयरीन, आपकी वाइट एंड ब्लैक, अच्छा वाओ आयरीन, आई नेवर न्यू दैट. सो या आप सबके नाम मैंने ड्रॉ में ऐड कर लिए हैं. थैंक यू सो मच.
2: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम.
7: High five! High five? Anybody? No? Ah, that's right. It's $5 weeks at Pack and Save. Low five! Ah, that's more like it. Although this would make a lot more sense if I had fingers. $5 weeks! On now at Pack and Save.
8: It's the final days of Carpet Court's Spring Do-Up Sale. Get huge deals throughout the store, including free underlay and free installation on selected Rhino and Feltex carpet. Plus, we'll shout the first $600 of installation free on selected hardfloor. Hurry into Carpet Court today.
9: Diwali aa rahi hai aur fortune la raha hai aapke liye jeetne ka mauka. Lotus Manukau, Mount Roskill ya Botany in Namaste Indian Supermarket se koi bhi two fortune ya simply products khareediye aur jeetiye $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्चून दिवाली, बी इन टू विन, एंड 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई.
10: 35 minutes and we've moved 3 kilometers.
11: Welcome to peak hour commute, bhai.
10: Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
11: Over 18, lived here for more than a year, and a resident for electoral purposes?
10: Yeah, that sounds like me.
11: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
10: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
12: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
5: दिवाली आई खुशियाँ लाई PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं PFSL के साथ होम लोन करवाएं $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं तो इस दिवाली खुशियाँ बढ़ाएं PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं सर्च PFSL और कॉल ऑनलाइन 8469934 टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई

0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
1: ड्रीम डायरी में वैसे एक बात है, हमने पूरे हफ्ते आपके साथ बात की है, आई थिंक मोस्टली रिलेटेड टू फायर एंड थिंग्स. तो यू नो आई गॉट अ कॉल यस्टरडे और उन्होंने मुझसे कहा कि हाउ डू यू नो अगर ये फायर आपको दिख रही है, गॉड इज़ वार्निंग यू. तो ये है कि मैं कह सकती हूँ दैट यू कैन नो इफ़ योर ड्रीम इज़ अ वार्निंग बाय गॉड. अगर आप देख सकते हैं उसकी इंटेंस क्लैरिटी या फिर आपकी मेमोरी वो बहुत ज़्यादा क्लियर है. अगर क्लियर मेमोरी है तो ड्रीम यूजुअली इज़ अनयूजुअली क्लियर क्रिस्प और कभी कभी यू नो क्योटिक भी हो सकती है. अब इस चीज़ को अगर आप बार बार देखते हैं तो ये सिग्निफाई करता है कि मैटर नीड्स टू बी सेटल्ड अर्जेंटली. सम मैटर विच एवर मैटर इज़ योर बर्निंग इशू. स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो सकते हैं आपके. यू वेक अप एट सडनली ऑड आवर, ओ माई गॉड, सडनली आपको लगता है कि आप रोने लग जाएं या आपको कुछ करें आप, जैसे आग देख ली और घबराहट होने लग जाती है. और फिर ये मैसेज जो होता है कभी कभी बताता है दैट यू नो एज यू वर आस्किंग अबाउट कि इसमें कोई गॉड का आपको वार्निंग नज़र आती है कुछ, तो ये हो सकता है कि कभी कभी कोई रिपेंट करना चाहते हैं आप किसी चीज़ के लिए, तो वो आपको गॉड इस तरह बता सकता है, एक विजडम बता सकता है. प्रोटेक्शन भी हो सकता है कि देखो इस चीज़ से तुम केयरफुल रहो, पैनिक मत होना जिस समय कुछ ऐसा होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो सिंक्रोनाइज योरसेल्फ.
0: दिल से दिल तक अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो याद रहे दिवाली स्पेशल ऑन हम में हम आपके लिए रामायण लेकर आ रहे हैं. रामायण एक गाथा मंडे ऑनवर्ड्स जो एक स्पेशली वन और टू मिनट्स का एक सेगमेंट है जो मेमोरेबल स्टोरीज कैरेक्टर्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं. दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड एट डिफरेंट टाइम्स थ्रू आउट द डे बट ये शॉर्ट पावरफुल स्टोरीज होंगी. रामायण एक गाथा हम पर आप डेफिनेटली सुनिएगा एंड यू विल रियली एन्जॉय दिस. ट्रस्ट मी कल दामिनी पिक्चर देखने के लिए गए स्क्रीनिंग तो मीनाक्षी सेशाद्री जी वहाँ पर थी. अब जब ये गाना आया ऑनेस्टली टेलिंग यू आई अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स वर सिंगिंग दिस सॉन्ग अवे एंड वी गॉट अ स्माइल. शी जस्ट टर्न्ड हर फेस एंड शी लुक्ड कि कौन गा रहा है हम कौन कर रहा है बिकॉज दिस वॉज सो ब्यूटिफुल एंड वेरी ब्यूटिफुली पिक्चराइज्ड सॉन्ग.

0: Brunsveen.
1: इतना ज्यादा दिया कि वो रोने लगी, मानसिक संतुलन अपना खोने लगी, पहले गंदा किया फिर खुद ही धोने लगी, एक रात में हिला उसे होने लगी। मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है, कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पीए से है रखे जो घूटों से बनी, मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी, मैं कभी बहुत ज्यादा सैड कभी बहुत ही फनी, मेरे गोयाट के बैक कानों में टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट इफनी, कोई टिप्पणी पे ना करो टिप्पणी, तेरे जैसे कहां से मैं आंट चाटता है तू, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर, कभी कैसी तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी जलता है उसको फाड़ता फिरूं, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, 3 रात लगातार मैं जागता फिरूं, भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है मैं नाचता फिरूं।

डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

0: eat better, live better.
1: Mid-morning Mazaa.
2: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithe, kyunki aa rahi hai.
1: My time with Kashika.
3: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में इस समय 11:03 हो चुके हैं. आपका साथ मैं दे रही हूँ ऑल द वे 12 बजे तक. और जब मैं कहती हूँ कि 12 बजे तक, तो भाई 12 बजे तक कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हम जो है आपके साथ शेयर ज़रूर करते हैं. एंड ऐसे में अगर आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है ओहो क्या बात है, तो हम डेफिनेटली आई एम हैप्पी टू टॉक टू यू. 0800 हम पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं. एंड या व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टन थिंग्स, दिवाली आ रही है भाई, और ऐसे में दिवाली के मौके पे हमारा फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून जो है वो भी शुरू हो चुका है. एंड नॉट टू फॉरगेट अनदर थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ जो है हम के प्रोग्राम से रिलेटेड, जहाँ रामायण ऑफ कोर्स दिवाली आ रही है तो रामायण से रिलेटेड हम मंडे ऑनवर्ड्स रामायण की एक गाथा जो है ये शुरू करने वाले. ये 1 से 2 मिनट का एपिक स्टोरी टेलिंग सेगमेंट है, जहाँ पे ये मेमोरीज जो है, मेमोरेबल स्टोरीज जो है, सॉरी, आप सुन सकते हैं ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ रामायण. तो डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ द डे में ये आपके लिए प्ले भी होगा. रामायण एक गाथा हम पर आप डेफिनेटली सुनते चले जाइएगा और हमारे साथ मिलकर दिवाली की तरफ पहुँचते चले जाइएगा.
0: बचाओ क्या
3: कशिश फूड्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी ओर से आपके लिए आ जाता है 11 बजे से मिड मॉर्निंग मज़ा भी. और वैसे माय टाइम 10 से 12 बजे मंडे टू फ्राइडे आपके साथ मेरे साथ मिलकर एक साथ धमाल मचा देते हैं. आज फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे, और ऐसे में बहुत छोटी सी ज़िंदगी है. इस छोटी सी ज़िंदगी में ज़रा वीकेंड पे अपने लिए गौर ज़रूर फरमाइएगा, कोशिश कीजिएगा अपना मी टाइम ज़रूर बचाइएगा.

सो मिड मॉर्निंग मज़ा में आपको बताना चाहती हूँ अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग, बट बिफोर दैट सिक्स वर्ड स्टोरी ऑन बेबीज किड्स, कोई है तो प्लीज़ बता दीजिएगा एंड आई एम हैप्पी टू टेक इट एंड मेक अ वीडियो आफ्टर दिस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ओके, फ्रॉम अगले महीने आपको पता है नई गाड़ियों को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा सेकेंड वॉक फॉर 4 years. तो जब आपके व्हीकल्स की एज 4 to 14 years के अंदर में होगा तो यू विल मूव ऑन फ्रॉम एनुअल टू 2 yearly चेक, याद रखना. एंड फॉर ओल्डर कार्स बिटवीन ईयर्स लाइक 2000 to 2013 उनके लिए जो

0: एनुअल चेक्स रहेंगे, बट फॉर वेरी वेरी ओल्ड कार्स जो कि 2000 से पहले के हैं, दे विल बी अ 6 मंथली चेक टू 1 ईयर चेक. तो ये इंक्रीज होने वाला है लोगों के लिए. फाइन्स आउट ऑफ डेट वॉफ, याद रहे सेफ्टी कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड अक्रॉस द इंडस्ट्री, जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ व्हीकल्स जो डेंजरस व्हीकल्स स्ट्रीट पर रोड्स पर हैं और जिनकी वजह से लोगों को फ़ायदा हो सकता है. अब नाउ दिस प्रॉबेबली इज गोइंग टू वर्क आउट लाइक अ बून फॉर ऑल ऑफ अस. ओके,
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना.
1: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind. सिर्फ रोवा पर.
1: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Swimming pool heat pumps under $2,000. Outdoor four-piece resin lounge set just $299. Outdoor gazebos just $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
0: Mental health is part of our overall health. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है. अगर आप overwhelmed हैं या emotions manage करने में struggle कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है. Asian Family Services आपके कल्चर को समझते हैं और professional, confidential और free emotional support देते हैं. Call Asian Helpline Free on 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
2: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ. लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं.
3: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु केंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी विच इज 0800-564-424.
4: You know a restaurant's good when you can't get a table for 3 weeks. Just like it's a great sign if a specialist is booked till next month. And if a builder can't fit you in till the summer, you know it's probably worth the wait. So when we tell you that Diocesan School for Girls is generally booked 2 years ahead, that should tell you everything you need to know. So if you're thinking about what's next for your daughter, join us at our open day on Thursday, the 22nd of October from 9 till 11 a.m. Register at diocesan.school.nz.
5: Fall in love with your home again with an ANZ Reno Loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility. Lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
6: Few things sound better than logs crackling in a fire. Rain on a tin roof. My voice. And the words, you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
7: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
8: Mid-morning Maza.
9: Mid-morning Maza.
10: Six-word story.
9: Okay, six-word story mein. Thank you. वेरी मच. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने अपना नाम तो नहीं लिखा, कोई बात नहीं. 5103 आपने कहा कार्डबोर्ड बॉक्सेस बिकेम स्पेस शिप्स टू मार्स. ऐसा होता है एक्चुअली, क्योंकि कार्डबोर्ड होते हैं उससे कई बच्चे जो होते हैं अपने घरों घर बनाने लग जाते हैं, यू नो, कुछ स्पेस शिप बनाने लग जाते हैं. या इट डेफिनेटली हैपन्स. एंड दिस वन विच आई कैन प्रॉब्ली से शी स्माइल्ड. My worries vanished instantly. She smiled. My worries vanished instantly. बच्चे जब मुस्कुराने लग जाते हैं, you know, अपने आप इतने contagious होता है that you start मुस्कुराइंग yourself. नहीं? I know, it happens with me. It happens with all of us, in fact. Okay, चलिए, जब बात कर रहे हैं about बच्चों की, घर की, तो क्यों नहीं आपको मैं बता देती हूँ हैरिंगटन लिविंग के बारे में. हैरिंगटन लिविंग जो है ये मैनिकाओ में लोकेटेड है. इनकी स्प्रिंग सेल अभी चल रही है. बहुत ही ब्यूटीफुल फर्नीचर इनके पास है जो 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री है. बोलो दिवाली पे जाओ, जाके लेकर आ जाओ अपने लिए हैरिंगटन लिविंग का फर्नीचर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं. हैरिंगटन लिविंग सिर्फ मैनिकाओ में लोकेटेड है. पहुँच जाइए इनके अमेजिंग से प्लश से शोरूम में. और साथ साथ ये आपको दे रहे हैं $1,000 का एक वाउचर फॉर हैरिंगटन लिविंग होम डेकोर, या फिर आप फर्नीचर का एक वाउचर है $1,000 वर्थ का, अगर आप इसे जीतना चाहते हैं. HL लिखिए 5599 पे आप एक क्यूट सा मैसेज लिख डालिए आज के बारे में. एनीथिंग यू फील लाइक, यू नो, लाइफ इज़ फनी, लाइफ इज़ गुड, आई लव माई सेल्फ, कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग नाइस. HL लिखिए, क्योंकि आपके घर में खुशहाली आनी चाहिए तो सबसे पहले एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए. सो ऑन अ पॉजिटिव नोट, HL शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैरिंगटन लिविंग. और उसके बाद आपको अपने छोटा सा चीज़ लिखा, ओ वाओ किनरी, आई लव इट. HL आपने लिखा, किन्नरी लिखा अपना नाम. समर इज ब्यूटिफुल, आई एम टोटली अग्रीइंग विद यू. चलो आपका नाम मैंने ड्रॉ में ऐड कर दिया, देखते हैं और कौन कौन आता है. अच्छा आपके लिए ये टाइम सिर्फ बस ये गाना बजा रही हूँ तब तक है, समझ लो.
7: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: वाला बना दे.
1: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.
2: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है. रफ्ता रफ्ता देखो, आंख मेरी लड़ी है.

0: story mein emotion hai, drama hai, tragedy hai.
1: My time with Kashika.
2: Wow.
3: How?
2: Adbhut.
4: इतने सारे टेक्स्ट आए हैं और आपने लिख के भेजा है. हाय, माय नेम इज प्रवीण महाराज. आई एम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, नाउ 30 इयर्स इन न्यूजीलैंड, नेवर स्टॉप लिसनिंग टू एन इंडियन रेडियो स्टेशन डेली एंड नाउ हम एफएम. लव द एंटरटेनमेंट सिलेक्शन ऑफ म्यूजिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द न्यूज इन इंग्लिश एवरी आवर. थैंक यू क्योरा, धन्यवाद. थैंक यू ज्योति, आपने हाय लिख के भेजा. विशाल, आपने भेजा है अनदर सनराइज, अनदर रिफ्रेशिंग मॉर्निंग. आई लव इट, वेरी नाइस. I love my family, Nilesh, of course, we all do. And aapne kaha, I'd just like to say thank you to God to give me this beautiful life. And we are so blessed to come to New Zealand and stay here. It's such a beautiful place. Yeah, agreed. Navi, aapne kaha, I love the weather. Dheer, aapne kaha, I love today's weather. I love the weather too and I love you all as well. Aise Navratri ki celebrations jo hain, bilkul bahut nazdeek aa gayi hain, iske baare mein baat karungi in a bit.

0: Chat with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: नवरात्रि की ढेर सारी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, ऐसे में आपके लिए संडे से लेके 20 तारीख तक 6 बजे से रामकृष्ण मंदिर ऑनस्लो एवेन्यू मैनकाव में गरबा डांडिया रास और कथा होगी। श्री हनुमान मंदिर में जो है डीजे गरबा 8 बजे से 9:30 बजे के आसपास भजन जैमिंग, डीजे गरबा 18 तारीख को 6:30 बजे से श्री आदि शक्ति दुर्गा माता मंदिर सेम 7 से 9 बजे तक वॉम्सली रोड ओटाहूहू में भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त आयोजन किया गया है। दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट 11 से 20 तारीख तक 6:30 बजे कैवेंडिश ड्राइव में गरबा डांडिया हुडा तासा रास और फिर कथा होगी। बी आर अम्बेडकर स्पोर्ट्स क्लब जो है वो 34th एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टूर्नामेंट 24th एंड 25th को होस्ट कर रहे हैं। 2 दिन का ये इवेंट होने वाला है। कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर, ये है कुछ फन एक्टिविटीज़ भी होंगी, इंक्लूडिंग लेमन एंड स्पून रेस, म्यूजिकल चेयर्स, रेसेस होंगी बच्चों के लिए। एंट्री बिल्कुल फ्री है। प्रदीप के साथ रजिस्टर कीजिए 0212385948 के जरिए।
2: 80s के रेट्रो गाने

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
2: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
1: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
3: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
4: A Kogan monitor is just like a monitor. Both monitors do very similar monitor things, but with slightly different little logos, cords, and stands. One's a Kogan 34-inch curved ultra-wide monitor. The other monitor has a price you won't be able to stand. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith, and Kogan.com. Clickin' awesome.
5: Yo, what's up? I'm Fun. We went to school together, remember? We'd hang out behind the bike sheds. Anyway, I need you to look up NZHL. They help people like you to have a mortgage and a life, which means less time being boring and more time buying berries out of season, turning coffee into lunch, and booking non-refundable airfares to Fiji before checking with your partner. Risky. Have a mortgage and a life with NZHL. Book a free chat today.
6: NZHL. Now there's a better way to a new phone with Spark Upgrader. Combine our huge phone deals with great trade-in savings, plus look out for exclusive offers just for you. See what you could save on a new phone at spark.co.nz/upgrader. Available interest-free, credit criteria and terms apply.
7: Diwali aa rahi hai aur fortune la raha hai aapke liye jeetne ka mauka. Lotus Manukau, Mount Roskill ya Botany in Namaste Indian Supermarket se koi bhi two fortune ya simply products khareediye aur jeetiye $501 का ट्रॉली डैश, साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्चून दिवाली, बी इन टू विन, एंड 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई।
8: Flight Centre's UK and Europe sale is on now. Fly return to Europe from Auckland from $2,571 with Lufthansa Group. Book in store or online. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.

0: रेस्क्यू मी रिसाइकल में सुनीता आपका कॉल आया था और आपने मुझे बताया कि जो दाल होती है कभी कभी घर में आप दाल ज़्यादा एक्स्ट्रा बना लेते हैं, भाई दाल को ज़्यादा रखा नहीं जाता क्योंकि दाल से गैस ज़रूर हो जाती है। ऑलराइट, अब ऐसे में इतना ही कहना चाहती हूँ दैट उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका समझाया। उन्होंने कहा दाल के अंदर उन्होंने छोटे छोटे प्याज काटा, हरी मिर्च, हरा धनिया डाला, अदरक डाला और उसको आटे के साथ गूंद दिया। उसके दाल के पराठे बना के उन्होंने सबको सुबह सुबह नाश्ते में खिला डाला, सबके लंच बॉक्स में पैक करके भी दे दिया। कितनी दाल थी भाई, बट वेरी गुड आइडिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड थैंक यू फॉर लविंग द सॉन्ग्स विच यू आर राइट नाउ।
1: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो आप कोई ऐसे गाने के साथ छोड़े जा रहे हों जहाँ पर मैं बिल्कुल अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ वेटरन एक्टर नाना पाटेकर जी को, जो एक एट द एज ऑफ 75 एक कार्डियक अरेस्ट के साथ गोवा के अपने घर में उनको मृत पाया गया और साथ साथ ही वॉज डिक्लेयर डेड एट 5:20 AM. कहा जाता है डॉक्टर्स ने उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की, CPR देने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट happen. And इनका करियर गमन फिल्म से स्टार्ट हुआ था 1978 में. What a movie with स्मिता पाटिल. मराठी फिल्म्स एंड हिंदी फिल्म्स में ये बहुत ही खूबसूरत अदा इन्होंने रोल किया था. सलाम बॉम्बे, परिंदा, नेम द मूवीज एंड प्रहार, द फाइनल अटैक, सूबेदार, ये इन्होंने अमेजॉन प्राइम में किया था. ओ रोमियो एंड ऑफकोर्स एक पर्टिकुलर फिल्म है जो ओ रोमियो में तो नज़र आए थे. And there have been instances. Now talking about Nana Patekar ji, इनके साथ एक फिल्म आई थी खामोशी जिसमें उनका रोल मतलब literally like रो के उस फिल्म को हमने पूरा किया था because इतना कमाल का उन्होंने रोल अपना अदा किया था. सलमान खान जी जो हैं उन्होंने ख़ास तौर पर कहा है कि He has been very, very disturbed. उन्होंने अपना सारा प्लान चेंज कर दिया. तो उन्हीं की इस फिल्म का इस गाना जो है मैं आपके लिए छोड़े जाती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ याद दिलाती हूँ लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट. कोशिश कीजिए जिनके साथ भी आप हैं उनके साथ अच्छे से रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, उन्हें अप्रिशिएट भी करें, क्योंकि दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू टेक यू फर्दर डाउन. इज़न्ट इट ट्रू? सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स. This is Kashika signing off from the Hum Studios. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में सभी को याद रखिएगा. Over the weekend कोशिश कीजिएगा कि आप अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि आपको पता है मंडे के दिन आऊँगी मैं. ऑफकोर्स थोड़ा पूजा पाठ के मूड में होंगी क्योंकि संडे से मेरे भी फास्ट स्टार्ट हो जाएंगे एंड मैं चाहती हूँ जितने भी लोग फास्ट करने वाले हैं. वैसे कल एक अमावस्या का दिन है और कहा जाता है कि कल के दिन एक महालय भी की जाती है, तो अगर आप उस महालय को करते हैं तो बहुत बहुत पुण्य मिलता है. एनीवे फास्टिंग करते हैं तो भी पुण्य मिलता है, फास्टिंग नहीं भी करते हैं आपके बिलीफ के ऊपर है. अगर मन से सच्चे मन से ऊपर वाले को याद करेंगे हमेशा सब अच्छा ही होगा. ओके, दिस इज कशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी हम स्टूडियोज. काफ़ी सारी बातें गहरी गहरी कर ली, भारी भारी कर ली, लीविंग यू बिहाइंड विद अ ब्यूटीफुल ट्रैक एंड अ डेडिकेशन टू नन अदर देन द लेट नाना पाटेकर जी फॉर हिज अमेजिंग वर्क इन दिस मूवी कॉल्ड खामोशी.

0: नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम बोला आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में। कैसे हैं आप? मेरा नाम केतन है और मैं अभी से हूं 3 बजे तक बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे एक से बढ़कर एक गाने भी यहाँ पे मैं चलाने वाला हूँ, कुछ लेटेस्ट खबर भी बताऊंगा आपको, कंपटीशन, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट फेस्टिव सीजन इज अबाउट टू कम। अबाउट टू क्या, शुरू हो चुका है यार। दिस इज लाइक हाफ ऑफ द ईयर इज लाइक अमेजिंग। फ्रॉम ऑगस्ट ऑनवर्ड्स यू गेट बैक टू बैक डिफरेंट फेस्टिवल्स, जहाँ पे स्पेशली हमारे सिंगर्स के लिए, अरे सिंगर नहीं भाई, कल शो किया ना तो मेरे दिमाग में वही बैठा हुआ है, बाद में बताऊंगा, थोड़ा अभी रुकिए, सबर करिए। बट यस, हमारे लिसनर्स के लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं सो दैट दे ऑल्सो गेट आउट ऑफ समथिंग फ्रॉम अस। सो डेफिनेटली कम्युनिटी रिटर्न गिफ्ट है हमारी तरफ से, बट उसके लिए आप बस बने रहिए और सुनते रहिए आज का स्पेशल फ्राइडे शो। शुरुआत करते हैं नचती फिरा मेघना मिश्रा की आवाज में, एंड मैं मिलता हूं बहुत ही होम सिक रेमेडीज के मैसेज के साथ। जी हाँ, आप भेजिए मुझे 555 99 पे।
1: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक, वेलकम बैक। यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स एंड आपका स्वागत करता हूँ आज के इस शो में। आप मुझे 104.2 एफएम के जरिए सुन रहे हैं या फिर अगर सिटी की तरफ है तो 87.7 एफएम के जरिए भी सुन सकते हैं। पर यस, होमसिक रेमेडीज के लिए ये रहा मैसेज जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। मैसेज आया है हरप्रीत जी का, हरप्रीत भाई का। इन्होंने लिखा है, यस्टरडे आई वाज ड्राइविंग ऑन ग्रेट साउथ रोड ड्यूरिंग इवनिंग रश आवर एंड वांटेड टू टर्न लेफ्ट इनटू अ गैस स्टेशन टू अवॉइड ब्लॉकिंग द कार्स बिहाइंड मी। आई पुल्ड इनटू द बस लेन जस्ट 40 मिनट्स बिफोर द टर्न। टुडे आई ओपन माय मेल बॉक्स टू फाइंड अ $150 बस लेन फाइन विद अ क्रिस्टल क्लियर 4K फोटो ऑफ माय कार फ्रॉम एन 80 कैमरा। Back home, lane markings are basically optional. Decorations and traffic is a team sport where everyone adapts. Here in Auckland, automatic cameras are watching your every tire movement like Big Brother. Paying $150 for 5 seconds in an empty bus lane. In an empty bus lane made me feel so frustrated. Paji, Paji, Paji, Harpreet Paji. Well, देखिए गलती, हाँ ऑब्वियसली देखो रूल्स आर रूल्स, राइट? वी कैनॉट, यू कैनॉट कंपेयर इट विद योर कंट्री और एनीवन्स कंट्री। सबका अलग अलग होता है और किस्मत भी होती है एक्चुअली, बट इट इज़ नॉट जस्ट फॉर योर सेफ्टी, इट इज़ फॉर अदर सेफ्टी एज वेल। आई नो खाली था वहाँ पे, बट वही है, रूल्स बनते ही हैं फॉलो करने के लिए। अगर आप फॉलो नहीं करोगे, डजंट मैटर वेदर इट इज़ पीपल आर देयर और नॉट। बट आई एम, एक चीज़ में सरप्राइज हूँ यहाँ पे, आपको एक ही दिन में मेल कैसे आ गया? मतलब I'm a bit surprised actually, because आपने लिखा है कि नहीं actually yesterday नहीं, हाँ yesterday लिखा है आपने, like I'm actually surprised कि आपको एक ही दिन में टिकट भी आ गया लेटर बॉक्स में। सो फास्ट यार, मतलब इस चीज़ में खुशी है कि इम्प्रूवमेंट तो आ रही है, बट नॉट इन अ गुड वे, इस इज लाइक नेगेटिव वे, लाइक यू नो यू नीड टू पे। बट यस, थोड़ा सरकास्टिक वे भी था आपका, बट थैंक यू सो मच यार। बट यस, मेरा आंसर ये रहेगा, 150 वाले झटके से डर कर ड्राइविंग छोड़ने की जरूरत रही है। इसका एक मस्त छोटा सा मैं कोशिश करता हूँ कि जुगाड़। सबसे पहले रूल, न्यूजीलैंड में नाइस गाय बनने की जरूरत नहीं है। अगर पीछे वाले लोगों को वेट करना पड़ रहा है तो करने दो। आई मीन यू डोंट नीड टू कर, मतलब यहाँ पे ये कि यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग है लोगों में दैट अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी वजह से वो पीछे वेट कर रहे हैं, तो वो ऐसा मत सोचो। सबसे बेस्ट है सेफ्टी। अगर किसी को जल्द है तो वो दूसरा लेन पकड़ के आगे निकल सकता है, बट व्हेन यू आर वेटिंग फॉर समथिंग यू नीड टू फोकस ऑन योर ड्राइविंग, नॉट कि भाई पीछे वाले लोग क्या सोच रहे होंगे या उनका ब्लॉकेज हो रहा है। नहीं, ये मत सोचना। सो यस, नेक्स्ट टाइम इस चीज का ध्यान रखना और या कुछ हरी में ऐसा कुछ डिसीजन मत लेना। बट यस, थैंक यू अगेन आपके मैसेज के लिए। काफी हटके मैसेज था आज का होमसिक रेमेडीज में। वेल, अगर यहाँ पे किसी और का भी कुछ जवाब है इस पे कि क्या करना चाहिए ताकि हरप्रीत भाई थोड़े से खुश रहे, बिकॉज ही लुक्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड व्हाइल आई रीड द मैसेज। सो थैंक यू अगेन हरप्रीत भाई, यू एंजॉय द डे।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का। हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
3: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
2: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
3: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
2: बस इतना ही।
3: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
1: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 एफएम और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, एनजेड पीएमआई, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune. TradeDepot.co.nz.
4: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Swimming pool heat pumps under $2,000. Outdoor four-piece resin lounge set just $299. Outdoor gazebos just $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
5: Get the bold new flavours of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fibre, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
6: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
7: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। Hi, मैं हूं गुरु केंडोला from Logic Finance. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं, उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं। Logic Finance के गुरु केंडोला बातों में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं।
8: Terms, condition, fees and credit criteria apply. Call Logic Finance ke Guru Kendola ko on 0800 Logic G, which is 0800 564424.
9: Media Works Complaints, how can I help?
10: Yeah, hello?
9: Hi.
10: Hi, yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
9: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
10: Well, okay, well, what about something like a brain surgeon?
9: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
10: Great, sing it to me.
11: Advertise with
12: Media Works.
11: New Zealand listens to us.
13: Keen to score 20 cents per litre off your fuel? Scan Club Plus from Friday to Sunday when you spend $100 at New World, Pack and Save or Foursquare. That's some smart shopping. T's and C's and exclusions apply.

0: Welcome back. Well, yes, office shoutout ke liye aap mujhe message bhej dijiye yahan pe. But kafi messages aaye hain mujhe in regards to the last topic. Harpreet, right? If I'm not wrong, Harpreet bhai. उन्होंने बताया कि उनको एक $150 का टिकट आया, तो उसके जवाब में काफ़ी लोगों ने ऑब्वियसली उनकी साइड ली है. थोड़े फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं दैट वाई ओनली कार्स एंड ट्रक्स यूजर गेट द फाइन टिकट. ऐसा नहीं है, और भी लोगों को मिलता है, बाइक्स को भी मिलता है. आई मीन नॉट पुश बाइक, बट मोटर बाइक्स वालों को भी मिलता है. आई गॉट कपल ऑफ टाइम्स द टिकट जब मेरे पास मोटर बाइक हुआ करती थी. एंड और भी मैसेजेस भेजे हैं. यहाँ पे कोई है जो बात करना चाहेगा रिगार्डिंग ये जो सवाल आ रहे हैं यहाँ पे, उसका जवाब देने के लिए? आई मीन जस्ट टू गिव कि जो हरप्रीत भाई ने जो किया है, इज वॉज दैट ओके और नॉट ओके? बिकॉज उनको टिकट मिला है, वो फ्रस्ट्रेटेड है. एंड इफ एनीवन इज देयर जो कॉल करके बताना चाहे इस बारे में, तो यस 0800-004-866 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं. बड़ी दुविधा से काफ़ी लोगों के टिकट्स लगे हैं और उनके सवाल भी बहुत ही बढ़िया हैं यहाँ पे. सही है सर, आप अगर कोई हैं यहाँ पे जो अच्छे से जवाब देना चाहेगा, अच्छे से मतलब कि समझाने वाला, तो यस फील फ्री टू कॉल मी 0800-004-866 पे. एंड विल डिस्कस ओवर हियर. एक का कॉल आया लेकिन फट से गायब भी हो गया. मेरे को लगता है वो टेस्ट कर रहे थे कि कॉल लग रहा है नहीं लग रहा है. भाई डेफिनेटली कॉल लग रहा है, मैंने नंबर दिया तो कॉल लगेगा ना. अगर कॉल नहीं लग रहा तो मैं नंबर क्यों दूंगा? ट्राई करिए फिर से एक बार. चलिए फोन आ रहा है, तब तक हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो ऑफिस शाउट आउट के मैसेजेस हैं, यानी कि आज के दिन व्हाट यू गाइस आर हैविंग करंटली. जी हाँ, आई बॉट अ चिकन सीजर रैप फॉर लंच. ये तानिया ने भेजा है, सिल्विया पार्क में अभी है. क्या बात है, क्या बात है. हैव वन मोर फॉर्म फ्रॉम माई साइड. एंड निलेश भाई ने लिखा है मैसेज पे, वर्किंग फ्रॉम होम टुडे, डैड मेड दाल राइस एंड फिश करी. दैट्स सो स्वीट. आज मैंने भी पुलाव खाया, बहुत ही यम्मी थे यार, बहुत ही यम्मी थे. लंच ब्रेक एट कॉलेज, आई ग्रैब्ड सम सुशी फ्रॉम द नियर बाय फूड कोर्ट. माई फेवरेट कुजीन इज जापानीज. ये इतन ने लिखा है. चलिए कॉल आ रहा है, बात कर लेते हैं. हेलो, सॉरी.
1: कैसे हैं केतन भाई?
0: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए मंदीप भाई, हाउ आर यू?
1: I'm very well, thank you, my friend.
0: Right, बताइए. What do you think about Harpreet भाई के मैसेज? What do you think?
1: उनको he should explain, जो उन्होंने यहाँ पर मैसेज में explain किया, he can actually explain to the authorities as well. And I'm pretty sure उतने उसको harsh view नहीं लेंगे उसका. If it was for a genuine reason, he was trying to be nice and kind. So I'm pretty sure वो ticket waive off हो सकती है.
0: Right. मैंने भी ट्राई किया था, बट मेरा पे ऑफ नहीं हुआ था.
1: भाई अगर तुम ओवर स्पीड करोगे, बोलोगे मेरे को जल्दी घर काम पे जाना था, तो वो उसका टिकट पे ऑफ नहीं होता.
0: दैट्स ट्रू, बट मेरा ये रीजन नहीं था, मेरा कुछ और ही था. बट एनीवेज पॉइंट तो है यहाँ पे, ट्राई कर, कोशिश कर सकते हैं. ज्यादा से क्या होगा, मना ही कर देंगे.
1: बिल्कुल,
0: बट ट्राई तो करना चाहिए.
1: वो तो फाइन तो पे करना ही है, बट अगर आप ट्राई कर लें एंड यू आर जेन्युइन, they can check कि next कैमरे के अंदर वो उसमें नहीं है गाड़ी वहाँ पर, तो that proves the point.
0: Yeah, actually.
1: कभी भी बस लेन के अंदर एक कैमरा नहीं होता है, they have multiple cameras. वो आपको एक एक जगह ही पिक करेंगे, they will pick you on multiple spots.
0: Ah, that's good to know. ये actually मुझे नहीं पता था, but glad to know that. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जो you know you put you on the limelight?
1: वो जब हम नए ओखला शिफ्ट हुए थे इनवर कारगिल से, वी नेवर न्यू द आइडिया ऑफ ये बस लेन पे भी ऐसा होता है. मेरा नहीं, माय बेटर हाफ विद द फैमिली वाज ड्राइविंग, तो उस घर पे टिकट आया, मैंने पूछा कि भैया टिकट आ गई बस लेन की? कहती मैं तो चला रही थी गाड़ी, लेन खाली थी. मेरे को लगा लोग चला क्यों दे रहे इस लेन में, लेन तो खाली है, ट्रैफिक इतना बना हुआ है. तो मैंने वहां से निकाल ली गाड़ी, वो वहां से फिर टिकट आ गई.
0: अरे रे रे, तो मतलब ऑब्वियसली वहां पे तो कोई रीजन भी क्या दोगे अगर जस्ट इन केस काउंटर करना है तो, राइट? वही बस फनी
1: इट वाज हमारी थी.
0: मैं एक्चुअली पता इमेजिन भी कर दिया मैंने कि आपकी बेटा आप है ना सच में ऐसा कर रही है, एंड देन शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. दैट्स क्वाइट फनी. बट थैंक यू सो मच मंदीप भाई, बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बात करके. एंड यू हैव अ वंडरफुल डे. होप आपके इस जवाब से डेफिनेटली हरप्रीत भाई को ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट, राइट? परफेक्ट, थैंक यू, बाय. लंच बॉक्स विद
2: केतन
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
4: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: चलिए अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में आज के दिन यानी कि 9 अक्टूबर को 1967 को 6 o'clock स्विल का एंड हुआ था, जब पब्स को शाम को 6 बजे के बजाय रात 10 बजे तक खुले रहने की परमिशन मिली थी। ये रूल पहली बार 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान टेम्पररी मेजर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अगले साल परमानेंट बैन कर दिया गया था। इस रूल की वजह से ऑफिस से निकलने के बाद लोगों के पास पब में ड्रिंक करने के लिए सिर्फ एक ही आर हुआ करता था, इसीलिए क्लोजिंग से पहले लोग जल्दी जल्दी बियर पीते थे और इसी हैबिट को 6 o'clock स्विल कहा जाने लगा। 1967 में रिफरेंडम हुआ, जिसमें 64.4% वोटर्स ने लेटर क्लोजिंग आवर्स को सपोर्ट किया और इसके बाद न्यूजीलैंड की पब कल्चर में एक मेजर चेंज आया। नाउ यू नो कि भाई रात रात तक क्यों ठेके खुले रहते हैं अगर देसी स्टाइल में अगर बात करें तो। बट यस, दिस इज द रीजन, बिकॉज लोग चाहते थे, 64.4% चाहते थे तब के, कि भाई लेट होना चाहिए, हमें रश में जाना पड़ता है, एंड देन देयर इज नो पॉइंट, राइट। बट यस, क्या आपको ये चीज पता थी, आप मुझे बताइए 5599 पे। वैसे और भी मैसेज आए हैं, एक ने मैसेज किया था रिगार्डिंग द ऑफिस शाउट आउट, उन्होंने कहा है कि क्या मतलब मैंने पूछा था कि क्या आप व्हाट यू गाइस आर हैविंग, तो उन्होंने लिखा है ओवरनाइट ओट्स विद ममरा। अरे वाह, दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी। मीरा ने ये मैसेज लिखा है, और एक लैम्ब काबुली पुलाव, ये भी खा रहे हैं कोई अकेले अकेले हमें बिना बताए।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: चटनी शॉट्स।
1: चटनी शॉट के सेगमेंट में स्वागत है। यहाँ पे सबसे पहले न्यूज पढ़ते हैं। क्राइस्टचर्च में एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ है। गवर्नर बे के डेयर्स पार्क पास रोड पर कार के साथ क्रैश में एक साइक्लिस्ट की डेथ हो चुकी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एक्सीडेंट जो है वो उसका रीजन क्या था। ऑकलैंड में मेथ लैब का शॉकिंग केस। एक वुमेन को अपने रेंटल प्रॉपर्टी में लार्ज स्केल मेथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले जेल हो चुकी है और अब टेनेंसी ट्रिब्यूनल ने उन्हें लैंडलॉर्ड को $100,000 पे करने का ऑर्डर दिया है कंटेमिनेशन और प्रॉपर्टी डैमेज के लिए। यूएस अमेरिका से डिस्टर्बिंग अपडेट। डेथ रो इनमेट क्रिस्टा पाइक जिसका एग्जीक्यूशन अटेम्प्ट फेल हो गया था अब हेल्प के साथ वॉक कर रही है। उनका लॉयर्स ने उन्हें पहले कहा था कि उनकी रिकवरी अनसर्टेन है और इंसिडेंट के लेथल इंजेक्शन प्रोसेस चल रहा है। स्पोर्ट्स से मोटर स्पोर्ट्स फैन के लिए बहुत ही बढ़िया खबर। फेमस ऑस्ट्रेलियन एंड्योरेंस रेस संडे को होने वाली है। कीवी ड्राइवर मैट पेन अपने टाइटल रिक्लेम करने की कोशिश करेंगे लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस राइवल से टफ कॉम्पिटिशन मिल सकता है। हॉलीवुड से एक सैड न्यूज। ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस ईवा मैरी सेंट का 102 साल की एज में निधन हो चुका है। वो ऑन द वाटर फ्रंट और नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट जैसे क्लासिक फिल्म के लिए काफी फेमस है और साथ में बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी लेजेंडरी एक्टर नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। एट द एज ऑफ 75 गोवा के अपने घर में अभी तक तो यही आया कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। प्रोडक्ट सेफ्टी और पर एक्शन कॉमर्स कमीशन ने बजट रिटेल पेंडामार्ट फॉर्मली को कोर्ट में ले जाने का डिसीजन लिया है। कमीशन एलिजिस ने उनके स्टोर को लेकर चिल्ड्रंस टॉयज बेबी वॉकर्स और कार सीट समेत मल्टीपल नॉन कंप्लायंट प्रोडक्ट सेल किए हैं। कंपनी को एलिगेशन का लीगल प्रोसेस फेस करना होगा।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
0: हम
2: दिल से दिल तक। Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

नीतू जट नू पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: रुजबे, 2026 में ना बहुत काम कर लिए है, अब तो ब्रेक बनता है।
2: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
1: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
2: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
1: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज।
2: बुक नाउ विद सन टूर्स।
1: कॉल करें 0800-478-686।
3: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्म्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
4: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी 2 फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड 15th November। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: दिवाली आई, खुशियाँ लाई, PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है। अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं, PFSL के साथ होम लोन करवाएं, $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं। 50-inch टीवी के लकी ड्रो में भी एंट्री पाएं। तो इस दिवाली खुशियाँ बढ़ाएं, PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं। सर्च PFSL और कॉल ऑनलाइन 8468-9934। टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई।
6: Check.
7: Brought to you by Mann Tires for all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00-00-10.
6: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
8: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 1. The Wellington City Mission has been shining a spotlight on the controversial Move On orders, literally. The charity has been projecting the giant words Move On to Where onto the beehive at night. Reverend Murray Edridge has also voiced this message.
9: Move On orders are not welcomed by the police. It's not welcomed by mayors of our cities or by local iwi.
8: Latest numbers on Māori authorities and related businesses show an annual decline across several metrics. The June quarter saw the total value of sales come in at just over $1 billion, down 6.5% compared to a year earlier. Exported goods dropped 16% to $217 million. Several large explosions have reportedly been heard in the Strait of Hormuz. An Iranian state media outlet says oil tankers using unauthorized routes through the waterway may have hit sea mines. And Adidas is suing Australian label White Fox for trademark infringement. The German sportswear giant claims the four-stripe design on the Sydney-based company's clothes is deceptively similar to its three-stripe logo. It claims White Fox is taking advantage of its reputation and is seeking damages, including profits from the sale of offending White Fox products. To sport, Wallaby midfielder Len Ikito hopes to get one over the country he was raised in tomorrow night. While he was born in Australia, Ikito spent his childhood in Auckland, cheering for the men in black.
10: I was a supporter of the All Blacks, but obviously that's changed, and it would be nice to get it done.
8: And to motorsport, with Mag and Turbo's 80,000k tyre warranty, Supercars drivers are just finishing up the first of today's two practice sessions for the Bathurst 1000. The second session starts at 3:15.
6: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
11: वेदर के हालचाल, आज 21 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 13 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, 0% चांस है बारिश की। एज यू कैन सी द डे इज अमेजिंग एंड आज का सनसेट होगा 7:33 PM पे, सो एंजॉय द डे।

0: आवाज गूंजेगी।
1: लंच के मंच पे
2: Kiara, namaste. Welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan. Thank you so much for joining in. अगर आपने मुझे अभी join किया है तो thank you so much. And अगर आप मुझे 12 बजे सुन रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. वैसे yes, बने रहिए because इस आर में भी आपके लिए बहुत ही amazing चीजें लेके आने वाला. सबसे पहले शुरुआत करूंगा एक one of my most favorite movie, Rockstar का गाना.